प्रसार भारती के मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। आज मंगलवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 26वीं तिथि, तदनुसार 16 जून सन 2026। इस समय सुबह के 5:59 होने को ही अब आज की हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

मीडियम वेव पर आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। 6 बजने को ही समाचार थोड़ी ही देर में हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं।

0: पर आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एवियो पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर मजबूत करने पर चर्चा होगी। सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री कैनेडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्ने, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इसके बाद वे राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। फ्रांस के एवियो शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम करने के विषय में रात्रि भोज का आयोजन किया। 3 दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो की वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल

0: टेक्नोलॉजी पर आज किए गए एमओयू इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में एआई के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। एआई मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
1: स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया की सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता का सम्मान है। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमरीका और ईरान लगभग चार महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। दोनों देशों ने समझौते पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षर होने की पुष्टि की है, जबकि औपचारिक हस्ताक्षर समारोह शुक्रवार को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में होगा। समझौते के तहत होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने, समुद्री यातायात को बहाल करने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित अन्य दो पर 60 दिन की वार्ता शुरू करने का रास्ता साफ होने की उम्मीद है। संघ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष की सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष लगभग 1000 रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का चयन सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर परिणाम देख सकते हैं। अंक, कट ऑफ और उत्तर कुंजी अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद वेबसाइट पर जारी की जाएगी। फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए काबो वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। पहली बार विश्व कप खेल रही काबो वर्डे के गोलकीपर वोजिन्हा ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई अवसर नहीं दिया। काबो वर्डे करीब 5 लाख आबादी वाला छोटा सा द्वीपीय देश है। इस परिणाम को टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। उधर दांबुला में एक दिवसीय क्रिकेट की त्रिकोणीय श्रृंखला के रोमांचक मुकाबले में श्रीलंका ए ने भारत ए को सुपर ओवर में 7 रन से हरा दिया। भारत ए ने विपराज निगम और सूर्यांश शेडगे के अर्धशतकों की मदद से 265 रन बनाए। श्रीलंका ए ने भी 50 ओवर में 265 रन बनाए। सुपर ओवर में श्रीलंका ए ने 16 रन बनाए, जबकि भारत ए 9 रन ही बना सका। अब फाइनल में पहुंचने के लिए भारत ए को बुधवार को अफगानिस्तान ए पर जीत दर्ज करनी होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव पर आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। पहले सुनते हैं समूह स्वर में मातृ वंदना।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे रविन्द्र जैन, सतीश, पुष्पा बनर्जी और साथियों की आवाज में ये भक्तिपूर्ण रचना। लीजिए अब सुनिए नरेंद्र चंचल की आवाज में ये भजन।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हरिहरन और साथियों की आवाज में पारंपरिक आरती। इसी के साथ आज की वंदना अब संपन्न हुई। प्रसार भारती के मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। 7:20 सुनिएगा बुंदेली सुगंध क्रम में बुंदेली काव्य पाठ। कवि होंगे डॉक्टर जवाहरलाल द्विवेदी। फिल्म संगीत आपको सुनाएंगे 7:30 पर, शाम 5:40 पर और रात्रि 8:35 पर। इसी सभा में 8:30 सुनिएगा रसावतरण क्रम में बुंदेली कवि गोष्ठी। प्रतिभागी होंगे ओम प्रकाश तिवारी, द्वारका प्रसाद शुक्ला, प्रभुदयाल श्रीवास्तव और सियाराम नायक। 9:00 सुनिएगा लोकरंग कार्यक्रम, कलाकार होंगे जगदीश कुमार जोशी। एक ही गीतकार, इसमें सुनिए इरशाद कामिल के लिखे गीत 9:30 पर। 10:05 पर सुनिएगा पत्रिका कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका, इसमें सुनिए वार्ता महान वैज्ञानिक टिम वर्न्सली संदीप कुमार अहिरवार से। इसके अलावा विज्ञान समाचार आपकी पसंद का प्रसारण किया जाएगा 10:30 पर। शाम 5:00 सुनिएगा युववाणी कार्यक्रम, इसमें आपको सुनाएंगे तुलसीदास प्रजापति से ली गई भेंट वार्ता, परीक्षा के समय में विद्यार्थी किस तरह से संतुलन बनाए। 6:30 का प्रसारण समय रहेगा 6:30 पर। कलाकार होंगी उमा देवी। ग्रामीण भाइयों के लिए ग्राम सभा कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा शाम 7:20 पर। इसमें सुनिए श्रोताओं के पत्रों ईमेल पर आधारित

0: लोकगीतों का कार्यक्रम लोकमंचरी प्रस्तुति रविन्द्र कुमार प्रजापति की होगी। इसके अलावा प्रियांशु चौबे से ली गई भेंटवार्ता सुनिए, कार्बनिक पदार्थ का मृदा स्वास्थ्य पर प्रभाव, इनसे बातचीत करेंगे रविन्द्र कुमार प्रजापति। इसके अलावा आज की सीख, रात्रि 10 बजे सुनिएगा मन भवन कार्यक्रम। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से रिले करेंगे 11 बजे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे, 12 बजे सुनिएगा आपकी फरमाइश। महिलाओं के लिए कार्यक्रम होगा महिला सभा दोपहर 1 बजे, इसमें सुनिए वार्ता पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं की भूमिका, वार्ताकार होंगी सोनम नामदेव। 1:30 पर सुनिएगा लोक संगीत, 1:45 पर सुगम संगीत और 2 बजे फिल्म संगीत। शाम 6 बजे सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम NCERT और रात्रि 8 बजे विशेष श्रृंखला संस्कार के 12 वर्ष आतंकवाद। दिल्ली केंद्र रिले करेंगे रात्रि 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर मनी टॉक और 9:45 पर मंथन। इसके साथ ही कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ। मीडियम वेब पर आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। किसान भाई सुने खेती किसानी।
1: आज पंचो किसानी पे पूरी तरीका से सफल होवे के लाने जो बहुत जरूरी है कि अपन खेती में परंपरागत और वैज्ञानिक दोनों तरीकन को बराबर 100 उपयोग करें। वैज्ञानिक तरीका खेती में मशीन रासायनिक उर्वरक और दवाइयन के प्रयोग पे जोर देत है, जीको लाभ अपने पंच भैया उठा भी रहे। खेती के परंपरागत तरीकन में हर बखर गोबर की खाद बैलवा आदि को प्रयोग अपन करत है और इसे अपने खेती की गुणवत्ता को सुधार भी होत है। अब इके लाने जरूरी है कि अपने पास पशुन की अच्छी जोड़ी हुए। हमारे कहवे को मतलब है कि किसानी के संगे अगर अपन पशुपालन को काम भी अपना लें तो सोने पे सुहागा वाली कहावत अपन सिद्ध कर सकत। अब हमारी बातन से अगर पशुपालवे की इच्छा हो रही होए या फिर अपन भैया पहला से एक अच्छे पशुपालक हो तो जो ध्यान रहे जैसे भी होए दूध के उत्पादन बढ़ावे में भी अपनी भूमिका निभाने हैं। अब प्रश्न उठत जो है कि जो सब एक संगे कैसे होए, तो भैया हरो इके लाने जरूरी हो जाते है कि अपन पशुधन प्रबंधन का अच्छे से अपनाए। अपन इके लाने दुधारू नस्लन की बढ़ोतरी संकरण तकनीकी को उपयोग करके कर सकत, संगे संगे उन्नयन तकनीकी और चयनात्मक पद्धति का अपना के भी अपन पशुओं की नस्लें सुधार के अच्छे दूध देवे वाले पशु तैयार कर सकत। पशुपालक भैयन से इते हम जो जरूर कहबी के गैया और भैंसियन के प्रजनन की भी अपन खा उचित व्यवस्था करने। इको प्रबंधन सभी पशु पालकन का जरूरी है। इन्हें जो समस्याएं अपने सामने आ सकती उनकी जानकारी हमसे अपन ले सकत हो, जैसे पहले बयान में पशु की अधिक उम्र को हो जावो, दूध देवे वाले जानवरन को लंबो सूखो समय, छोटो दूध श्रवण काल, दो बयान के बीच समय को लंबो अंतर, शांत ऋतु काल या फिर पशु को बार बार ऋतु काल में आ जावो। इन समस्यान को हल अपने पशुपालक भैया इस प्रकार से करें कि मादा पशु को मिलन नर पशु से कमई उम्र में करा देवे। और हमाओ तो इते पे जो कहबो है कि इस प्रकार की अगर समस्या होए तो पशु की उम्र से ज्यादा महत्व पशु के भार यानी उके वजन खा दें। अगर गैया हो तो पहले गर्भाधान की बेरा उको भार 200 से 250 किलोग्राम और भैंसिया हो तो उको भार 300 से 350 किलोग्राम भव चाहिए। गांवन में पहले गर्भाधान की बेरा गैया की उम्र 4 साल और भैंसिया की उम्र 4.5 साल मानी जात है। पंच जो तो जानता ही है कि गैयन को गर्भकाल 280 से 285 दिना यानी 6 से 6.25 महीना और भैंसन को गर्भकाल 310 से 315 दिन अर्थात 10.5-11 महीना को होत है। इतने पे जो ध्यान धरे रहने के अंत के 6 से 8 हफ्ता के बीच गर्भ में शिशु को सबसे ज्यादा विकास होत है। इस स्थिति में 2 महीना को शुष्क काल पर्याप्त है। शुष्क काल पशुओं को वो समय आए जिमे अपन उनसे दूध लगावो बिल्कुल बंद कर दे। आजकल वैसे 45 से 60 दिना को शुष्क काल एक आदर्श समय मानो गाओ है। अपने जानवरों को दूध निकालो बंद करती बेरा भी अपन खा 2-3 बातन को विशेष ध्यान रखने हैं। अगर अपनो पशु 4-5 लीटर दूध से ज्यादा रोज नहीं दे और उगे थनेला जैसी कोनो बीमारी नहीं आ तो अपन दूध दोहबो एकदम से बंद कर सकत। और गैया या भैंसिया इसे ज्यादा दूध रोज देत हुए तो वे शुष्क करवे के लाने पहला 2-3 दिना

0: घंटा के अंतर में, फिर 2-3 दिना 36 घंटा के अंतर में, और फिर अगले 2-3 दिना 48 घंटा के अंतर में दूध लगावे के बाद फिर अपन उनको दूध लगावो एकदम से बंद कर सकत। जो ध्यान भी पशुपालकन का रखने हैं कि पशु के ब्यावे के बाद शुरू के 2 ऋतुकाल छोड़ के तीसरे ऋतुकाल में मादा पशु का ज्ञावन कराव चाहिए। पशुपालक अगर अपनी गैया भैंसियन में जब जे लक्षण देखें तो समझो चाहिए कि उनको ऋतुकाल शुरू हो गया है। लक्षण है उनके खावे पीवे या चरवे के स्वभाव में अंतर आ जावो, उनको जुगाली बंद कर देवो, दूसरो दूध उत्पादन की मात्रा घट जावो, जब गैया दूसरी गैयन पे चढ़े या दूसरी गैया अपनी गैया पे चढ़े और वह सांड ठाड़ी रहा है, और तीसरी तरह तरह देर में वह पेशाब करे या अन्य दूसरे पशु खबा चाटक दिखाए, तो समझो चाहिए कि ऋतु कालू को अब आ गयो है। इतने सब के संगे इन बातन को ध्यान भी अपने पशु पालकन खा रखने हैं। जोन पशु गर्भित हो चुके हुए ना तो ऊखा दौड़ाए ना दूसरे पशुओं के संगे राखे, इसे गर्भपात जैसी घटनाएं न घटें। गर्भावस्था की आखिरी बेरा में पशु के पोषण आहार पे विशेष ध्यान रखें और संक्रामक बीमारियों से बचावे के लाने टीकाकरण अवश्य करवाएं। अगर अपन इस प्रकार से पशु प्रबंधन अपनाउद भय पशुपालन के व्यवसाय से जुड़त हो तो निश्चय अपन का इस क्षेत्र में अच्छी सफलता मिल है और अच्छा आर्थिक लाभ हुई है।
1: अभी किसान भाइयों के लिए खेती किसानी का प्रसारण किया गया। मीडियम वेपर आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए श्री रामचरित मानस गान।

रावण ने छल कपट करके सीता जी का हरण किया। साधारण मनुष्यों की भांति दोनों भाई वन में सीता को खोजते हुए फिर रहे हैं। सती के साथ अगस्त ऋषि के आश्रम से लौटते हुए शिव जी ने प्रभु को देखा तो उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। उन्होंने उन्हें सच्चिदानंद परमधाम कहकर प्रणाम किया और अपने मार्ग पर चलते रहे। सती के मन में शंकर की यह दशा देखकर संदेह उत्पन्न हो गया। उन्हें शंका हुई कि जो स्वयं जगत का ईश्वर है, देवता मनुष्य तथा मुनि जिसके सामने सिर नवाते हैं, क्या वह एक राजपुत्र को इस प्रकार प्रणाम करेगा।

0: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। गायक कलाकार थे अनुराधा पोडवाल। संगीत संयोजन सतीश भाटिया का था। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए चिंतन।
1: श्री रामचरितमानस रामायण में एक विशेष चौपाई है, बड़े भाग मानुष तन पाबा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निकाबा। जीव को 84 लाख योनियों में भटकते भटकते बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है, जो देवताओं को भी दुर्लभ है, क्योंकि मनुष्य शरीर से ही धर्म और पुण्य होता है। इसी से भगवान की भक्ति होती है और जिसके फलस्वरूप स्वर्ग तथा मोक्ष अथवा भगवान के धाम बैकुंठ की प्राप्ति होती है। परंतु मनुष्य का शरीर मिल जाना ही बड़े भाग्य की बात नहीं है। रामचरितमानस की दूसरी चौपाई कहती है कि शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं कि सुनहु उमा तय लोक अभागी, हरि तज हो ही विषय अनुरागी। अर्थात हे पार्वती, वे मनुष्य बड़े अभागी हैं जो भगवान को भूलकर संसार के विषयों में ही प्रेम करते हैं, राग रंग में भूले रहते हैं। बाजार में जाओ, मिर्च खरीदो और मिर्च को चीख लो, यदि वो चटपटी ना हो तो उसे क्या खरीदोगे। सेठ की दुकान से गुड़ लेने जाओ और गुड़ को चीखो, यदि गुड़ मीठा ना हो तो उसकी क्या कीमत होगी। और किसी दुकानदार से नमक लेना चाहो और नमक नमकीन ना हो तो क्या खरीदोगे। जैसे मिर्च में चटपटापन ना हो, गुड़ में मिठास ना हो, नमक में नमकीनता ना हो, तो मिर्च मिर्च नहीं, गुड़ गुड़ नहीं, नमक नमक नहीं। इसी तरह यदि मनुष्य में मनुष्यता ना हो तो मनुष्य मनुष्य नहीं है। गर्मी में एक प्यासा आदमी सेठ की दुकान में गया, बोला, सेठ जी बड़ी प्यास लगी है, एक लोटा पानी पिला दो। सेठ बोला, बैठो, कोई आदमी या नौकर आएगा तो पिलवा देंगे। कुछ देर आदमी रुका, बोला, सेठ जी बहुत प्यास लगी है। सेठ बोला, ठहरो, कोई आदमी आ जाने दो तो जल पिलवा देते हैं। वो प्यासा आदमी बोला, पानी पिलाने के लिए आप ही तनक आदमी हो जाते। इस दृष्टांत का अर्थ है कि सेठ जी धनी तो थे पर उनमें आदमियत या मनुष्यता नहीं थी। जो किसी के काम ना सके वो मनुष्य कैसा। अंग्रेजी में एक कहावत है कि मैन हुड इज द ग्रेट गिफ्ट ऑफ गॉड, अर्थात मनुष्यता भगवान की बहुत बड़ी देन है। जो मनुष्य शरीर पाकर दूसरों के काम नहीं आता, केवल मैं ही खाऊं, मैं ही पहनूं, मैं ही जीऊं, ऐसा भाव

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। भारत स्लोवाकिया देशयोः सम्बन्धः समग्र सहभागित्वेन संवर्धितः अस्ति। ब्रातिस्लावा नगरे प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना तस्य स्लोवाकिया समकक्षीयेण रॉबर्ट फिको इत्यनेन सह वार्तालापस्यानन्तरं श्रम प्रवास डिजिटल तन्त्रज्ञान रक्षादिषु प्रमुखेषु क्षेत्रेषु सहकारं वर्धयितुं उभौ पक्षौ समग्र एकादश सन्धिपत्रेषु हस्ताक्षरितवन्तौ। पश्चात् संयुक्त वार्ताहर सम्मेलनं संबोधयन् श्रीमोदी अवदत् यत् सम्बन्धानाम् उन्नतिः सह विश्वासानां प्राथमिकतानां भविष्यस्य च प्रतीकः अस्ति। कस्यापि भारतीय प्रधानमन्त्रिणः यूरोपीय राष्ट्रस्य प्रथमायां यात्रायां श्रीमोदी अवदत् यत् उभौ देशौ रक्षाक्षेत्रे सन्धिपत्रे हस्ताक्षरं कृतवन्तौ।
1: एआई का भविष्य केवल इनोवेशन से नहीं बल्कि ट्रस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ह्यूमन डिग्निटी पर आधारित होना चाहिए। रक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास और स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का प्रमाण है। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में हमने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया। इससे ज्वाइंट डेवलपमेंट, ज्वाइंट प्रोडक्शन और डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी।
0: स्लोवाकिया देशस्य राष्ट्रपतिना पीटर पेलेग्रेनी इत्यनेन स्लोवाकिया देशस्य सर्वोच्चं प्रशासकीय सम्मानं द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास इति प्रधानमन्त्रिणं श्रीमोदिनं प्रदत्तम्। श्रीमोदी स्लोवाकिया देशस्य राष्ट्रपत्ये सर्वकाराय नागरिकेभ्यश्च विशिष्ट सम्मानाय कृतज्ञतां प्रकटितवान्। द्वयोः राष्ट्रयोः यात्रायाः तृतीये चरणे G7 शिखर सम्मेलने भागग्रहणाय प्रधानमन्त्री श्रीमोदी अद्य फ्रांस देशस्य एवियन नगरं सम्प्राप्ष्यति। तस्य आगमनावधौ फ्रांस देशस्य राष्ट्रपतिना इमैनुअल मैक्रों इत्यनेन औपचारिकरूपेण तस्य स्वागतं क्रियते। द्विपञ्चाशत्तमं G7 शिखर सम्मेलनं ह्यः एवियन नगरे समारब्धम्, यत्र विश्वस्य प्रमुखानां अर्थव्यवस्थानां नेतारः प्रमुखेषु वैश्विक समाह्वानेषु विचार विनिमयं कुर्वन्ति। राष्ट्रपतिः मैक्रोवर्यः

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एविया पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर मजबूत करने पर चर्चा होगी। सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इसके बाद वे राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। फ्रांस के एवियन शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम करने के विषय पर रात्रि भोज का आयोजन किया। 3 दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रभाव को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो की वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
0: स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया की सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता का सम्मान है। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में

महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। दोनों देशों ने समझौते पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षर होने की पुष्टि की है, जबकि औपचारिक हस्ताक्षर समारोह शुक्रवार को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में होगा। समझौते के तहत होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने, समुद्री यातायात बहाल करने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित अन्य मुद्दों पर 60 दिन की वार्ता शुरू करने का रास्ता साफ होने की उम्मीद है। केंद्र ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया है। उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए विद्यार्थियों की सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता के संबंध में राज्य सरकारों की तैयारियों की समीक्षा की। गृह सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से विद्यार्थियों की सुगम यात्रा सुनिश्चित करने की अपील की। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। संघ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष लगभग 1000 रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का चयन सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर परिणाम देख सकते हैं। अंक कट ऑफ और उत्तर कुंजी अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद वेबसाइट पर जारी की जाएगी। फीफा विश्व कप में काबो वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। पहली बार विश्व कप खेल रही काबो वर्डे के गोलकीपर वोजेहना ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई अवसर नहीं दिया। काबो कार्डो करीब 5 लाख आबादी वाला छोटा सा द्वीपीय देश है। इस परिणाम को टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। दांबुला में एक दिवसीय क्रिकेट की त्रिकोणीय श्रृंखला के रोमांचक मैच में श्रीलंका ए ने भारत ए को सुपर ओवर में 7 रन से हरा दिया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए फ्रांस पहुंचेंगे। केंद्रीय गृह सचिव ने नीट UG पुनः परीक्षा से पहले सुरक्षा और तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने संस्कृति विभाग से सभी समाजों की परंपराओं से जुड़े कार्यक्रम करने के दिए निर्देश। और प्रदेश में प्री मानसून सक्रिय, आज ग्वालियर भोपाल समेत 30 जिलों में आंधी और बारिश का येलो अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च राजकीय सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। इस पुरस्कार को श्री मोदी ने गर्मजोशी, विश्वास और भारत तथा स्लोवाकिया के लोगों को एकजुट करने वाले प्रेम का प्रमाण बताया। इससे पहले उन्होंने भारत स्लोवाकिया संबंधों को लेकर संबोधित करते हुए कहा कि
1: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। यह हमारे साझा विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो देशों के दौरे के तीसरे चरण में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एवियन पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो प्रधानमंत्री का औपचारिक स्वागत करेंगे। इसके बाद श्री मोदी शिखर सम्मेलन के कार्यकारी सत्र में भाग लेंगे, जिसका विषय है नई साझेदारी बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का पुनर्निर्माण करना। इस सत्र में G7 देशों के नेताओं, सहयोगी देशों के प्रमुखों और विश्व बैंक तथा अफ्रीकी विकास बैंक के प्रतिनिधि भी हिस्सा लेंगे। बैठक के दौरान श्री मोदी कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इसके बाद में वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

0: फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस के एवियन शहर का दौरा भी करेंगे। उल्लेखनीय है कि भारत G7 शिखर सम्मेलन में 13वीं बार हिस्सा ले रहा है और प्रधानमंत्री मोदी लगातार 7वीं बार इसमें शामिल हो रहे हैं। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने नीट UG पुनर्परीक्षा से पहले सुरक्षा और तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। 21 जून को होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा को लेकर उन्होंने विद्यार्थियों की सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता पर विशेष ध्यान देते हुए इस परीक्षा के लिए राज्य सरकारों की तैयारियों की समीक्षा की। गृह सचिव ने सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश दिए हैं। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने इस वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम कल घोषित कर दिए हैं। आयोग ने बताया कि 1000 से अधिक रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए चयन किया गया है। उम्मीदवार UPSC की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in से प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग ने कहा कि पिछले वर्ष 1087 रिक्तियां थीं और मुख्य परीक्षा के लिए 14000 से अधिक उम्मीदवारों को चयन किया गया था। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR News भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कल मंत्रालय में हुई बैठक में संस्कृति विभाग के अंतर्गत संचालित योजनाओं और गतिविधियों की समीक्षा की। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी 6-7 माह में बड़े त्यौहार, सांस्कृतिक पर्व एवं मेले मनाए जाएंगे। ये सभी त्यौहार हमारी धार्मिक आस्थाओं और प्रकृति के प्रति हमारी कृतज्ञता का प्रतीक हैं। इन सभी अवसरों पर संस्कृति विभाग सभी समाजों को उनकी आस्थाओं और सांस्कृतिक परम्पराओं को जोड़कर वृहद आयोजन करे। प्रदेश में वर्ष 2025-26 की कक्षा 5वीं और 8वीं की पुनः परीक्षा आज से शुरू हो रही है। ये 23 जून तक चलेगी। इस परीक्षा में सत्र 2025-26 की मुख्य परीक्षा में अनुत्तीर्ण एवं अनुपस्थित विद्यार्थी शामिल हो सकेंगे। परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा प्रदेश भर में कुल 2795 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। ये परीक्षा सुबह 10 बजे से शुरू होगी। कक्षा 5वीं की पुनः परीक्षा में लगभग 1,17,000 से अधिक और कक्षा 8वीं के लगभग 1,32,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। प्रदेश को एग्रो सौर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की मौजूदगी में कल नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग, मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम और जर्मन सरकार समर्थित इंडो जर्मन एग्री वोल्टाइक सहयोग परियोजना के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर आदान प्रदान किया गया। इसमें बताया गया कि एग्री वोल्टाइक कृषि एवं सौर ऊर्जा के संयुक्त उपयोग को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया एक संगठन है, जिसका उद्देश्य कृषि भूमि पर खेती के साथ साथ उसी खेत में ही सौर ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित करना है, ताकि अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता काम हो, खाद्य सुरक्षा बनी रहे तथा भूमि संबंधी विवादों से भी बचा जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के शीर्षक से एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य से आधुनिक आधारभूत संरचना के निर्माण की दिशा में सरकार के प्रयासों की।
2: एक मजबूत और आधुनिक राष्ट्र की नींव विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे पर टिकी होती है। पिछले 12 वर्षों में भारत ने परिवर्तन की एक अभूतपूर्व यात्रा तय की है, जिसमें अवसंरचना आधारित विकास को देश की प्रगति का आधार बनाया गया है। इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च 2014-15 के 2,00,000 करोड़ रुपए से 6 गुना बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। पिछले 12 वर्षों में देश की शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। देश का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 5 गुना बढ़कर 248 किलोमीटर से आज 1100 किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिससे शहरों में संपर्क और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार हुआ है। भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क रखने वाला देश है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2026 में 146,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। परिवर्तन की यह तस्वीर रेलवे क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रेलवे के लिए बजटीय प्रावधान लगभग 9 गुना बढ़कर वर्ष 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपए से अब 2,78,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इस निवेश ने रेलवे के आधुनिकीकरण को गति दी है और यात्रियों के सफर को और अधिक सुविधाजनक बनाया है। रेल के

0: नए युग का प्रतीक वंदे भारत ट्रेन है। वर्तमान में इसकी 162 सेवाएं संचालित की जा रही हैं, जिनसे यात्रा समय में 45% तक की बचत हो रही है। इन सभी उपलब्धियों के माध्यम से एक तेज, बेहतर और अधिक समृद्ध भारत आकार ले रहा है, जो वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रख रहा है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: छत्तीसगढ़ में आयोजित 36वीं राष्ट्रीय जूनियर एवं सब जूनियर कैनो स्प्रिंट चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 12 से 14 जून तक आयोजित इस प्रतियोगिता में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए प्रदेश के खिलाड़ियों ने 25 स्वर्ण, 11 रजत और 3 कांस्य पदक के साथ कुल 39 पदक अर्जित किए। इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के बेटों और बेटियों ने सभी 4 वर्गों में चैंपियनशिप जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया है। अब करते हैं मौसम का। प्रदेश में मानसून इस हफ्ते दस्तक दे सकता है। उससे पहले राज्य के बड़े हिस्से में प्री मानसून की गतिविधियां सक्रिय हैं। मौसम विभाग ने आज के लिए भोपाल, ग्वालियर समेत करीब 30 जिलों में गरज चमक के साथ आंधी और बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। झाबुआ कन्या क्रीड़ा परिसर में बड़ी प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसके तहत छात्राओं का चयन 22 जून से 26 जून तक किया जाएगा। नर्मदापुरम के पचमढ़ी वायसन लॉज में आज उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग तथा जिला प्रशासन के द्वारा आम महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा पन्ना के पवई विधानसभा क्षेत्र में लाभार्थी संपर्क कार्यक्रम में संवाद करेंगे। मंडला में आज समान नागरिक संहिता के उच्च स्तरीय समिति सदस्य बुधपाल सिंह आरडी कॉलेज में आयोजित जन परामर्श समिति बैठक में शामिल होंगे। डिंडौरी में उत्कृष्ट विद्यालय मैदान करंजिया में जन कल्याणकारी शिविर का आयोजन किया गया। सतना में पल्स पोलियो अभियान के लिए कुल 1809 टीकाकरण बूथ, 7 ट्रांजिट बूथ और 26 मोबाइल टीमें बनाई गई हैं। और आगरमालवा जिले के कानड़ स्थित प्राचीन हनुमान बावड़ी पर बावड़ी उत्सव और संगोष्ठी का आयोजन किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए पहुंचेंगे फ्रांस। केंद्रीय गृह सचिव ने नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले सुरक्षा और तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने संस्कृति विभाग से सभी समाजों की परंपराओं से जुड़े कार्यक्रम करने का किया आह्वान। और प्रदेश में प्री मानसून सक्रिय, आज ग्वालियर और भोपाल समेत 30 जिलों में आंधी और बारिश का येलो अलर्ट। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं।
2: मीडियम व्यापारी आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए बुंदेली सुगंध क्रम में बुंदेली काव्य पाठ। कवि हैं डॉक्टर जवाहरलाल द्विवेदी।
3: जहां हमारी बुंदेली की पहली रचना आपके सामने पेश कर रहे हैं। रे मन धाम ओढ़ छे चलिए, जहां बहुती है नदी बेतवा, मन भर खूब सपरिए। रे मन धाम ओढ़ छे चलिए, राजा बन के राम बिराजे।

राजा मधुकर शाह अनोखे हो गए भक्त माल में पढ़िए। रानी कुंवर गणेश धन वही उनकी कीरत सुनिए। रेमन धाम ओढ़ छे चलिए प्रय आजाद सातार नदी पे माटी सिर पे धरिए।

बानी से भोसागर से तरिए रीमन धाम और छा चलिए। किते मेरी दूसरी बुंदेली रचना, किते हिरा गए गांव हमारे उनको ढूंढते फिर रहे पने पांव पे मार कुलैया उरद मूंग से चुर रहे कहां गए बे अथाई चौतरा कहां गए बूढ़े बारे किते बिला गए रमटे रासुर कहां गए आला गावे बारे प्रेम भाव में लूबर लग रहो सदभाव बनावत फिर रहे किते हिरा गए गांव हमारे उनको ढूंढत फिर रहे उठत भुंसरा सुना परती घर घर वारा मासी ढोर बछेरू हारन जा रहे घंटी सुना परती खासी गोधन तो सब रो मिट गो है दूध पाउडर पी रहे किते हिरा गए गांव हमारे उनको ढूंढत फिर रहे कबू बनती मठा महेरी कबू चैच की भाजी खात कबू ते बेर को बिरचन कड़ी बनती साजी बरा मंगोरा सपने हो गए पिज्जा मोड़ा खा रहे किते हिरा गए गांव हमारे उनको ढूंढत फिर रहे भले हते माटी के घर तो मन सो टंची सोनो सुख दुख में संगे ते सबके प्रेम भाव तो नोनो ऊंचे अटा अटारी बन गए ऐठत लंपा से रह गए किते हिरा गए गांव हमारे उनको ढूंढत फिर रहे भूड़े भये बाप मताई सोचत को कर वे सेवा सूखी रोटी देवे झूकत सबई मसक रे मीवा संत तो संध्यानासी हो गई बेटा सरमन रो रहे किते हिरा गए गांव हमारे उनको ढूंढत फिर रहे सबके हाथन में मोबाइल कर लई मुठी में दुनिया रमिया चौकी में रो रही है भैयन से बोलत नैया अपनो तो हो गए बिराने ठलुआ गरे से लग रहे किते हिरा गए गांव हमारे उनको ढूंढत फिर रहे। मेरी तीसरी बुंदेली रचना, घरवारी बोली घरवारे से कैसे हो एक गुजारो तुमने पी पी दारू सैया घर पोलो कर डारो जब आई थी ई घर में तो खूब हतो तो डेरा चांदी सोने से लद गई थी हार हतो पच तोला बकरी के दोरे दस ठुआ धोरा बैल बंधते भैंसन के दूध से सैया मटका रोज भरते घर भरो तो नाज पानू से मजा खूब उड़ रहे थे दद्दा सू तीन गाँव नो सौ कक्का बज रहे थे अब जो लगो सनीचर घर में मिट गई संपद सारी बैल रहे ना एक कैसे करो जा हर वारी चांदी सोनो में बेच मिटा दो नैया बगल रुपया कैसे कटे बताओ जो मांगे को परो समैया घरे नई नाज खावे को रमिया छमिया रो रहे तुम उठो तनक काई अवलो जो तान पिछोरा सो रहे पियत पियत ई बिस्के प्याला खो सूख ठटेरे हो गए अब तो ई खो छोड़ो सैया काए जीवन खो रहे काए जीवन खो रहे। मेरी चौथी रचना, अब तो

जो पैसा कोड़ी लुटा लौट घर आओ, ऐसे ही बेचत जा रहे संपत कर रहे बंटा ढारो। अब तो तन

कि बिचारो सैया अब तो तनक बिचारो, घरन घरन और गेलन गेलन हो रे सैया घेरा, अच्छो रहो मूरख चंद को हड़प लयो है डेरा, जमी जमाई पुरखन की इज्जत पे पानू ना डारो, अब तो तनक बिचारो सैया अब तो तनक बिचारो, घर में चार जने मोड़ा मोड़ी लगी ब्याह के मोरे, बिन पैसा को बात न करवे लगवे की के कोरे, नाते रिश्तेदारन में नैया को फूटी कोड़ी देवे बारो, अब तो तनक बिचारो सैया अब तो तनक बिचारो, गाने धरती धरी साव के खेती चौपट हो गई, भुगु गैया और फटपटिया कौनाक में बिक गई, मांगे को जो आओ समैया फिर रो मारो मारो, अब तो

तनक बिचारो गाने धरती धरी साव के खेती चौपट हो गई भुग गईया और फटपटिया कौनाक में बिक गई मांगे को जो आओ समैया फिर रो मारो मारो अब तो तनक बिचारो सैया अब तो तनक बिचारो ई में मिट गए धर्म राज से द्रौपदी दाव लगी ती मौका जुड़ दो धन पागो तो सारी सोह खिंची ती कृपा भई बंसी बारे की होगा तो निर्वारो अब तो तनक बिचारो सैया अब तो तनक बिचारो अब तो मानो कई हमारी जुआ बुराई से बच के रहियो पने खून पसेनी की कमाई से सब दिन काम चलियो मान ले हो तो नी को रे सुख को फैले उजियारो अब तो तनक बिचारो सैया अब तो तनक बिचारो। मेरी चौथी रचना देखत देखत जो का हो गो अपनो जाओ पराओ हो गो जी पे सबरी आस्ट की ती बेऊ सब हमको अनजानो हो गो देखत देखत जो का हो गो हमें लगत तो बने आसरो अंत समय को।

0: Oh, Hugo.
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे बुंदेली सुगंध क्रम में बुंदेली काव्य पाठ। कवि थे डॉक्टर जवाहरलाल द्विवेदी। मीडियम व्यापारी आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।

0: अनजान के एक गीत को आवाज दी थी आशा भोसले ने। फिल्म का नाम था सागर संगम।
1: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
2: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अनूप जलोटा की आवाज में राजेंद्र कृष्ण की शब्द रचना। धुन बनाई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म का नाम है कत्ल।

0: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: बदलो बदलो, आदत बदलो।
3: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
2: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: श्रोताओ, ये गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार और आशा भोसले के युग स्वर में। गीत इंदिवर का था, संगीत बप्पी लहरी का, फिल्म का नाम था मजाल।
1: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
2: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे शब्बीर कुमार की आवाज में मजलूम फिल्म का ये गीत। फिल्म संगीत में लीजिए आप सुनिए महानंदा फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे महानंदा फिल्म का ये गीत उषा मंगेशकर और भूपेंद्र की आवाज में। इसके साथ ही फिल्म संगीत कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। मीडियम वेब पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। समाचार प्रभात थोड़ी ही देर में हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं।

0: एलएनजी के साथ होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित निकला। दक्षिणी कैलिफोर्निया
1: अमरीकी वायुसेना ठिकाने पर B-52 बम वर्षक विमान हादसे में 8 लोग मारे गए। और फुटबॉल में फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए केप वर्दे की टीम ने स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोका। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ। और अब समाचार विस्तार से। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया की सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह भारत के 140 करोड़ लोगों

0: और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता का सम्मान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्लोवाकिया यात्रा संपन्न हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी की स्लोवाकिया यात्रा कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एवियां पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे, सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर मजबूत करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ये 13वीं और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 7वीं भागीदारी है।
1: G7 देशों के लिए भारत का बढ़ता महत्व अब केवल रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में भी दिखाई दे रहा है। हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता, नीस में आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम और पेरिस में होने वाले वीवोटेक में भारत आधिकारिक AI साझेदार देश के रूप में भागीदारी इसकी स्पष्ट मिसाल है। इससे पता चलता है कि G7 देश भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी, नवाचार, विनिर्माण और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि फ्रांस की G7 अध्यक्षता कई प्रमुख प्राथमिकताएं, जिनमें वैश्विक असंतुलन को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत बनाना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार उपयोग शामिल है, भारत की क्षमताओं और प्राथमिकताओं के साथ काफी हद तक मेल खाती हैं। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियों, फ्रांस।
0: फ्रांस के एवियों शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने अपनी नवीनतम समीक्षा में डीजल और विमान ईंधन ATF के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क SAED में वृद्धि की है। डीजल पर निर्यात शुल्क 13.05 रूपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 14 रूपये प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं ATF निर्यात पर शुल्क 9.05 रूपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 12.05 रूपये प्रति लीटर कर दिया गया है। ये वृद्धि आज से लागू हो गई है। पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तरल प्राकृतिक गैस ने ले जा रहा टैंकर दिशा ने हुरमुज जल डमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर दिया है। पश्चिम एशिया में युद्ध शुरू होने के बाद से इस जलमार्ग को पार करने वाला ये पहला भारतीय LNG टैंकर है। इस टैंकर में 62,370 मीट्रिक टन LNG है और भारतीय शिपिंग निगम के अंतर्गत कंसोर्टियम यास का प्रबंधक है। अमरीका और ईरान के बीच प्रारंभिक युद्ध विराम समझौते की घोषणा के बाद से ये हुरमुज जल डमरू मध्य को पार करने वाले पहले वाणिज्यिक जहाजों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत के आधार पर भारत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज बात आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार की शून्य सहिष्णुता नीति की।
2: पिछले वर्ष 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट किया कि यदि आतंकवाद किसी देश की नीति का हिस्सा बनेगा तो उसका सीधा और सशक्त जवाब दिया जाएगा। इस ऑपरेशन के जरिए भारतीय सेना ने लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थित 9 प्रमुख आतंकवादी लॉन्च पैडों को नष्ट कर दिया। इस अभियान में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। वहीं 9 और 10 मई को भारत ने इतिहास रचते हुए परमाणु हथियार युक्त किसी देश के 11 एयरबेसों पर एक ही अभियान में प्रहार करने वाला पहला राष्ट्र बनने का गौरव प्राप्त किया। इस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान वायुसेना के लगभग 20% बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में जम्मू कश्मीर में 15वीं कोर के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लो ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकारी एजेंसी की खुफिया क्षमता और समन्वय की सराहना की।
3: इंडिया फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ,
4: भारत ने मजबूत स्थिति में होने के बावजूद जिम्मेदार लोकतंत्र और परमाणु संपर्क

0: अन्य देश होने के नाते उनकी इस अपील को स्वीकार कर लिया। इस तरह ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकी देश को कड़ा सबक सिखाया कि भारत पर किसी भी आतंकी कृत्य को बख्शा नहीं जाएगा।
1: वहीं 7 पड़ोसी देशों से लगी 15,000 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत आज नेशन फर्स्ट के सिद्धांत पर आधारित प्रभावी विदेश नीति का पालन कर रहा है। सिलचर के प्रोफेसर अनूप कुमार डे ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि
2: 263 में से ज्यादातर हिस्सों में इंटरनेशनल जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ फेंसिंग हो गया है, उसके कारण न केवल वहां से जो अनुप्रवेश है उसमें रोक लगी है, उसके साथ साथ वहां से जो इलीगल ट्रेड्स होता था वो भी बंद हुआ है।
1: नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाकर देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: अमेरिका में दक्षिणी कैलिफोर्निया के मोजावे स्थित अमेरिकी वायुसेना के अड्डे से उड़ान भरने के तुरंत बाद B-52 बम वर्षक विमान कल रात दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार सभी 8 लोगों की मौत हो गई। सोशल मीडिया पर अमेरिकी सेना ने बताया कि एडवर्स वायुसेना अड्डे पर स्थानीय समय अनुसार सुबह लगभग 11:20 पर विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिलने के बाद आपातकालीन दल मौके पर पहुंच गया। इसके बाद हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया और आने वाले विमानों का मार्ग बदल दिया गया। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा की घोषणा से पश्चिम एशिया में उम्मीद की नई किरण जगी है। क्षेत्र के देशों ने लंबे समय से जारी तनाव को कम करने की इस पहल का स्वागत किया है। औपचारिक रूप से इस समझौते पर शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर किए जाएंगे। समझौते में होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर खोलने और वार्ता जारी रहने तक युद्ध विराम बढ़ाने का प्रस्ताव है। इस घटनाक्रम का असर तेल बाजार पर भी दिखा है। आपूर्ति में सुधार की उम्मीद के बीच तेल की कीमतों में गिरावट आई है। समझौते की घोषणा के बावजूद पूरा विवरण जारी नहीं किया गया है, इसलिए प्रतिबंधों में ढील, ईरान के परमाणु कार्यक्रम और होर्मुज जलडमरू मध्य में नौ वहन नियमों पर दोनों पक्षों के बीच मतभेद अभी भी कायम है। ऐसे में इसराइल लेबनान सीमा की स्थिति समझौते की सफलता की अहम कसौटी बन सकती है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
3: फीफा विश्व कप में केप वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। पहली बार विश्व कप खेल रही केप वर्डे के गोलकीपर वोजिन्ना ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई अवसर नहीं दिया। इस परिणाम को टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ रहा। ग्रुप एच में सऊदी अरब और उरुग्वे का मैच 1-1 से बराबरी पर छूटा। केंद्र ने नीट यूजी पुनः परीक्षा के लिए सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में यह फैसला किया गया। बैठक में राज्य सरकारों की तैयारियों की समीक्षा की गई। गृह सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से विद्यार्थियों की सुगम यात्रा सुनिश्चित करने की अपील की। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। संघ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष लगभग 1,000 रिक्तियों के लिए 13,000 से अधिक उम्मीदवारों का चयन सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर परिणाम देख सकते हैं। अंक, कट ऑफ और उत्तर कुंजी अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद वेबसाइट पर जारी की जाएगी। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने शिकागो स्थित भारतीय दूतावास में स्वामी विवेकानंद की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। श्री क्वात्रा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण करके गर्व का अनुभव कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने हम सभी के लिए सेवा और समरसता के जीवन का कालजयी संदेश दिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने सिंगापुर के नेशनल यूनिवर्सिटी NUS को अमरावती में वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित करने उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय शाखा स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया है, ताकि अमरावती को वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित किया जा सके। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
5: धन्यवाद फरहत।
3: अमेरिका ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध को समाप्त करने और हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने पर सहमति बनने का

0: समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण लिखता है अमेरिका ईरान में समझौता, होर्मुज से निकलने लगे जहाज। जनसत्ता की सुर्खी है स्विट्जरलैंड में 19 को समझौते पर किए जाएंगे हस्ताक्षर, ट्रंप ने नाकेबंदी खत्म करने की मंजूरी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने समझौते का स्वागत किया। अमर उजाला के शब्द हैं भारत के लिए बड़ी राहत, तेल आपूर्ति सुधरेगी, घटेगी महंगाई। 1000 किलोमीटर मार करने वाली स्वदेशी क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। पत्र लिखता है स्वदेशी माणिक टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल, सभी मानक पूरे किए। वैष्णो देवी के तीर्थ स्थान पर इस बार पिछला रिकॉर्ड टूटने के आसार, श्रद्धालुओं की संख्या 1 करोड़ होने के पार होने की उम्मीद, देशबंधु की खबर है। वीर अर्जुन ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते हुए महिला किसानों की तस्वीर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है किसानों की किस्मत बदल देगा जेवर हवाई अड्डा, वाणिज्यिक उड़ानें शुरू, पहली उड़ान से लखनऊ पहुंचे जमीन देने वाले किसान। मॉनसून लापता, सैटेलाइट तस्वीरों में गायब हुए बादल, दैनिक भास्कर की खबर है। पत्र लिखता है देश में 4 से 15 जून के बीच 64% कम बारिश दर्ज हुई। लोकसत्य ने अपने संपादकीय पन्ने पर भारत में पिछले कुछ वर्षों में सड़क दुर्घटनाओं में हो रही बढ़ोतरी पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है हर दिन सड़क हादसों में 500 जिंदगी खाक। लेखक ने विश्लेषण दिया है कि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस के स्टाफ और लापरवाह वाहन चालकों के विरूद्व कड़ी कार्रवाई करने के साथ साथ लोगों द्वारा वाहन चलाने में सावधानी बरतने की जरूरत है। लेटे लेटे मोबाइल चलाना, जवानी में दे रहा बुढ़ापे का दर्द। 18 से 45 आयु वर्ग के 5400 युवाओं पर किए गए सर्वेक्षण में हुआ खुलासा। टेकनेस सिंड्रोम से गर्दन दर्द, अकड़न, कंधों में तनाव, सिर दर्द जैसी समस्याएं हो रही हैं, हिंदुस्तान की खबर है।
1: धन्यवाद जया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्लोवाकिया ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के व्यों में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कनाडा और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों तथा संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। सरकार ने डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क बढ़ाया, पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं। भारतीय जलपोत दिशा 62,370 मीट्रिक टन LNG के साथ होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित निकला। दक्षिणी कैलिफोर्निया में अमरीकी वायुसेना ठिकाने पर B-52 बम वर्षक विमान हादसे में 8 लोग मारे गए। और फुटबॉल में फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए केप वर्डे की टीम ने स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोका। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। स्लोवाकिया कन्फर्स इट्स हाईएस्ट ऑनर ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास ऑन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। प्राइम मिनिस्टर मोदी टू पार्टिसिपेट इन G7 समिट इन एवियन फ्रांस टुडे, to also hold bilateral meetings with Prime Minister of Canada and UK and UAE President. Government hikes export duties on diesel and aviation turbine fuel. Export duty on petrol remains unchanged. Indian ship Disha, carrying 62,370 metric tons of LNG cargo, safely crosses Strait of Hormuz. 8 people killed after B-52 bomber crashes at US Air Force Base in Southern California. And in football, Cape Verde stunned Spain in scoreless draw at FIFA World Cup. Belgium also settled for 1-1 draw with Egypt. President of Slovakia, Peter Pellegrini, has conferred Slovakia's highest state honour, the Order of the White Double Cross First Class, upon Prime Minister Narendra Modi. Secretary West in the Ministry of External Affairs, C.B. George, said that the Prime Minister expressed his heartfelt gratitude to the President, the government and the people of Slovakia for the distinguished honour.
3: As a special gesture, President conferred the highest state decoration of Slovakia, Order of the White Double Cross First Class, upon Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi for his role in an exceptional contribution in building India-Slovakia relationship. Minister dedicated the award to the people of India.

0: श्रीवास्तव टीकमगढ़ से, श्री द्वारका प्रसाद शुक्ला टीकमगढ़ से और सियाराम नायक जी छिपरी माताधाम से तथा मैं ओम प्रकाश तिवारी कक्का जीवरा मोरा पृथ्वीपुर से आप सबकी सेवा में बुंदेली कविता लेके हाजिर हैं। सो सबसे पहले ई काव्य गोष्ठी में हम सादर आमंत्रित कर रहे अपने भैया श्री प्रभु दयाल श्रीवास्तव जी को जो टीकमगढ़ से पधारे हैं। सो उनकी बुंदेली कविता को आनंद लो।
1: एक चौकड़िया के मुश्किल मन मोहन के मारे, मुश्किल मन मोहन के मारे, अरे छरकत ब्रज की नारे, मुश्किल मन मोहन।

0: ईबे झपकत पलक उतारे मुश्किल मनमोहन के मारे और दिन दोपहरे घर में घुस जावे दिन दोपहरे घर में घुस जावे दही पे डाको डाले मुश्किल मनमोहन के मारे सबरे सखन संग जुर मिलके सबरे सखन संग जुर मिलके खाके रेत डकारे मुश्किल मनमोहन के मारे खावे कम बगरावे ज्यादा खावे कम बगरावे ज्यादा नैनू आन जुठारे मुश्किल मनमोहन के मारे और घर में कोनो कमती नैया घर में कोनो कमती नैया नाए माए मो मारे मुश्किल मनमोहन के मारे ओ इनसे सदा बरकती रही हो इनसे सदा बरकती रही हो इंदियारे उजियारे मुश्किल मनमोहन के मारे।
1: आजकल ये जेठ मास की खरीद पानी चल रही वही पे एक चौकड़िया है किसन

0: या लाल दुपरिया,
1: बहुत बढ़िया।
0: झूम झकोर झकर चल रही सो, झूम झकोर झकर चल रही सो, उड़ उड़ जात चुनरिया,
1: बहुत बढ़िया।
0: सन्ना रही जा लाल दुपरिया, गैलारे नहीं चलत दिखा रहे, गैलारे नहीं चलत दिखा रहे, सुनी डरी डगरिया,
1: बहुत बढ़िया।
0: सन्ना रही जा लाल दुपरिया,

0: या लाल दोपहरिया। एक नायिका अपने प्रियतम से कह रही है,
1: स्वागत है
0: के प्रीतम चले बाजारे जइयो।
1: वाह
0: प्रीतम चले बाजारे जइयो, एक काम कर दइयो। प्रीतम चले बाजारे जइयो, बिजली को नहीं कछु ठिकानो, बिजली को नहीं कछु ठिकानो, सो तुम बिजना ले आइयो। बिजली को नहीं कछु ठिकानो।

0: बिना अधूरे लग जाए है घर में घूरे ओ सबई खोना लग है जानोनी ऐसो करो सो जले जोत जीवन की जीने जन्म तू संगारो तेना भई है ऊकी जा। अब जो है हमारी अगली कविता घर की बिगड़त जा रही गानी।
1: अच्छा घर की बिगड़त जा रही गानी।
0: जा कैसी आग लगी घर आंगन में सास बहु न भा रही।
1: अच्छा
0: उलट फेर में परो घरोंदा किबारे नाच नचा रही मचको रासो मारे निस्दिन दीवारे बन में सता रही। जा कैसी आग लगी घर आंगन में सासे बहु न भा रही। लड़का कात ना करो बिलोरा ठाट बड़ेरो चूकत जा रही परो परोसी खूब ही हसरो बिद के हमें दाग लगा रही।
1: अच्छा।
0: जा कैसी आग लगी घर आंगन में सासे बहु न भा रही,
1: भा रही।
0: करत ड्रामा उठतन है रोजऊ मुई रोजऊ जा घर जा दार न भा रही।
1: क्या बात
0: बन तू ए सास है घर की खपरा फोर घर ही मिटा रही
1: मिटा रही।
0: जा कैसी आग लगी घर आंगन में सासे बहु न भा रही। तू ए सास सब रो देखे जा रही दो रोटी नहीं काए खुआ रही वही के बर्तन भाड़े सबरे वही के घर में खनका रही। जा कैसी आग लगी घर आंगन में सासे बहु न भा रही। सुकल सरस ब्यादन में पर गए हमरो घरो हमरो धरो ले हमें सता रही मजपारन पथरा से ढड़कावे सबरो लेके ना चल पा रही। जा कैसी आग लगी घर आंगन में सासे बहु न।
1: अभी हमारे भैया श्री द्वारका प्रसाद जी शुक्ला जी बुंदेली में अपनी रचना पढ़ रहे थे। बहुत ही आनंद आ उनकी रचना से। अब हम मातृधाम छिपरी से पधारे हमारे श्री सियाराम जी नायक उन्हें हम सादर आमंत्रित कर रहे कि वे अपनी बुंदेली रचना को प्रस्तुत करवे।
2: यह रचना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर आधारित है। बिटिया दो कुल को उजियारो बिटिया दो कुल को उजियारो बिटिया ने संसार समारो बिटिया

0: दूध पिलाओ बिटिया दो कुल कौ जियारो, बिटिया ने संसार समारो, बिटिया दो कुल कौ जियारो। लयो जन्म किशोरी रही जब तक, घर को काम करत रही तब तक, दो मात पिता खु सहारो, बिटिया दो कुल को उजियारो।
1: जेठ मास की फसल पर बहुत गर्मी की ऋतु पर आधारित है।

0: रहे अब दिन जेठ मास के आ गए। कहत सियारित गर्मी कैसी पिटा पांस लई हसिया जैसी करन बखन्नी जा रहे करन बखन्नी जा रहे अब दिन जेठ मास के आ गए।
1: बहुत बढ़िया।
0: इसी के क्रम में जब चैत के महीना में अपनी फसल कटती है बिलवारी की धुन है उस पर आते थे मई

0: बहुत बढ़िया।
1: आ गई फसल कटन की बेरा, मिलत मजूर है नैया, भुन सारे दिन डूबे तलासे, सुनत को है नैया, पिसिया खड़ी।

0: खोलें कैया, दिन भर झारा समेटी करती पौती रती कुचैया। के रंग हमें न फुर्सत आए जो घामो, परो चलो न जाए खेतन में।
1: वाह क्या बात है।
0: पर रहे चेत चंदेरे घामे, हवा चलत है नैया, बादर दें भड़का सो भारी हो।

0: तनु में कहत सिया अब अपने मन से कैसे फसल कटे जा। ठंडी हवा चलाओ राम जी सुख से फसल कटे जा। महीना चैत मास को आए जो घामो
1: बहुत बढ़िया
0: परो चलो ना जाए खेतन में।
1: क्या कहना,
0: इसी के क्रम में यह एक चेतावनी के रूप में है, इस प्रकार है। भजलो राम गुसैया जोत

मैया जोतन कछु काम को नैया। गई जवानी थकत भई देहिया भूल में डरे कृष्ण कन्हैया। खबर लेते को नैया जोतन कछु काम को नैया। कहत सिया भजो अपने राम खो ले जे हैं प्रभु अपने धाम खो। को काऊ को नैया जोतन कछु काम को नैया। इसी के क्रम में एक महान भक्ता सबरी पर आधारित यह कवित है। सबरी की भक्ति पे हो के प्रसन्न राम एक दिना।

0: झारत रही गेले श्री राम के बुलावे खो, डारत रही असुआ प्रभु दर्शन के पावे खो। खड़ी होत राह बीच इकटक निहार कहे, कब मैं कहूंगी आज राम घरे आए हैं, कब मैं कहूंगी आज राम घरे आए हैं। भक्ति बसी नौ बन्नी सबरी के हृदय बीच, भक्ति के बीच राम हृदय में समाए हैं। भाव और भक्ति में डूबी देख सबरी खो, राम लखन सबरी के द्वारे पे आए हैं। करोड़ों जन्मों की पुन्नन के उदय होत, सबरी के जूठे बेर राम जी ने खाए हैं। कहत हैं सियानित अपने मन से बार बार, भीलनी सी भक्ता ने अनंत फल पाए हैं। सबरी की भक्ति पे होके प्रसन्न राम, एक दिना सबरी के द्वारे पे आए हैं।
1: अब यही संग है हमारे कक्का जीवरा मोहरा से पधारे हैं श्री ओम प्रकाश तिवारी जी, जो अपनी आंखें अपनी कविता जो है करवे।
2: धन्यवाद शुक्ला जी। और हम सबसे पहले एक प्रभाती बुंदेली सुना रहे, यशोदा जी अपने कन्हैया को जगा रही,
3: बहुत
2: सो एक प्रभाती हम प्रस्तुत कर रहे। अरे

सुता के रक्षक सो आन बड़ाई सारी ईश्वर राखे लाज तुम्हारी। अब जिन महापुरुष ने अपने अच्छे आचरण करके अपने उदाहरण प्रस्तुत करे, अपने सत्कर्म करे, उनकी लाजे एक चौकरिया बुंदेली में देख लो। जन्म खो करो सार थक जिनने।

कमालो जग में सु ऐसे महापुरुषन ने जन्म खो करो सार थक जिनने। अब हमारे रक्षक हैं राम जी, सो उनके लाजे ये चौकड़िया प्रस्तुत है। सबके रक्षक राम गुसैया, सबके

मंगू सैया। रानी लक्ष्मी बाई ने दुश्मन के दांत खट्टे कह दे थे, सो उनके इलाज में एक चौकड़िया है। रन में छोड़ा दे ते छक्के, ये रन में छोड़ा दे ते छक्के, ये हते इरादे पक्के, रन में छोड़ा दे ते छक्के, खट्टे दांत करे दुश्मन के, खट्टे दांत करे दुश्मन के, रे गए हके बक्के, रन में छोड़ा दे ते छक्के। स्वतंत्रता की अलख जगा गई, स्वतंत्रता की अलख जगा गई, सुन्नी के पथरा रखे, ए नी के पथरा रखे, रन में छुड़ा दे थे छक्के। एक चौकड़िया और ले लो।

0: तो सुखदाई। अबे बुंदेली का गोष्ठी आपके सामने प्रस्तुत करी जा रही थी। ई में हमारे जो कवि भैया शामिल भय उमें प्रभुदयाल जी श्रीवास्तव टीकमगढ़ से, द्वारका प्रसाद जी शुक्ला टीकमगढ़ से, सियाराम जी नायक छिपरी मातरधाम से, और मैं ओम प्रकाश तिवारी कक्का जीवरा मोरा पृथ्वीपुर से आप सबके बीच में काव्य गोष्ठी लेके हाजिर भय। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे रसावतरण क्रम में बुंदेली कवि गोष्ठी। मीडियम वेब पर आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। प्रस्तुत है लोकरंग कार्यक्रम। कलाकार हैं जगदीश कुमार जोशी। पहले सुनते हैं गणेश वंदना।

0: अब कैंसर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं,
1: क्योंकि अब ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेट सीटी स्कैन, लीनियर एक्सेलरेटर जैसे एडवांस मशीन उपलब्ध है। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, मंदिर की माता।
2: मम्मी।

0: अब कैंसर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं,
1: क्योंकि अब ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेट सीटी स्कैन, लीनियर एक्सेलरेटर जैसे एडवांस मशीन्स उपलब्ध हैं। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, मंदिर की माता।
2: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही साथ गांव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
3: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: लोकरंग कार्यक्रम में लीजिए, आप सुनिए बुंदेली महिमा लोकगीत, कलाकार जगदीश कुमार जोशी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे चेतावनी। इसके साथ ही लोकरंग कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। कलाकार थे जगदीश कुमार जोशी। मीडियम वेब पर आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए एक ही गीतकार, इसमें आपको सुनाते हैं इरशाद कामिल के लिखे गीत। श्रोताओं, आपने बहुत से गीत सुने होंगे, दिल दिया गल्ला, करांगे नाल नाल बैठ बैठ के, जग घूमियो थारे जैसा न कोई, जाने कहां, ऐसे बहुत से फिल्मी गीत जो आप गुनगुनाते हैं, जानते हैं। जिसने लिखे ये प्यारे प्यारे गीत, आप समझ गए होंगे। जी हां, बिल्कुल सही, इरशाद कामिल जी। इरशाद कामिल एक गीतकार हैं। उनका जन्म पंजाब के मुस्लिम परिवार में सन 1971 में हुआ। कामिल ने हिंदी उर्दू में पीएचडी की। इरशाद कामिल के शुरुआती कैरियर में टेलीविजन शो के टाइटल ट्रैक लिखते थे। उन्होंने कई शो के टाइटल ट्रैक लिखे, जिनमें ना जाइयो परदेश, कहां से कहां तक शामिल है। कामिल ने पंकज कपूर निर्देशित शो दृष्टम का टाइटल शो यानी टाइटल ट्रैक लिखा था।

कामिल ने हिंदी सिनेमा में एंट्री फिल्म चमेली से की। उन्होंने इस फिल्म के लिए गीत लिखे जो काफी प्रसिद्ध हुए। इसके बाद तो हिंदी सिनेमा में हर कोई उनके साथ काम करने के लिए तैयार था।

इरशाद कामिल ने हिंदी फिल्मों के लिए कई गीत लिखे, जिसके लिए उन्हें कई अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। कामिल को इम्तियाज अली की फिल्म रॉक स्टार के लिए फिल्म फेयर के अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है।

0: Mummy, where is that airplane going?
1: My child, now every corner of India is getting connected through the skies.
2: When India takes flight, dreams take flight. Cities connect, opportunities grow.
1: Over the past 12 years, under the visionary leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, more than 160 airports have been developed. The Udaan scheme has made air connectivity possible for smaller towns and cities. Digi Yatra has made air travel smoother, simpler, and more seamless.
2: Ministry of Civil Aviation, a new flight for a developing India. 12 saal vishwas ke, vikas ke, jan kalyan ke.
3: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी. बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में. 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली.
4: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है. ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है.
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के.

इरशाद कामिल ने जिन फिल्मों में गीत लिखे वो प्रसिद्ध फिल्में थीं, चमेली, शब्द, सोचा न था, आहिस्ता आहिस्ता, ढोल, जब भी मेट, आ देखें जरा, नील एंड निक्की, लव आजकल, अजब प्रेम की गजब कहानी आदि।

इसके साथ ही एक ही गीत का कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। इसमें आज आपने इरशाद कामिल के गीत सुने। मीडियम वेब पर आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। जिले की चिट्ठी कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से रिले करते हैं।

0: देखिए फ्रांस की G7 अध्यक्षता कई प्रमुख प्राथमिकताएं जिनमें वैश्विक असंतुलन को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत बनाना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार उपयोग शामिल है, भारत की क्षमताओं और प्राथमिकताओं के साथ काफी हद तक मेल खाती हैं। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
1: फ्रांस के एवियो शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है।
2: उपयोग एवं प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए जोर दिया जा रहा है। इस संबंध में जिले के सिरमौर विकासखंड के अंतर्गत भीरखाम गांव में कृषि विभाग एवं आत्मा परियोजना के संयुक्त तत्वावधान में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और लगातार संघर्ष के बल पर युवा अपनी मंजिलों को हासिल कर ही लेते हैं। इसे ही चरितार्थ कर दिखाया है रीवा जिले के ग्राम बुसौली निवासी बाबूलाल रावत ने। बाबूलाल का चयन भारतीय सेना में हुआ है। बाबूलाल रावत शासकीय ITI रीवा के इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के छात्र रहे हैं। बाबूलाल बताते हैं कि इस मुकाम पर पहुंचने के लिए उन्होंने पिछले 4 वर्षों तक लगातार कड़ा संघर्ष और अथक परिश्रम किया है। रीवा जिले में मछली पकड़ने पर आज से 15 अगस्त तक प्रतिबंध लगा दिया गया है। वर्षाकाल में मछलियों के प्रजनन काल को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर ने जिले के सभी जलाशयों में मछली पकड़ने पर प्रतिबंध के आदेश दिए हैं। इस अवधि में मछली का शिकार, विनिमय तथा परिवहन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जिले भर में पौधरोपण के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में संभागायुक्त सहित अन्य अधिकारियों और स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने पौधे लगाए। कृषि विभाग द्वारा जिले भर में किसानों को पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूक किया गया। वन विभाग ने जयंती कुंज में पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता संवर्धन विषय पर एक विशेष संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन भी किया। वहीं माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के रीवा परिसर में मातृशक्तियों द्वारा पौधों का रोपण कर प्रकृति के संरक्षण का संदेश दिया गया। बीते दिनों रीवा के कृष्णराज कपूर ऑडिटोरियम में प्राकृतिक खेती की जागरूकता के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने किसानों से प्राकृतिक खेती करने का आह्वान किया। आगामी सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के तहत पुलिस प्रशिक्षण शाला रीवा में विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन बीते दिनों किया गया, जिसमें जिला पुलिस बल, विशेष सशस्त्र बल एवं होमगार्ड के कुल 49 अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। ललितपुर सिंगरौली रेल परियोजना के तहत निर्मित रीवा जिला स्थित गोविंदगढ़ रेलवे स्टेशन टनल में CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं। रेलवे अधिकारियों से प्राप्त सूचना के आधार पर पूरे टनल में कुल 52 CCTV कैमरे लगाए जाने हैं। इन कैमरों के माध्यम से टनल के प्रत्येक हिस्से पर नजर रखी जाएगी। कैमरों की लाइव मॉनिटरिंग रीवा स्थित रेलवे सुरक्षा बल द्वारा की जाएगी। बीते दिनों रीवा के मेहरसेन तरणताल में 54वीं राज्य स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 4 दिवसीय इस प्रतियोगिता में 114 इवेंट्स में 18 जिलों के 200 खिलाड़ी तथा उनके साथ 50 ऑफिशियल्स भी शामिल हुए। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने विजयी खिलाड़ियों को मेडल प्रदान किए। रीवा जिले की चिट्ठी में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे रीवा जिले की चिट्ठी, आलेख आरती श्रीवास्तव का, वाचक स्वर अभिषेक कटियार का। ये प्रसारण आकाशवाणी भोपाल से किया जा रहा था। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें।

0: Hamacas.
1: आकाशवाणी का ये छतरपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए पत्रिका कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका।

आज के विज्ञान पत्रिका में चर्चा के विषय हैं सिकल सेल जीन थेरेपी एवं जलवायु स्वास्थ्य संगठन प्रबंधन में एआई की भूमिका। होंगी विज्ञान जगत की खास खबरें और फिल्मी गीत। आप सभी श्रोताओं को सुरेंद्र सिंह का नमस्कार। श्रोताओं, आज हम बात करेंगे एक ऐसी आधुनिक चिकित्सा तकनीक की जो सिकल सेल एनीमिया जैसी गंभीर अनुवांशिक बीमारी से जूझ रहे लाखों लोगों के लिए नई आशा लेकर आई है। इस तकनीक का नाम है सिकल सेल जीन थेरेपी। श्रोताओं, सिकल सेल एनीमिया एक अनुवांशिक रक्त रोग है। इसमें लाल रक्त कोशिकाएं सामान्य गोल आकार की बजाय हसीये या दराती जैसी हो जाती हैं। इन विलुप्त कोशिकाओं के कारण शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह प्रभावित होता है, जिससे रोगी को अत्यधिक दर्द, कमजोरी, बार बार संक्रमण और कई अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। भारत में विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों में ये बीमारी बड़ी संख्या में पाई जाती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और ओडिशा जैसे राज्यों में इसके मरीज अधिक हैं। लंबे समय तक इसी बीमारी का केवल लक्षणों के आधार पर उपचार किया जाता रहा, लेकिन अब विज्ञान ने जीन थेरेपी के रूप में एक नई दिशा दिखाई है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं जीन थेरेपी क्या है। सरल शब्दों में कहें तो जीन थेरेपी शरीर के दोषपूर्ण जीन को ठीक करने या बदलने की एक आनुवंशिक चिकित्सा पद्धति है। सिकल सेल रोग में हीमोग्लोबिन बनाने वाला जीन प्रभावित होता है। जीन थेरेपी के माध्यम से मरीज की अस्थि मज्जा यानी बोन मेरो से स्टेम सेल निकाले जाते हैं और प्रयोगशाला में उनके जीन में सुधार किया जाता है। इसके बाद इन सुधारे गए कोशिकाओं को दोबारा मरीज के शरीर में प्रत्यारोपित किया जाता है। इस प्रक्रिया के बाद शरीर स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाएं बनाने लगता है, जिससे बीमारी के लक्षणों में काफी कमी आ जाती है और कई मामलों में मरीज सामान्य जीवन जीने में सक्षम हो सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि जीन थेरेपी सिकल सेल रोग के उपचार में एक क्रांतिकारी कदम है। इससे बार बार अस्पताल जाने की आवश्यकता कम हो सकती है और रोगी के जीवन की गुणवत्ता बेहतर हो सकती है। हाल के वर्षों में दुनिया के कई देशों में इस तकनीक को मंजूरी मिली है और इसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। कई मरीजों में दर्द के गंभीर दौरों में कमी देखी गई है और उन्हें रक्त चढ़ाने की आवश्यकता भी काफी कम हो गई है। दोस्तों, भारत में भी इस दिशा में अनुसंधान और प्रयास जारी हैं। सरकार ने वर्ष 2047 तक सिकल रोग उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए जागरूकता अभियान, जांच कार्यक्रम और आधुनिक उपचार सुविधाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। श्रोताओं, स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि सिकल सेल रोग की समय पर पहचान भी उतनी महत्वपूर्ण है। विवाहपूर्ण और नवजात शिशुओं की जांच से इस बीमारी के प्रयास को काफी हद तक रोका जा सकता है। प्रिय श्रोताओं, विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में हो रहे

नवाचार मानव जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। सिकल सेल जीन थेरेपी इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ये तकनीक न केवल रोगियों को नई उम्मीद दे रही है, बल्कि भविष्य में आनुवंशिक रोगों के उपचार के लिए नए द्वार भी खोल रही है। दोस्तों, रोगी को भी अपने अंदर विश्वास जगाना चाहिए कि मैं भी एक दिन भला चंगा हो जाऊंगा। उनके लिए हम बजा सकते हैं ये गीत।

0: मेरी जंग। दोस्तों, अभी आपने इस फिल्म का गीत सुना लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाजों में। आनंद बख्शी के गीत को संगीतबद्ध किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। श्रोताओं, हम समय समय पर आपको ऐसे वैज्ञानिकों से परिचय करवाते हैं जिन्होंने समाज की बेहतरी के लिए काम किया है। ऐसे ही एक वैज्ञानिक है टिम बर्नर्स-ली, जिनकी खोजें समाज को नई दिशा दे रही हैं। आइए उनके संपूर्ण जीवन और खोजों से आपका परिचय करवाते हैं संदीप कुमार अहिरवार की वार्ता से। विषय है महान वैज्ञानिक टिम बर्नर्स-ली।
1: दोस्तों, आज का युग विज्ञान का युग है। विज्ञान ने हमें जीवन के लिए महत्वपूर्ण वस्तु उपलब्ध करवाई है, जिनके बिना हमारे जीवन संभव ही नहीं है। ऐसे ही आज हम एक महान वैज्ञानिक टिम बर्नर्स-ली के ऊपर बात करेंगे। सर टिमोथी जॉन बर्नर्स-ली, जिन्हें दुनिया टिम बर्नर्स-ली के नाम से जानती है, आधुनिक युग के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक है। इनका जन्म 8 जून 1955 को लंदन में हुआ था। इनके माता पिता दोनों गणितज्ञ थे और ब्रिटेन के पहले कमर्शियल कंप्यूटर पर काम कर चुके थे, इसलिए टिम को बचपन से ही तकनीक का माहौल था। उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से 1976 में भौतिकी में प्रथम श्रेणी की डिग्री प्राप्त की। कॉलेज के दिनों में ही उन्होंने पुराने टीवी, सोल्डरिंग आयरन और एक M6800 प्रोसेसर से अपना खुद का कंप्यूटर बना लिया था, जो उनकी जिज्ञासा और प्रतिभा को दर्शाता है। टिम बर्नर्स-ली का नाम इतिहास में अमर हो गया जब उन्होंने 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब यानी WW का आविष्कार किया। उस समय वे स्विट्जरलैंड की प्रसिद्ध प्रयोगशाला CERN के सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम कर रहे थे। CERN में हजारों वैज्ञानिक अलग अलग देशों से आकर शोध किया करते थे, लेकिन उनके कंप्यूटर और डेटा सिस्टम एक दूसरे से जुड़े नहीं थे। जानकारी साझा करना बेहद कठिन था। इसी समस्या को हल करने के लिए टिम ने एक ऐसी प्रणाली की कल्पना की जहां दुनिया भर के कंप्यूटर आपस में जुड़ सकें और दस्तावेज हाइपरलिंक के जरिए एक दूसरे से लिंक हो सकें। मार्च 1989 में उन्होंने इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट आ प्रपोजल नामक दस्तावेज लिखा और अपने बॉस को दिया। शुरुआत में से वेजू बट एग्जाइटिंग कहकर रख दिया गया, लेकिन टिम हार नहीं माने। अपने सपने को साकार करने के लिए टिम ने तीन बुनियादी तकनीकें विकसित की जो आज भी इंटरनेट की रीढ़ हैं। पहली HTML, जिसका पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, जिससे वेब पेज बनाए जाते हैं। दूसरी URL, जिसका पूरा नाम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जिसकी हर वेब पेज का एक अनोखा पता होता है। और तीसरी HTTP, जिसका पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो ब्राउजर और सर्वर के बीच जानकारी भेजने का नियम है। 1990 के अंत तक उन्होंने दुनिया का पहला वेब ब्राउजर, पहला वेब सर्वर और पहला वेब पेज बना लिया था। 6 अगस्त 1991 को उनकी पहली वेबसाइट सार्वजनिक हुई। उसमें बताया गया था कि वेब क्या है और इसके उपयोग कैसे करें। टिम बर्नर्स-ली की सबसे बड़ी महानता यह थी कि उन्होंने WWW का पेटेंट नहीं कराया। 30 अप्रैल 1993 को CERN ने घोषणा की कि वेब तकनीक सभी के लिए हमेशा मुफ्त रहेगी। यदि टिम चाहते तो वे बिल गेट्स से भी अमीर हो सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि वेब मानवता के लिए है। इसी उदाहरण के कारण आज इंटरनेट पर अरबों वेबसाइटें जैसे यूट्यूब, गूगल, व्हाट्सएप जैसी क्रांतियां संभव हो पाई हैं। 1994 में टिम ने WWWC, जिसका पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब कंजोर्टियम, की स्थापना की, जो आज भी HTML, CSS जैसे वेब मानकों को बनाता है ताकि इंटरनेट हर डिवाइस पर एक जैसा चले। 2004 में ब्रिटेन की महारानी ने उन्हें नाइट की उपाधि दी और वे सर टिम बर्नर्स-ली कहलाए। 2016 में उन्हें कंप्यूटर विज्ञान का नोबेल माने जाने वाला ट्यूरिंग अवार्ड मिला। आज भी सर टिम इंटरनेट को बेहतर बनाने में लगे हैं। उनका सॉलिड प्रोजेक्ट चाहता है कि लोगों का निजी डेटा फेसबुक या गूगल जैसी कंपनियों के बजाय खुद उनके पास रहे। वर्ल्ड वाइड वेब की खोज के बाद भी सर टिम बर्नर्स-ली का सफर रुका नहीं। उन्होंने वेब को केवल एक तकनीक नहीं बल्कि एक सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में देखा। 1994 में उन्होंने MIT में वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम यानी WWC की स्थापना की। इसका मकसद यह तय करना था कि वेब के नियम, भाषा और तकनीक किसी एक कंपनी के कब्जे में न रहे। WWC की वजह से ही आज HTML5, CSS और वेब एक्सेसिबिलिटी के मानक बनते हैं, जिससे चाहे आप क्रोम चलाएं या सफारी, वेबसाइट एक जैसे ही दिखाई देती है। टिम WWC के आजीवन निदेशक रहे और यह सुनिश्चित किया कि वेब हमेशा ओपन और रॉयल्टी फ्री रहे। उनका मानना था कि अगर वेब पर टैक्स लग गया तो गरीब देश डिजिटल की दुनिया से कट जाएंगे। सर टिम की सोच हमेशा भविष्य की ओर थी। 1998 में उन्होंने सिमेंटिक वेब का विचार दिया। इसका मतलब था कि वेब पर मौजूद जानकारी को कंप्यूटर खुद समझ सके। जैसे आज आप गूगल से पूछते हैं दिल्ली का मौसम तो गूगल सीधा जवाब देता है लिंक नहीं, यह सिमेंटिक वेब की ही देन है। टिम चाहते थे कि डेटा आपस में जुड़े, जिसे लिंक डेटा कहते हैं। इसी सोच ने आगे चलकर आज AI, चैटबॉट और वॉयस असिस्टेंट की नींव रखी। 2009 में उन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब फाउंडेशन की शुरुआत की। इसका मकसद था इंटरनेट को दुनिया के हर कोने तक पहुंचाना। आज भी दुनिया की 37% आबादी के पास इंटरनेट नहीं है। फाउंडेशन डिजिटल समानता, ऑनलाइन प्राइवेसी और फेक न्यूज के खिलाफ काम करता है। टिम ने कई बार चेतावनी दी कि वेब डिजिटल डिस्टोपिया बन सकता है अगर बड़ी कंपनियां लोगों के डेटा का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। इसी दर्द को लेकर उन्होंने 2018 में सॉलिड प्रोजेक्ट लॉन्च किया। सॉलिड का आइडिया क्रांतिकारी है। आज आपको फोटो, चैट, लोकेशन सब फेसबुक और गूगल के सर्वर पर है। सॉलिड चाहता है कि इंसान का अपना POD यानी पर्सनल ऑनलाइन डेटा स्टोर हो। आप तय करेंगे कि इंस्टाग्राम को आपकी फोटो देखे या नहीं, यानी डेटा का मालिकाना आपके पास होना चाहिए। टिम बर्नर्स-ली को उनकी सेवाओं के लिए अनगिनत सम्मान मिले। 2004 में उन्हें ब्रिटेन की महारानी ने नाइटहुड दिया। 2007 में ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला, जो ब्रिटेन का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और एक समय में केवल 24 जीवित लोग ही इसे धारण कर सकते हैं। 2012 के लंदन ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी में उन्होंने पूरी दुनिया के सामने लाइव ट्वीट किया, दिस इज फॉर एवरीवन। वह पल 1 अरब लोगों ने देखा और यह लाइन वेब का अनौपचारिक नारा बन गई। 2016 में उन्हें ट्यूरिंग अवार्ड मिला, जिसे कंप्यूटिंग का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। व्यक्तिगत जीवन में टिम को बेहद सादगी पसंद है। वे आज भी सूट बूट से दूर टी शर्ट में ही दिखाई देते हैं। उन्होंने 2 शादियां की और 3 बच्चे हैं। उन्हें पढ़ना, हाइकिंग करना और साइंस फिक्शन पसंद है। वे हमेशा से युवाओं से कहते हैं, आप जो भी बनिए उसे दुनिया के साथ शेयर करें। ज्ञान छुपाने से नहीं, बांटने से बढ़ता है। सर टिम का सबसे बड़ा संदेश यह है कि तकनीक न्यूट्रल होती है। वेब ने हमें विकिपीडिया भी दिया और साइबर बुलिंग भी। यह हम पर है कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। इसलिए वे लगातार कॉन्ट्रैक्ट फॉर द वेब कैंपेन चला रहे हैं, जिसमें सरकार, कंपनी और नागरिक तीनों से वेब को सुरक्षित और सभी के लिए फायदेमंद बनाने की अपील की है। CERN ज्वाइन करने से पहले टिम ने 1976 से लेकर 1980 तक प्लेसी कंपनी में दूध संचार उपकरण पर काम किया। 1980 में वे 6 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर CERN आए। यहीं उन्होंने इंक्वायर नाम का प्रोग्राम बनाया। ये

0: पर्सनल डेटाबेस था जहां हर पेज दूसरे पेज से लिंक हो सकता था। इंक्वायर में कार्ड और लिंक का कॉन्सेप्ट था। 1990 में टिम ने नेक्स्ट कंप्यूटर पर दुनिया का पहला ब्राउजर बनाया, उसका नाम भी वर्ल्ड वाइड वेब था। बाद में कंफ्यूजन से बचने को नेक्सस कर दिया। मजेदार बात यह कि वो ब्राउजर एक एडिटर भी था, यानी आप वेब पेज पढ़ भी सकते थे और उसी में एडिट करके नए पेज भी बना सकते थे। टिम चाहते थे कि वेब रीड राइट हो, सिर्फ रीड ओनली नहीं, पर बाद के ब्राउजर मोजेक नेटस्केप ने एडिटिंग हटा दी। आज 30 साल बाद गूगल, गूगल डॉक्स, नोटेशन फिर से रीड राइट वेब लौटा रहे हैं। टिम कई बार भारत आए। 2008 में IIT मद्रास में उन्होंने कहा था अगला 1 अरब यूजर भारत से आएगा, पर वेब को उनकी भाषा बोलनी होगी। उनकी इसी बात के बाद WWC ने भारतीय भाषाओं के लिए वेब स्टैंडर्ड पर काम तेज किया। आज आप भारत डोमेन देख पाते हैं, ये उसी विजन का हिस्सा है। टिम बर्नर्स-ली हमें सिर्फ लिंक नहीं दिए, आजादी दी है पढ़ने की, बोलने की, बनाने की। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम वेब को साफ सुथरा, सुरक्षित और सबका बनाए रखें। अगर टिम बर्नर्स-ली न होते तो शायद आप और हम पैराग्राफ और बहुत सारी जानकारियां जो हम मोबाइल में पढ़ते हैं और AI के द्वारा हम दुनिया की कोई भी जानकारी को उपलब्ध कर पाते हैं, यह टिम बर्नर्स-ली के द्वारा ही संभव हुआ है।
1: अभी आप वार्ता सुन रहे थे महान वैज्ञानिक टिम बर्नर्स-ली। वार्ताकार थे संदीप कुमार अहिरवार। आइए दोस्तों, अब चलते हैं दूसरी चर्चा की ओर, जिसका विषय है जलवायु स्वास्थ्य संगठन संकट प्रबंधन में AI की भूमिका। श्रोताओ, दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। बढ़ता तापमान, अनियमित वर्षा, बाढ़, सूखा, हीट वेव और वायु प्रदूषण न केवल पर्यावरण को प्रभावित कर रहे हैं बल्कि मानव स्वास्थ्य पर भी गंभीर असर डाल रहे हैं। ऐसे समय में आधुनिक तकनीक, विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI इस संकट से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले स्वास्थ्य समस्याओं में हीट स्ट्रोक, सांस संबंधी रोग, जल जनित बीमारियों और संक्रमण रोगों का फैलाव प्रमुख है। इन चुनौतियों का समय रहते पता लगाना और प्रभावी प्रबंधन करना आवश्यक है। यहीं पर AI एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में सामने आता है। दोस्तों, AI विशाल मात्रा में डेटा का विश्लेषण करके मौसम और स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों का पूर्वानुमान लगा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी क्षेत्र में अत्यधिक गर्मी पड़ने की संभावना है तो AI आधारित सिस्टम पहले ही चेतावनी जारी कर सकते हैं। इससे स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय प्रशासन आवश्यक तैयारियां कर सकते हैं तथा लोगों को सावधानी बरतने के लिए जागरूक कर सकते हैं। इसी प्रकार मच्छरों को फैलने वाली बीमारियां जैसे डेंगू और मलेरिया भी जलवायु परिवर्तन से प्रभावित होती है। AI मौसम, तापमान और आर्द्रता के आंकड़ों का विश्लेषण करके ये अनुमान लगा सकता है कि किन किन क्षेत्रों में इन बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। इससे समय पर रोकथाम के उपाय किए जा सकते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में AI का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। अस्पतालों में मरीजों के आंकड़ों का विश्लेषण करके AI ये पहचान सकता है कि किसी विशेष मौसम या पर्यावरणीय परिस्थिति में कौन सी बीमारियां बढ़ने की संभावना है। इससे चिकित्सा संसाधनों की बेहतर योजना बनाई जा सकती है। वायु प्रदूषण भी जलवायु और स्वास्थ्य संगठन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। AI आधारित निगरानी प्रणालियां हवा की गुणवत्ता का लगातार विश्लेषण करती हैं और प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होने पर चेतावनी जारी करती हैं। इससे अस्थमा और अन्य श्वसन रोगों से पीड़ित लोगों को समय रहते सावधानी बरतने का अवसर मिलता है। हालांकि AI के उपयोग के साथ कुछ चुनौतियां भी जुड़ी हुई हैं। सटीक परिणामों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले डेटा की आवश्यकता होती है, साथ ही तकनीकी संसाधनों और प्रशिक्षित मानव बल की उपलब्धता भी जरूरी है, लेकिन निरंतर अनुसंधान और विकास के माध्यम से इन चुनौतियों का समाधान किया जा सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में AI और स्वास्थ्य सेवाओं का समन्वय जलवायु संकट से निपटने की क्षमता को और मजबूत करेगा। इससे न केवल बीमारियों की रोकथाम संभव होगी बल्कि स्वास्थ्य सेवाएं अधिक प्रभावी और सुलभ बन सकेंगी। दोस्तों, अंत में कहा जा सकता है कि जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य संकट जैसी वैश्विक चुनौतियों से मुकाबला करने में AI एक महत्वपूर्ण सहयोगी बनकर उभर रहा है। यदि

इसका उपयोग जिम्मेदारी और दूरदर्शिता के साथ किया जाए तो ये मानव जीवन की सुरक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित करने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। इस विषय से संबंधित हम ये गीत बजा सकते हैं।

मिस्टर इंडिया। दोस्तों, अभी आपने इस फिल्म का गीत सुना किशोर कुमार की आवाज में। जावेद अख्तर के गीत को संगीतबद्ध किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आइए दोस्तों, अब चलते हैं विज्ञान समाचारों की ओर, सुनते हैं कुछ मुख्य समाचार। श्रोताओं, वैज्ञानिकों का दावा है कि उन्होंने जीन एडिटिंग डीएनए में बदलाव करने वाली एक नई दवा बनाई है। इस दवा की सिर्फ एक खुराक इंजेक्शन देने से शरीर में नुकसान पहुंचाने वाला खराब कोलेस्ट्रॉल एलडीएल बहुत लंबे समय के लिए कम हो जाता है। द न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में छपे इस शोध के मुताबिक अगर बड़े अध्ययनों में भी यही नतीजे आए तो ये थेरेपी दिल की बीमारियों से बचाव का स्थायी तरीका बन सकती है। अध्ययन के मुताबिक ये जीन थेरेपी दिल की बीमारी पर आजमाई गई है। ड्यूक यूनिवर्सिटी के हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर जॉन एचपी अलेक्जेंडर ने कहा कि दिल की बीमारी और कोलेस्ट्रॉल का स्थायी इलाज गेम चेंजर हो सकता है। इसी इलाज में मरीज को एक जीन एडिटिंग मशीन दी जाती है जो फैट की परत में लिपटे कणों के जरिए खून से होते हुए सीधे लिवर तक पहुंचती है। फिर ये मशीन लिवर सेल के डीएनए में जाकर पीसीके नाम के जीन को ढूंढती है और डीएनए में बदलाव कर देती है। हम अपने श्रोताओं को बता दें कि भारत में हर साल करीब 7 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हार्ट अटैक से होती है। वहीं दिल की अन्य बीमारियों की वजह से देश में सालाना लगभग 28 लाख से अधिक लोगों की जान जाती है। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। आजकल लोग अपनी जैविक उम्र की रफ्तार घटाने के लिए एंटी एजिंग क्रीम सप्लीमेंट और कई तरह के ट्रीटमेंट का सहारा ले रहे हैं। हालांकि यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के रिसर्चर्स की माने तो उम्र बढ़ने की रफ्तार कम करने का एक तरीका कला और सांस्कृतिक गतिविधियां हो सकती हैं। एक शोध में 3,556 वयस्कों के डेटा और उनके रक्त परीक्षणों का विश्लेषण किया गया। पाया गया कि जो लोग कला और सांस्कृतिक गतिविधियों में शामिल होते हैं उनमें जैविक उम्र बढ़ने की गति 4% तक घट जाती है। जर्नल इनोवेशन एंड एजिंग में प्रकाशित रिसर्च के मुताबिक पेंटिंग, संगीत, नृत्य, थिएटर और संग्रहालय जैसी कला सांस्कृतिक गतिविधियां न सिर्फ मानसिक सुकून देती हैं बल्कि शरीर की जैविक घड़ी की रफ्तार भी धीमी कर सकती हैं। अध्ययन में ये गतिविधियां व्यायाम जितनी असरदार रहीं, जिनसे जैविक उम्र करीब 1 साल और नियमित व्यायाम से 6 महीने तक कम दिखी। पेंटिंग, संगीत या नृत्य जैसी गतिविधियां तनाव हार्मोन्स कोर्टिसोल को कम कर सकती हैं। लंबे समय तक तनाव शरीर की कोशिकाओं को नुकसान और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया तेज कर देता है। संग्रहालय जाना, संगीत सुनना या कोई नई कला सीखना दिमाग को सक्रिय रखता है। याददाश्त एकाग्रता और संज्ञानात्मक क्षमता बेहतर बनी रहती है। तो दोस्तों, ये तो थी विज्ञान जगत की कुछ खास खबरें। इसी के साथ आज का विज्ञान पत्रिका कार्यक्रम समाप्त होता है। प्रवक्ता सरिंदर सिंह, प्रस्तुतकर्ता रविन्द्र कुमार प्रजापति।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विज्ञान पत्रिका कार्यक्रम। प्रस्तुति रविन्द्र कुमार प्रजापति की थी। मीडियम वेब पर आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए आपकी पसंद कार्यक्रम। आपकी पसंद कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को एम आलम का नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में अंदाज फिल्म का ये गीत। और इस गीत के लिए हमारे पास आप सभी के खत और ईमेल प्राप्त हुए हैं। अस्पताल रोड केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर से चंदेश गौहर, वंदना गौहर, मयंक और तन्वी गौहर, अनूपपुर से जयमंत्री केवट, अंजलि रुद्राणी और कृष्णा केवट, ग्राम लोहेटी जिला महोबा से जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र, अरविंद, रागनी, रिया, दिव्यांशी, रेणु, रोनिका और इनके परिवार वाले, चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा और विमला अनेजा, गांव कुमारहेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, साइना हसन नवाज, नाजिया इब्राहिम, यवतमाल विदर्भ से संतोष खड़ से और विनोद, धनौरी उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौसाद और बेबी आलिया, सदर बाजार मारबाड राजस्थान से रमेश चंद चौहान, जय नारायण, तरुण और प्रतीक, जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी पर्ल, विलियस डिकेस्ट्रो, बन्ने बसु पलेरा टीकमगढ़ से बिजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम और आशीष, गांव लोहगढ़ ठकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, बलजीत, राजदीप, गुरनूर, गुरलाल और अभिराज सिंह, मेरठखंड से दिग्दर्शन, कविता गौड़, कर्ण, शक्ति, रिया, जया और दर्शन, ग्राम दूलापुर मुरादाबाद से मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, मोहिनी और ऋतिक, भट्टीपुरम महोबा से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी, पंकज और आयुषी,

रघुनाथपुरा श्री गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता हिना और हर्षित, ग्राम करौली टीकमगढ़ से चतुर्भुज अहिरवार, विनोद, राजू, ब्रजेश, संध्या, पूजा, अनिकेत, रविंद्र और अंशिका, गांव नथाना पंजाब से हरछिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता, जवाहरनगर दूर से आरसी कामड़े, करुणा, मीना, अश्विनी और विपुल, रामचबूतरा कल्पी से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कौमनशा शबिस्ता, मोहम्मद नसीम, पलक, लुबना और यश मंसूरी, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, दुर्गा करौली हांसी से राजू मिघलानी, बबीता, सुभाष, योगी, बबलू और डब्बू, पनवाड़ी जिला महोबा से देवीदीन अहिरवार, सुनीता, दिनेश कुमार, कपिल और पूजा वर्मा, सौजना ललितपुर से दीपक कुमार नामदेव, द्रौपदी नामदेव, अखिलेश कुमारी, रामदेवी, चाहना और अनन्या, गांव जाखोद राजस्थान से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत, सुंदरलाल और दीपक कुमार, खकल कोच जालौन से दीपक गुर्जर, सत्यम और अंशराज। श्रोताओं, आपको सुनवाते हैं पूरब और पश्चिम फिल्म का यह गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे पूरब और पश्चिम फिल्म का ये गीत। आवाज थी लता मंगेशकर, महेंद्र कपूर, मनहर उदास और साथियों की। इसके लिए आप सभी के पत्र ईमेल हमें प्राप्त हुए। वीर सिंहपुर पाली जिला उमरिया मध्य प्रदेश से संतोष कुमार राव, भारती राव, बेलाबाई सिंह, विकास सिंह और ओम प्रकाश सिंह, इसी गीत को सुनना चाहा था। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश और सौरभ शर्मा। सलारपुर रोड कुरुक्षेत्र हरियाणा से विजेंद्र कुमार जायजान, कांता रानी, गुंजन, साहिल और वाणी। मधुबनी बिहार से नवीन सिंह, ज्योति सिंह, श्वेता, स्वाति, सुशांत और चुलबुल्लानी। मेहरनगर उमरखेर महाराष्ट्र से अभिजीत गोहांडकर, सरिता, सिद्धांत, प्रिंस और एकांश। विश्वकर्मानगर नागपुर से शैलेश गोहांडकर, वैशाली, कुमारी ध्वनि और परी। सिरधरी बाड़मेर राजस्थान से कृष्ण कुमार डाबी, राधा, विक्रम और अर्चना। फिरोजपुर पंजाब से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप और गुरलाल। मोरटका माफी जिला खंडवा से जगन्नाथ पटेल, कमला, अंतिम ज्योति, ललित, मनीषा, शुभम, देवी किशन, भावना, मानस और कनिकराज। गांव अली मोहम्मद सिरसा हरियाणा से सुभाष लूना, ओमवती, मेनपाल, अमरजीत और सीताराम कांगड़ा।

मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल, सितारा बेगम, नसीन परवीन, रोजी बिट्टू, सरदा और हिना कौशल। ग्राम मामना सरीला हमीरपुर से रामचरण विश्वकर्मा, साहिल, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल, दिव्यांशी और इनके परिवार वाले। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से छनुला श्रीवास, अनीता, पुष्पा, रंजन साहू, सुशील, देवांकन और शशिकला। खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, कृतिका, कोयल, लक्ष्य और मानकचंद मल्होत्रा। तहसील भांडेर जिला दतिया से मेहरबान सिंह नागा, संतोष कुमार और इनके परिवार वाले। सिरसा हरियाणा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा, सार्थक, सचिन, नंदिनी, प्रियंका और रोहित। श्रोताओं, आपको सुनाते हैं पाकिजा फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में पाकीज़ा फिल्म का यह गीत, और इसके लिए हमें मेल और पत्र प्राप्त हुए हैं। ग्राम पजोनिया से सत्यचंद सोलिया और इनके परिवार वाले, पद्मा टाकीज नेपानगर से सुदर्शन शाह, पल्ली प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन और इनके परिवार के सदस्य, बड़ा बाजार उदयपुर से गोपाल तांबोली, कांता, तिलक, किरण, सक्षम, परी और लावण्य, ग्राम पोस्ट भंडरा श्रीनगर महोबा से भारत अखबार, अभिषेक, नैन्सी, प्रियांशी, कुसुम, निर्दोष और इनके परिवार वाले, औरंगाबाद से राजेश सावले पाटिल, राजदीप पाटिल, राशि राजेश और शीतल राजेश, बेड़ी से राजेश सोनी, कंचन, गायत्री डोमड़े, वैष्णवी और अर्जुन गवनेकर, ऊपरकोट मोहल्ला चौकंठी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, नगद परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अवान और इनके परिवार वाले, दीवानपुरा राठ हमीरपुर से विनोद कुशवाहा, नीरज, मयंक, घनश्याम, सावित्री, पेमरानी, दिव्या, मयंक और छोटा बाबू, पूजा रेडी श्रोता संघ पलेरा टीकमगढ़ से राजेश कुमार अकेला, यशोदा यादव, राजीव और संजीव, नकरा महोबा से जानकी प्रसाद सेन, वीर नारायण, मथुरा प्रसाद, मूलचंद विश्वकर्मा और इनके परिवार वाले। इसके साथ ही आपकी पसंद कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। प्रसार भारती के मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। अगला प्रसारण कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से रिले करते हैं।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। सुबह के 11 बजे हैं। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। आज के कार्यक्रम की प्रस्तुति है श्वेता तिजोरिया की।
1: नमस्कार श्रोताओं, कुछ अंदाज, कुछ बात, कुछ ख्याल से बन जाते हैं विचार और यहीं से जन्म लेती है एक धारणा जो आगे चलकर हमारे व्यक्तित्व की पहचान बनती है। ये धारणा आधुनिक नवीन दोनों हो सकती है। खास ये है कि आप अपने विचार किस तरह रखते हैं। श्रोता मित्रों, आज हम जानना चाहेंगे आपके विचार कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में कि आपके दैनिक जीवन में प्लास्टिक का क्या महत्व है, या हम कहें कि बाजार जाते समय, यात्रा करते समय आप प्लास्टिक बैग, पॉलिथीन का प्रयोग करते हैं, क्या ये सुविधाजनक है या फिर इसके कुछ नुकसान भी हैं? हम जानना चाहेंगे आपके विचार हमारे फोन नंबर 2660902 और भोपाल के बाहर के श्रोता साथी हमें एसटीडी कोड लगाकर यानी 0755 लगाकर हमसे बात

0: कर सकते हैं। तो हमें इंतजार है आपके विचार का और आपके फोन का। हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी नमस्कार।
1: जी नमस्कार मैम।
0: आपका नाम जानना चाहेंगे हम।
1: जी मैम, मैं सचिन बात कर रहा हूँ, जिला संभल ग्राम सिरसा से।
0: जी तो कार्यक्रम में आपका स्वागत है और आज है कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे, है ना। और आज हम आपसे जानना चाहेंगे आपके विचार, है ना, आपके विचार जानना चाहेंगे है?
1: हाँ,
0: एक दैनिक जीवन में आने वाली एक बात है जिसके बारे में हम जानना चाहेंगे आपके विचार। जैसे आप अपने घर पर हैं या कहीं बाहर यात्रा करते हैं तो प्लास्टिक का कितना उपयोग करते हैं, प्लास्टिक के पॉलिथिन बैग, इन सब चीजों का उपयोग आप करते हैं?
1: जी।
0: करते हैं
1: जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे प्लास्टिक जो होती है वो उसका सिंगल यूज जो प्लास्टिक होती है उसको एक निर्धारित करें कि हमें कितना करना है। उससे पहले तो एक थैला लें आप, तो वो ही बाजार में लेके जाएं, तो उससे थोड़ा पॉलीथीन कम होती है,
0: है ना। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि प्लास्टिक है वो हमारे लिए बहुत हानिकारक होता है, आप जानते हैं प्लास्टिक का उपयोग, और पॉलीथीन जिसका उपयोग हम कर रहे हैं आज अपने दैनिक जीवन में बहुत अधिक मात्रा में हो रहा है ना। तो क्या ये हमारे लिए कितनी खतरनाक साबित हो सकती है आपको पता है?
1: जी मैम, ये बहुत खतरनाक हो सकती है। जैसे कि हम कहीं से भी निकलते हैं तो जैसे देखते हैं कि कुछ पशु खा लेते हैं तो कहीं गंदगी बहुत रहती है, ये उड़ती हैं तो खेतों में बहुत नुकसान कर देती
0: हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं, हाँ यही मैं जानना चाह रही थी आपसे, है ना।
1: हाँ,
0: कि ये पॉलिथीन का उपयोग हमें कम कम करना ही नहीं चाहिए, इसके
1: हाँ,
0: बदले हमें कपड़े के थैले, है ना, कपड़े के थैले हो गया उसका उपयोग करें बाजार जाते समय, है ना। तो ये अगर छोटी छोटी चीजों का हम अगर ध्यान रखते हैं तो हम अपने पर्यावरण को बहुत अच्छी तरह से सुरक्षित रख सकते हैं। क्या सोचते हैं आप?
1: हाँ, तो जी, तो ये तभी होगा जब हम सजग रहेंगे और हम कदम उठाएं एक कदम स्वच्छता की ओर।
0: जी
1: ये तभी संभव हो पाएगा।
0: जी बिल्कुल, और ये हम सभी का दायित्व है, है ना।
1: जी जी, हाँ ये तो, सभी का दायित्व है।
0: जी जी,
1: और आपने अपने आसपास साफ सफाई बनाए रखें,
0: बिल्कुल
1: है ना?
0: बिल्कुल, हाँ
1: तो गंदगी नहीं होगी।
0: बिल्कुल, तो आपने देखिए फोन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: धन्यवाद, नमस्ते।

0: कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे में स्वागत है आपका।
1: नमस्कार दीदी।
0: नमस्कार, आपका नाम बताएं।
1: दीदी मैं बाबू यादव बोल रहा हूँ सारनाथ वाराणसी से।
0: सारनाथ वाराणसी से आप बात कर रहे हैं। चलिए, कार्यक्रम
1: जी
0: में आपका स्वागत है, आपने फोन किया है।
1: आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
0: हाँ जी, तो आपने फोन किया है कार्यक्रम बात आपकी और गीत हमारे में, है ना?
1: जी जी जी
0: और हम एक विचार जानना चाहेंगे आपके। आप हम सभी इस देश के नागरिक हैं, है ना? तो
1: जी
0: मैं ये जानना चाहूंगी कि जैसे हम अधिकतर अपने दैनिक जीवन में प्लास्टिक बैग, है ना, प्लास्टिक की बोतल, प्लास्टिक का सामान यूज करते हैं, तो ये कहाँ तक हमारे लिए अच्छा होता है ये बताएं।
1: दीदी देखिए, ये तो अच्छा है नहीं, ये तो इंसान अपनी सुविधा के लिए करता है।
0: जी जी जी बिल्कुल,
1: प्रकृति के लिए अच्छा बिल्कुल नहीं है।
0: हाँ,
1: क्योंकि ये हमारे लिए नुकसानदेह है।
0: हाँ,
1: ये जहाँ पड़ा रहता है गलता भी नहीं है।
0: बिल्कुल अच्छी बात,
1: जलाने पर धुआं निकलता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो इसलिए ये हमारे लिए कोई फायदेमंद नहीं है और हम लोगों को इसका उपयोग नहीं करना चाहिए।
0: हाँ,
1: और पहले दीदी मैं देखता था कि पहले जब इसका चलन नहीं था,
0: हाँ,
1: तभी तो मार्केट था, तभी तो लोग सामान ले आते थे।
0: बिल्कुल वही
1: ये
0: हम
1: तो,
0: जानना
1: ये
0: चाह रहे हैं।
1: इसके पहले बाजार ही नहीं था या हम लोग नहीं थे।
0: हाँ बिल्कुल, मैं यही
1: तो
0: हाँ आपसे जानना चाह रही हूँ कि जैसे बाजार जाते समय, यात्रा करते समय हम बहुत सारी ऐसी चीज हैं, कपड़े के बने थैले हैं, है ना, स्टील की बॉटल है, इसका उपयोग कर सकते हैं, है ना, यात्रा करते समय, बाहर जाते समय।
1: इसके इसके इजाज़त से पहले

0: दीदी वही होता था कि लोग जाते थे मार्केट में तो कपड़े के थैले ले जाते थे या कागज के बैग मिलते थे,
1: हाँ
0: उसमें
1: जी जी जी
0: सामान ले आते थे जो
1: हाँ
0: कि फेंकने फेंको देने पर सड़ जाते थे और मिट्टी हो जाते थे। तो
1: बिल्कुल
0: उस जमाने में ये बात था। अब
1: हाँ
0: क्या है कि हर जगह इसका सुविधा है, लोग वही लेके चले जाते हैं
1: बिल्कुल
0: और कोई थैला लेके जाना नहीं चाहता है।
1: हाँ। और बस हम तो
0: जबकि ये हमारे लिए मतलब प्रकृति के लिए बहुत अच्छा है कि हम इसका उपयोग ना करें।
1: बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही, और जो सारे हमारे साथी सुन रहे हैं वो भी ये चीज को मानेंगे कि हमें अधिक से अधिक वैसे चीजों का उपयोग करना चाहिए जो हमारे पर्यावरण के लिए
0: मैं
1: बहुत
0: यही
1: अच्छी
0: बताना
1: होती हैं।
0: चाहूंगा,
1: जैसे हाँ बताएं।
0: कि जब ये प्लास्टिक नहीं था
1: जी
0: तब भी मार्केट लोग जाते थे और तब भी मार्केट करते थे, सामान
1: जी
0: ले आते थे, तो उस वक्त दुकानदार जो कागज के
1: जी
0: थैले देते थे
1: हाँ हाँ हाँ
0: या हम लोग अपना कागज कपड़े का थैला लेके जाते थे उसमें सामान ले आते थे, तो ये तो हम लोगों ने मतलब अपने सुविधा के लिए बना लिया, ये अच्छी
1: बिल्कुल
0: बात नहीं
1: बिल्कुल
0: है।
1: अच्छी बात
0: और
1: नहीं
0: मैं
1: है।
0: तो कहना चाहूंगा इसका इग्नोर करना चाहिए,
1: हाँ
0: बिल्कुल इग्नोर करना चाहिए।
1: बिल्कुल, तो हम तो यही चाहेंगे कि आप वही चीजों का इस्तेमाल करें जो हमारे पर्यावरण के लिए अनुकूल हो, है ना।
0: जी
1: इन
0: दीदी
1: सब
0: बिल्कुल
1: बातों का
0: जी
1: अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारी प्रकृति भी अच्छी रहेगी और हम भी स्वस्थ रहेंगे, है ना। आपने फोन किया
0: और
1: इसके लिए। हाँ
0: ये
1: जी
0: मुहिम जन जन की होनी चाहिए, ये
1: बिल्कुल
0: नहीं
1: बिल्कुल
0: कि ये
1: हाँ
0: सभी की होनी चाहिए।
1: सभी
0: जी
1: की होना चाहिए, है ना। चलिए आपने फोन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

0: नमस्कार।
1: नमस्ते मैडम जी।
0: कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में स्वागत है आपका।
1: नमस्ते मैडम, मैं गोपाल ओझा बोल रहा हूँ, ग्राम ककवासा, जिला गुना से।
0: गोपाल ओझा जी है ना। चलिए कार्यक्रम
1: में सोता हूँ मैं, तो पूरे कार्यक्रम सुनता हूँ आकाशवाणी भोपाल के। तो
0: अच्छा, चलिए आपका स्वागत है कार्यक्रम में। आज हम कुछ बातें साझा कर रहे हैं, कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में है ना। वो ये है कि जैसे बहुत सारी चीजें हम यूज करते हैं अपने घर पर है ना,
1: हाँ,
0: तो उनमें हाँ उनमें प्लास्टिक का सामान भी होता है, प्लास्टिक की पॉलिथीन, प्लास्टिक की बॉटल है ना। तो क्या ये सारी चीजें हमारे लिए अच्छी होती हैं, प्लास्टिक की पॉलिथीन, प्लास्टिक के पैकेट और बॉटल?
1: होते हैं ना, तो फिर वो क्या होता है, तो वो घर में ही रखते हैं हम।
0: नहीं, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि प्लास्टिक क्या आपके लिए अच्छा है?
1: प्लास्टिक तो
0: प्लास्टिक का अगर हम अधिक से अधिक उपयोग करते हैं या प्लास्टिक के पॉलिथीन को हम बाहर यूं ही फेंक देते हैं, तो इससे क्या होगा? इससे आपका पर्यावरण प्रदूषण होगा प्लास्टिक?
1: हाँ जी जी मैडम जी,
0: ये जानना चाह रही हूँ मैं है ना
1: जी।
0: क्योंकि देखिए पॉलिथीन अगर आप फेंक देते हैं, प्लास्टिक की बोतल कहीं पर भी फेंक देते हैं, तो ये मिट्टी में मिलती नहीं है, है ना जी। ये कचरा इकट्ठा होता जाता है, इसको हमारे पशु खा लेते हैं है ना, नदियों में जमा हो जाता है, तो नदियां भी प्रदूषित हो जाती
1: हैं।
0: हाँ, और वो हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए कैसी रहेंगी बताएं?
1: हाँ, स्वास्थ्य के लिए तो वो तो क्या है, वो तो नुकसान ही है।
0: हाँ, उससे हमें समस्या होगी है ना,
1: समस्या होती है मैडम।
0: जी जी जी तो मैं तो यही चाहूंगी गोपाल ओझा जी कि प्लास्टिक का उपयोग हम ना ही करें तो ज्यादा अच्छा होगा, है ना
1: जी। सही बोला है आपने
0: जी, है ना। और अपने घर के छोटे बच्चे, युवा अवस्था वाले जो भी बच्चे हैं, उनको सबको समझाएं है ना
1: जी,
0: तभी ये बात जन जन तक पहुंचेगी है ना। आपने फोन किया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

0: जी नमस्ते, कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे में स्वागत है आपका।
1: मैडम जी नमस्कार, पवन कुमार सेन बोल रहा हूँ मैडम जी, छत्तीसगढ़ गंडई पंडरिया से।
0: जी पवन कुमार सेन जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम बात
1: बहुत
0: आपकी गीत हमारे में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी, धन्यवाद।
0: जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे मैडम जी, और आकाशवाणी का तो हम पुराने श्रोता हैं,
0: जी,
1: और
0: हाँ
1: रेडियो तो एनी टाइम चलते रहते हैं हमारे, रेडियो मोबाइल के द्वारा सुन लेते हैं मैडम जी आप लोगों के प्रसारण।
0: हाँ हमें बहुत अच्छा लगता है कि आप सुनते हैं हमारे कार्यक्रम, है
1: जी,
0: ना?
1: क्यों
0: तो
1: नहीं,
0: आज
1: कविता
0: हम
1: विशेष रूप से सुनता हूँ मैडम जी।
0: जी, बिल्कुल, आज हम आपसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे आपके विचार कि जैसे हम अपने जीवन में प्लास्टिक का उपयोग करते हैं, प्लास्टिक के पॉलिथीन बैग, है ना, पैकेट, और कई बार ऐसा भी होता है कि हम कहीं बाहर जाते हैं, है ना, किसी अच्छे पर्यटन स्थल पर, मार्केट में, और जाके उन्हें फेंक देते हैं। तो क्या ये चीज सही है?
1: बिल्कुल गलत है मैडम जी। अब क्या है, अब आजकल के आदमी को कौन समझाएगा, कैसे समझाएं यहाँ।
0: देखिए, हम तो ये कहेंगे कि सबसे पहले हमें अपने को ये जानना होगा कि प्लास्टिक हमारे लिए बहुत उपयोगी है या खतरनाक है, इस पर सोचना
1: बहुत
0: पड़ेगा।
1: खतरनाक है मैडम जी। अब क्या है, कई पशु पक्षी भी इसे खा लेते हैं, गाय लोग खाते हैं,
0: हाँ
1: और उसमें क्या है, कई प्रकार के बीमारी भी पैदा होते हैं मैडम जी। अब मैं तो कहता हूँ कि इस चीज
0: और हम ये चाहेंगे कि आप, हम सभी पॉलिथीन का उपयोग ना करें, प्लास्टिक बैग, है ना, इन सब का उपयोग ना करें, वो चीजें करें जो हमारे पर्यावरण के लिए अनुकूल हो, अच्छी हो, है ना।
1: बिल्कुल मैडम जी,
0: हाँ,
1: बिल्कुल
0: कपड़े के थैले, कागज, है ना, और स्टील की बोतल, इन सब का उपयोग करें, है ना।
1: जी। हम क्या है, हम लोग ना विशेष रूप से अब रेडियो में जो बताए जाते हैं बातें, उसको अपने जीवन में अमल जरूर करते हैं मैडम जी। हम जब भी सब्जी लेने जाते हैं तो बिल्कुल अपने घर से थैला लेके जाते हैं।

0: बहुत अच्छी बात, बिल्कुल। और मैं ये सोच रही हूँ कि बहुत सारे लोग इस बात को सुन भी रहे हैं, है ना?
1: जी जी
0: ये भी
1: बिल्कुल
0: अच्छी
1: मैडम,
0: बात है जी, बिल्कुल। और साथ साथ हम ये भी सिखाएं लोगों को, अपने घर के बच्चों को, छोटे बच्चों को, है ना?
1: जी,
0: हाँ
1: मैडम जी,
0: हाँ इस बारे में हमें जानकारी दें कि अधिक से अधिक उन चीजों का इस्तेमाल करें जो हमारे पर्यावरण के लिए अनुकूल हो। आपने
1: जी
0: फोन
1: मैडम
0: किया,
1: जी,
0: इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: नमस्कार।
1: नमस्कार मैडम जी, नमस्ते।
0: कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में स्वागत है आपका।
1: जी मैडम,
0: आपका नाम बताएं।
1: मैं सुमत कुमार जैन, पिंडरी जिला मंडला से रिटायर शिक्षक बोल रहा हूँ मैडम।
0: जी, तो आपका स्वागत है
1: सुमत
0: कार्यक्रम में।
1: जी,
0: और
1: सुमत
0: हाँ जी, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि जैसे आजकल देखिए पर्यावरण बहुत सारी चीजों से प्रभावित हो रहा है ना आजकल, है ना, बहुत सारी चीजें हम देख रहे हैं।

0: रहे हैं, कहीं बाढ़ अधिक आ रही है, कहीं भूकंप आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं हमारे जीवन में, है ना। और प्रदूषण भी बहुत अधिक बढ़ रहा है, ठीक है ना। और इसके लिए कहीं कहीं हम भी दोषी हैं, जैसे हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजों का उपयोग करते हैं, प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक बॉटल, पॉलिथीन, तो क्या इनका उपयोग करना अच्छा होता है, बताएं।
1: हमारे चारों तरफ फैली हुई समस्त वस्तुएं,
0: जी
1: जीव जंतु, पेड़ पौधे, जो भी चीजें हमारे चारों तरफ फैली, ये सब पर्यावरण ही है मैडम।
0: जी बिल्कुल
1: और
0: बिल्कुल
1: इसे सुरक्षित रखना प्रत्येक मनुष्य का
0: हाँ
1: संकल्प लेकर के काम करना चाहिए, इसे
0: हाँ
1: सुरक्षित रखने का।
0: जी बिल्कुल
1: रहा सवाल ये पेड़ पौधे जो कट रहे हैं,
0: जी
1: बड़े बड़े जो पहाड़ या जो सड़कें या जो खेल मैदान या कुछ भी बन रहे हैं, वो पहाड़ पेड़ पौधों को काट करके बनाए जा रहे हैं, इससे हमारा पर्यावरण असंतुलित हो रहा है मैडम।
0: जी और मैं ये कहना चाहूंगी कि इस पर्यावरण को संतुलित करने में हम सभी की भागीदारी होनी चाहिए, जन जन की
1: हमें
0: भागीदारी, है ना
1: मैडम एक कम करें, लेकिन क्या है
0: जी।
1: आप पॉलिथीन का उपयोग बहुत अधिक हो रहा है।

0: वो पहाड़ पेड़ पौधों को काट करके बनाए जा रहे, इससे हमारा पर्यावरण असंतुलित हो रहा है मैडम
1: जी। और मैं ये कहना चाहूंगी कि इस पर्यावरण को संतुलित करने में हम सभी की भागीदारी होनी चाहिए, जन जन की भागीदारी, है ना?
0: मैडम एक काम करें, लेकिन क्या है, आप पॉलिथीन का उपयोग बहुत अधिक हो रहा है, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है।
1: प्लास्टिक की बोतल हम खा पी कर प्लास्टिक के पैकेट फेंक देते हैं कहीं पर,
0: जहाँ रास्ते में फेंक देते हैं लोग
1: जी, जी बिल्कुल। हाँ
0: हाँ
1: और उसको देखिए हमारे पशु खा लेते हैं, है ना, नदियों में जमा हो जाते हैं, इससे कितनी अधिक गंदगी और बीमारियां फैल रही
0: हैं। जो सामान रख के ले जाते हैं उसे भी ऐसे ही कहीं भी फेंक देते हैं तो पशु खाते हैं, तो पशु भी मृत हो जाते हैं। तो ये हमारी कुछ सुरक्षा है, पेड़ पौधे लगाना, संकल्पित होकर के कोई अच्छे कार्य करना जिससे पर्यावरण सुरक्षित रहे।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारा ही दायित्व होगा,
0: पैदा जागरूक पैदा करना चाहिए।
1: हाँ ये हमारा ही दायित्व होगा, जन जन का दायित्व होगा कि
0: अच्छा
1: वो
0: विषय है आपका और बहुत बढ़िया आप विषय को उठाया है। जितने भी देश के अंदर रेडियो श्रोता है वो आपके इस कार्यक्रम को सुन रहे और देख रहे होंगे, तो निश्चित रूप में जनता को प्रभाव पड़ेगा और जागरूकता आएगी।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: पर्यावरण हमारा सबसे जीवन को सफल और सुरक्षित रखने का एक साधन है, जिसे हमें अब स्वयं को भी उपयोग करना पड़ेगा और स्वयं भी सुरक्षित रखने के लिए हमें पेड़ पौधे और
1: अधिक से अधिक लगाने पड़ेंगे,
0: पानी वगैरह इत्यादि का।
1: और उसके बिल्कुल बिल्कुल, और उसके पश्चात उसकी देखभाल भी जरूरी है कि पेड़ पौधे है ना बढ़ रहे हैं कि नहीं, उनमें खाद डालें, उनका ध्यान रखें, है ना?
0: जी,
1: तो आपने फोन किया, जी बिल्कुल आपने फोन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

0: जी नमस्कार।
1: नमस्कार मैडम, आकाशवाणी भोपाल से।
0: आपका नाम बताएं।
1: नाम सोनकंत, ग्राम पटेरी, जिला दमोह से बोल रहे हैं। दमोह
0: जी, तो आपका फोन लगा है कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे में आपका फोन लगा है, है ना?
1: जी मैडम।
0: तो हम आपसे कुछ बात करना चाहेंगे। कहाँ आप, कौन से गांव, मतलब कहाँ रहते हैं आप? दमोह में रहते हैं ना?
1: ग्राम पटेरिया, जिला दमोह।
0: हाँ जी, तो आपने अपने आसपास देखा होगा कई बार लोग प्लास्टिक के बैग, पॉलिथीन, है ना, बॉटल का उपयोग करते हैं, प्लास्टिक की बॉटल का उन्हें फेंक देते हैं। तो क्या ऐसा करना आपको सही लगता है?
1: नहीं मैडम, ये तो गलत है। ये प्लास्टिक के सामान है जो यहाँ वहाँ नहीं फेंक रहे, उनको इकट्ठा करके जला देना चाहिए।
0: हाँ, लेकिन आप ये भी ध्यान रखिए कि प्लास्टिक की चीजें को हम जलाते हैं तो उससे धुआं भी निकलता है, वो धुआं भी खतरनाक होता है ना?
1: हाँ मैडम।
0: हाँ, तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि प्लास्टिक की बजाय हम कपड़े की थैली, जूट के थैले, है ना, स्टील की बॉटल, ज्यादा से ज्यादा इनका उपयोग करें, है ना?
1: इनका उपयोग ज्यादा से ज्यादा करें, और जो प्लास्टिक की वस्तुएं हैं इनका उपयोग कम करें,
0: है ना? प्रकृति, जी बिल्कुल बिल्कुल, प्रकृति से जो जुड़ी चीजें हैं, है ना, जो पुराने समय में हम उपयोग करते थे, तो क्यों ना उन्हीं चीजों को हम फिर से उपयोग करें जो भूल गए थे शायद हम।
1: हाँ मैडम, अभी जो पहले जमाने में उपयोग करते थे उन्हीं को उपयोग करें तो बेहतर रहेगा, प्रदूषण नहीं होगा,
0: बिल्कुल
1: स्वस्थ रहेंगे,
0: बिल्कुल
1: वातावरण में शुद्ध हवा मिलेगी,
0: हाँ
1: स्वस्थ ठीक रहेगा,
0: बिल्कुल बिल्कुल, है ना? हम यही आपसे जानना चाह रहे थे, और इसमें हम सबके भागीदारी होगी तभी हमारा पर्यावरण जी सुरक्षित रहेगा, है ना? बिल्कुल। तो आपने फोन किया, इसके लिए आपका बहुत

0: जी नमस्कार। हाँ जी,
1: नमस्कार दीदी।
0: आपका नाम बताएं।
1: सनी शर्मा,
0: जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप, आपकी जगह का नाम बताइए।
1: गंजवास होता राजेंद्र नगर।
0: अच्छा जी, तो कार्यक्रम में स्वागत है आपका। और आज आपने फोन किया है कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे में, और हम
1: हाँ
0: कुछ
1: दीदी,
0: बातें आपसे करना चाहेंगे, आपके विचार भी जानना चाहेंगे कि आजकल पर्यावरण में बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं, प्रदूषित हो रहा है पर्यावरण, तो इसके लिए
1: यार
0: क्या
1: सब मैम जी
0: हम दोषी हैं कहीं ना कहीं,
1: जी जी
0: कैसे बताएं,
1: हाँ हम दोषी हैं क्योंकि हम प्रदूषण फैलाते हैं।
0: है ना। बहुत सारी चीजें हम ऐसे भी उपयोग करते हैं जैसे कि प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक के बॉटल, इसके अलावा हम अपनी जो बहुत सारी गाड़ियां भी आजकल चल रही हैं, और
1: हाँ कचरे की गाड़ी में कचरा
0: बिल्कुल
1: डाल
0: बिल्कुल,
1: देते
0: और
1: हैं।
0: दूसरी बात यह है कि जैसे कि एक कार है या एक बाइक है, उसमें हम एक ही व्यक्ति जा रहे हैं, हो सकता दो भी जा सके, है ना। कार में तीन लोग
1: हाँ
0: चार लोग भी
1: दीदी,
0: जाके जा सकते हैं अपने निश्चित स्थान पर,
1: हाँ
0: तो इससे क्या होगा कि पेट्रोल की बचत भी होगी और साथ ही साथ जो धुआं हो रहा है, प्रदूषण है, वो भी कम होगा। क्या सोचते हैं आप,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: कुछ ऐसी
1: हाँ
0: चीजें
1: दीदी तुमने
0: हमें
1: सही
0: अपनानी पड़ेंगी कि हम अपनी बिजली, अपनी ऊर्जा
1: कहा। हाँ दीदी
0: की बचत करें।
1: जी हाँ,
0: और क्या कर सकते हैं हम बताएं, आप पर्यावरण को अच्छा बनाने के लिए, संरक्षित करने के लिए और क्या कर सकते हैं अपनी तरफ से उपाय।
1: हम कचरे की गाड़ी में कचरा डाले, प्रदूषण ना फैलाएं धुएं वाली गाड़ी में।
0: और दूसरी
1: हाँ
0: बात हम ये चाहेंगे कि हम अपने आसपास हरियाली और स्वच्छता भी रखें।
1: जी बिल्कुल दीदी बिल्कुल,
0: तो देखिए आपने फोन किया, हमारे साथ विचार साझा किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

0: ये था कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे, जिसमें आज हमने अपने सभी श्रोता साथियों से जाने कि पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए हमें कौन कौन सी चीजें अपनानी चाहिए। आपके विचार जानके हमें बहुत अच्छा लगा। तो दीजिए मुझे इजाजत, अपनी रेडियो मित्र श्वेता को नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे। आज के कार्यक्रम की प्रस्तुति थी श्वेता तिजोरिया की। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो देशों के दौरे के तीसरे चरण में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एवियन पहुंचेंगे, जिसके बाद श्री मोदी शिखर सम्मेलन के कार्यकारी सत्र में भाग लेंगे, जिसका विषय है नई साझेदारी बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का पुनर्निर्माण करना। 21 जून को होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा को लेकर केंद्रीय गृह सचिव ने विद्यार्थियों की सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता के लिए राज्य सरकारों की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश भी राज्य सरकारों को दिए। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कल राज्य में साइबर सिक्योरिटी रिसर्च सेंटर खोलने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि ये रिसर्च सेंटर महू स्थित मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से स्थापित किया जाएगा। प्रदेश के समस्त शासकीय विद्यालयों एवं सांदीपनी विद्यालयों में आज से 30 जून तक स्कूल चले हम अभियान के द्वितीय चरण के अंतर्गत शाला प्रारंभ उत्सव आयोजित किया जाएगा, जिसके तहत प्री प्राइमरी से 8वीं तक के समस्त स्कूलों में बाल सभा के आयोजन के साथ ही पहले दिन विशेष भोज का आयोजन होगा। छत्तीसगढ़ में आयोजित 36वीं राष्ट्रीय जूनियर व सब जूनियर कैनो स्प्रिंट चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। चैंपियनशिप में 25 स्वर्ण, 11 रजत और 3 कांस्य पदकों के साथ कुल 39 पदक प्रदेश के खिलाड़ियों ने अर्जित किए और प्रदेश में इस हफ्ते मानसून दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग ने आज के लिए भोपाल, ग्वालियर समेत करीब 30 जिलों में गरज चमक के साथ आंधी और बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। सभी सुनने वालों को साधना जैन का नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों? पहला गीत हमने आपके लिए लिया है, फिल्म है एक दूजे के लिए, लता मंगेशकर के साथ SP बालासुब्रमण्यम की आवाज है, गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। और इस सब गीत को पसंद किया है हमारे इन सभी श्रोताओं ने, चिट्ठियां भेजी हैं। बीना जिला सागर से विमल कठरिया, राजमती कठरिया, सलिल सुनीता कठरिया, संजय रत्ना कठरिया, ग्वालियर से स्नेहलता हरिश्चंद, छिंदवाड़ा से अशोक जैन, शोभा जैन, जुमेराती भोपाल से संजय संध्या जैन और सुनील जैन गौतम नगर से। तो आप सभी की पसंद पर हम भेज रहे हैं ये गीत।

आप सुन रहे हैं आपकी फरमाइश आकाशवाणी मध्य प्रदेश से और मैं हूं आपके साथ साधना जैन। अगला गीत चौदहवीं का चांद इस फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज है, गीत लिखा है शकील बदायूनी ने, संगीत है रवि का। और इस गीत को बड़ी दूर से हमें चिट्ठियां भेजी हैं अमेरिका के बॉस्टन से डॉक्टर विजय प्रकाश जैन, उनकी मित्रा बिंदु जैन, आपके परिवार से प्रियांक, पुनीता, अंकुर, आर्जव, अनिरुद्ध, जो भारत में अपने भाई और रिश्तेदारों को सुनाना चाहते हैं डॉक्टर विजय प्रकाश जी की ओर से, नागपुर से डॉक्टर विजय जैन, लता व किशोर मोहरिल, हेमंत देश पांडे, मोहन और रमेश बल्लाल को सुनाना चाहते हैं।

हैं तो लीजिए डॉक्टर विजय प्रकाश जी अमेरिका में सुनिएगा और नागपुर में अपने दोस्तों को सुनवाइए 14वीं का चांद इस फिल्म का ये गीत।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आपकी फरमाइश साधना के साथ। अगला गीत ड्रीम गर्ल फिल्म से लता मंगेशकर और साथियों की आवाज है। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का। और इस गीत को पसंद करना चाहा है दिल्ली से बुलबुल आदि आर्यवीर, सपना और परिवार के सदस्य। दिल्ली से ही पंडित अशोक शास्त्री, सोनागिर से शशि श्रेयांस, पप्पू जैन, खंडवा से बबली जैन ने इस गीत को सुनना चाहा। आप सभी की पसंद पर ड्रीम गर्ल फिल्म का ये गीत है।

आप सुन रहे हैं आपकी फरमाइश आकाशवाणी मध्य प्रदेश से, मैं हूं साधना। सरस्वती चंद्र का वो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, मुकेश की आवाज में। गीत लिखा है इंदिवर ने, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का। और इस गीत को पसंद किया है दिल्ली से डॉक्टर विजय प्रकाश जैन, इंदौर से साइकिल वाले परिवार में चंदा जैन, सुशीला जैन, अरविंद उषा सिंघई, महेंद्र सिंघई, जितेंद्र भारती सिंघई और राजेश जैन, रजनीश जैन, रत्नेश जैन, निशांत, आशीष जैन, अंकेश जैन, मोहित, जानू जैन। और इसी गीत को सुनना चाहा है इंदौर से ही बिंजल, सुरभि, सिद्धि, सुनीता, रचना प्रीति, रेशु और सारिका ने। इसी गीत को सुनना चाहा है शशि जैन ने पालीताना से। तो आप सभी की पसंद पर भेज रहे हैं सरस्वती चंद्र का ये गीत है।

और लीजिए अब आपको सुनवा रहे हैं तीसरी कसम फिल्म में मुकेश को। हसरत जयपुरी ने संगीत लिखा है और शंकर जयकिशन ने हसरत जयपुरी ने इसका गीत लिखा है और संगीत से सवारा है शंकर जयकिशन ने। और आप सभी ने इस गीत को पसंद किया है। दिल्ली से बिंदु, छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेन्द्र कुमार वर्मा, महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर ने इस गीत को पसंद किया है। साथ ही रियांश ठाकुर भी हैं। तो आप सभी सुनिएगा अपनी पसंद का ये गीत।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आपकी फरमाइश और आपकी फरमाइश का अंतिम गीत उपकार फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज है। गीत लिखा है गुलशन बाबरा ने, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का, और इस गीत को पसंद किया है जबलपुर से पातली वाले रुचिर शिखा ओमी और कामनी जैन ने। इसी गीत को पसंद किया है नवीन निश्चल अक्षत साहिल मनु जैन नेहा जैन सौम्या जैन जूही श्रुति जैनिशा जैन बीना से। तो आप सभी की पसंद पर भेज रहे हैं हम उपकार फिल्म का अंतिम गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे आपकी फरमाइशों में थी आपके साथ साधना जैन। इसी गीत के साथ संपन्न होती है आज के फरमाइश की ये यात्रा। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। अगला प्रसारण अंतराल के बाद।
1: बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: मुंबई मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। दोपहर के 12:30 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से। इसमें सुनिएगा जंग लगी तलवार का भाग 11।
1: सुप्रसिद्ध लेखिका और उपन्यासकार इंदिरा गोस्वामी का असमिया साहित्य में विशेष स्थान है। प्रस्तुत है इंदिरा गोस्वामी द्वारा लिखित और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित असमिया उपन्यास ममारे धारू तलोवाल पर आधारित धारावाहिक जंग लगी तलवार। इस धारावाहिक के प्रस्तुतकर्ता और निर्देशक हैं रेडियम वीडियोमैटिक्स दिल्ली के वेद शर्मा। रेडियो रूपांतर किया है राजीव और सुधांशु ने। अब तक आपने सुना, नारायणी के पकड़े जाने पर सभी लोग हकीकत जानने के लिए ठाकुर साहब के घर का दरवाजा खटखटाते हैं। ठाकुर उन्हें बताता है कि भूख की मारी नारायणी इतनी रात गए उनसे पैसे मांगने आई थी।

यशवंत नारायणी की ओर से बलबीर स्वामी से माफी मांगता है और नारायणी को घर छोड़ने जाता है। कंपनी अपना घाटा पूरा करने के लिए अपनी शर्तों पर बाहर से नए मजदूरों को बुलाती है। शांत पड़ी मशीनों का शोर फिर से शुरू हो जाता है। ये देखकर हड़ताली मजदूरों के सीने पर सांप लौटने लगता है। यूनियन के नेता शास्त्री जी से मिलने जाते हैं। शास्त्री से उन्हें पता चलता है कि लेबर इंस्पेक्टर मुंशीगंज के किसानों को मजदूरों को अनाज न देने के लिए भड़का रहा है। फंड का इंतजाम करने के लिए शास्त्री कंपनी के सीमेंट के ट्रक को लूटने की सलाह देता है। उधर कंपनी के दफ्तर के नोटिस बोर्ड पर नया नोटिस लगाया जाता है, जिसमें हड़ताल को अवैध करार देते हुए उच्चतम न्यायालय द्वारा इस बात को मान्यता देने का उल्लेख होता है। नारायणी अपने मुन्ना के साथ तरबूज को खाकर अपनी भूख मिटाना चाहती है, जिसे उसने कटीली झाड़ियों के नीचे छिपा दिया था। साई नदी के तट पर पहुंचने पर नारायणी को बसुमती मिलती है, जो कि तरबूज खा चुकी होती है। बसुमती नारायणी को बताती है कि ठाकुर साहब नपुंसक हैं और उसे उसके चरित्र पर कोई संदेह नहीं है। ये सुनकर नारायणी खुश होती है। अब

0: हुआ है। अगर ये भड़क गए तो कोई आपको कौड़ियों के भाव भी नहीं पूछेगा।
1: बलबीर, तो फिर हमें क्या करना चाहिए?
0: अरे कोई ऐसा रास्ता निकालिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे।
1: ठीक है ठीक है, मैं कल ही कंपनी के अधिकारियों से मिलता हूँ। हड़ताली मजदूरों का गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा और मेरा राजनीतिक अस्तित्व भी बचा रहेगा। भाई अगली बार विधानसभा का चुनाव जो लड़ना है मुझे, 4000 वोट बहुत मायने रखते हैं बलबीर, बहुत मायने। देखिए ठाकुर साहब, आपकी कंपनी ने अभी अगस्त महीने में ही दिहाड़ी मजदूरों को बर्खास्त करने का नोटिस दिया था, और अब फिर? अरे भाई ये कहां का न्याय है? कुछ तो मजदूरों के हित की सोचिए।
2: देखिए शास्त्री जी, मजदूरों को तभी बर्खास्त किया जाता है जब कंपनी के पास उनके लिए कोई काम नहीं होता, और फिर हड़ताल का इसलिए भी कानूनी तौर पर समर्थन नहीं किया जा सकता क्योंकि सन 75 में हुए समझौते पत्र के अनुसार हड़ताल जायज नहीं है।
1: क्या इस समझौता पत्र पर मजदूर यूनियन की सहमति भी शामिल है ठाकुर साहब?
2: देखिए पिछले दिनों यूनियन और अधिकारियों के बीच एक बैठक हुई थी।
1: ठीक,
2: इस बैठक में प्रोजेक्ट और मजदूरों की छटाई के मुद्दे पर भी बातचीत हुई थी। लेकिन इस बैठक के उद्देश्य लिखित रूप से तैयार करने और हस्ताक्षर करने तक यूनियन के नेता बहाना बनाकर चले गए थे।
1: क्या
2: बाद में हमें खुद सब कुछ तैयार करके अधिकारियों के पास भेजना पड़ा? अब आप देख ही रहे ना कि यूनियन हमें किस तरह निशाना बना रही है।
1: अब हमें क्या पता ठाकुर साहब कि यूनियन कंपनी को किस तरह निशाना बना रही है, आप बताइए।
2: यूनियन हमारी इसी चिट्ठी को निशाना बनाकर भोले भाले मजदूरों को गलत रास्ते पर ले जा रही है। हमेशा अधिकारियों के साथ कुछ बेबुनियाद विषय को लेकर बहस और झगड़ा करती रहती।
1: देखिए देखिए ठाकुर साहब, आप और आपकी कंपनी मजदूर यूनियन पर बेबुनियाद आरोप लगा रही है। अरे आपकी कंपनी मजदूर हितों की भक्षक है जबकि यूनियन रक्षक है। कंपनी हितों को साधने और मजदूरों को शोषण करने बाबत ही आप ऐसा कर रहे हैं, सब जानते हैं।
2: नहीं नहीं शास्त्री जी, हमारे पास अपनी बात के पक्ष में पर्याप्त तर्क हैं।
1: कैसे तर्क?
2: मिसाल के तौर पर मासिक वेतन पाने वाले मजदूरों और रोज की मजदूरी करने वालों की सुरक्षा की मांग की गई है, जबकि सन 75 के समझौते पत्र के अनुसार कंपनी के पास काम न हो तो मासिक वेतन पाने वालों को लंबी छुट्टी पर भेज दिया जाता है और दिहाड़ी मजदूरों को बर्खास्त कर दिया जाता है।
1: इसका मतलब ठाकुर साहब कि कंपनी ये मानती है कि इस समझौता पत्र को नकार कर यूनियन ने कोई गैर कानूनी काम किया है।
2: जी हाँ, इसके अलावा बुजुर्गों का ज्यादा ध्यान रखे जाने की मांग भी बिल्कुल निरर्थक है।
1: अच्छा जी, वो किस मायने में?
2: सन 47 के औद्योगिक विवाद अधिनियम के अनुसार यूनियन के साथ समझौता न होने पर बुजुर्गों को भी निकाला जा सकता है। इस बारे में कंपनी के पास सन 75 में बनाया गया कानूनी रजिस्टर्ड एग्रीमेंट भी है।
1: तो आप मुझे कानूनी एग्रीमेंट का डर दिखा रहे हैं ठाकुर साहब? मैं भी लीगल फाइट करवा सकता हूँ, लीगल फाइट। अरे आपने यूनियन को समझ क्या रखा है?
2: कैश में ना आइए शास्त्री जी, सन 75 के ही राजीनामे के अनुसार कंपनी के लिए महत्वपूर्ण काम करने वाले मजदूरों को तुरंत नए विभाग में काम मिल सकता है, लेकिन उनका वेतन और अन्य सुविधाएं स्थानीय परिस्थितियों पर ही निर्भर रहेंगी। कंपनी इससे अधिक कुछ नहीं कर सकती।
1: क्या कहा आपने? क्या कहा? कंपनी इससे अधिक कुछ नहीं कर सकती?
2: जी हाँ,
1: जिला और केंद्र ने जो कानून बनाए हैं क्या उन कानूनों का कंपनी पालन करती है? कंपनी को दिहाड़ी मजदूरों और मासिक वेतन पाने वाले मजदूरों की कोई चिंता है या नहीं?
2: आप तो खामखा भड़क रहे हैं शास्त्री जी।
1: अरे मैं भड़कू नहीं तो और क्या करूं? हाथ पर हाथ धरे तुम्हारी सारी जायज नाजायज बातों को मानता रहूं।
2: देखिए शास्त्री जी, माना कि आप राय बरेली के लोकल लीडर हैं, आपका मान सम्मान और दबदबा है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि आप गलत को भी सही ठहराने की कोशिश करें।
1: ऐसा मैंने क्या कह दिया?
2: अभी तक तो नहीं किया पर कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कंपनी बर्खास्त मजदूरों को जिला और केंद्र के कानून के अनुसार पैसा देती रहती है। नियम अनुसार उन्हें दूसरी जगह काम पर भेजते समय रेल और बस का किराया भी मिलता है। हमारा पूरा प्रयास रहता है कि बर्खास्त मजदूरों को जल्दी से जल्दी दूसरी जगह काम पर भेजा जाए।
1: वाह वाह वाह वाह, क्या बात कही है ठाकुर साहब, क्या सबूत है आपके पास ठाकुर साहब?
2: अच्छा अच्छा, आप सबूत की बात करते हैं
1: जी,
2: तो ठीक है सुनिए। पुराने दिहाड़ी मजदूरों को माधोपुर कंपनी का काम खत्म होने के बाद बर्खास्त किया गया था
1: जी,
2: लेकिन वो मजदूर अब अलग अलग विभागों में काम कर रहे हैं।

0: लोगों को काम छूटने पर वेतन के अलावा 300 रुपए अलग से दिया जाएगा।
1: बड़ा एहसान करेंगे यहाँ, बड़ा एहसान करेंगे ठाकुर साहब। सारी जिंदगी आधी पगार देकर काम लेने वाली कंपनी 300 रुपल्ली पकड़ाकर मजदूरों का भला करने चली है। वाह,
0: देखिए शास्त्री जी, कंपनी दूसरी कंपनियों की अपेक्षा मजदूरों को सबसे अधिक वेतन देती है, फिर दूसरी कंपनियों में भी तो मजदूरों को बर्खास्त किया जाता है। कंपनी हमेशा बर्खास्त मजदूरों को नए विभाग में बहाल करती आई है।
1: ठाकुर साहब, क्या आप बता सकते हैं कि बर्खास्त कितने मजदूर होते हैं और बहाल कितने होते हैं? ब्यौरा तो होगा आपके पास।
0: देखिए, ये कंपनी का निजी मामला है, बाहरी लोगों के सामने इन बातों का खुलासा नहीं किया जा सकता।
1: अरे क्या करेंगे खुलासा, क्या खुलासा करेंगे आप? मुझसे सुनिए आप, बर्खास्त होते हैं 1000 मजदूर तो बहाल होते हैं सिर्फ 100-200 मजदूर, और वो भी सिर्फ कंपनी के चहेते। क्यों, ठीक कह रहा हूं मैं?
0: देखिए, मैं आपसे अधिक बहस नहीं करना चाहता। आपकी जानकारी के लिए सिर्फ इतना बता देना चाहता हूं कि कंपनी ने पुराने मजदूरों के प्रति हमेशा सहानुभूति दिखाई है। जिन मजदूरों ने 20 साल से अधिक कंपनी के लिए काम किया है, उन्हें स्वैच्छिक अवकाश की सुविधा दी गई है। ऐसे मजदूरों को ग्रेच्युटी स्कीम की सुविधा भी दी जाती है।
1: चलिए ठाकुर साहब, हम आपकी ये बात भी मान लेते हैं, लेकिन ये तो बताइए कि यूनियन की डीए बंटवाने की मांग पर आपका क्या नजरिया है?
0: हाँ ठीक है, यूनियन की इस मांग से कंपनी किसी हद तक इत्तेफाक रखती है, लेकिन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 3 महीने के बाद ही मिल पाएगा, तभी इस पर अमल हो सकता है। इसीलिए यूनियन की ये मांग निरर्थक।
1: और बोनस, बोनस मजदूरों को कब दिया जाएगा, ये बता सकते हैं?
0: देखिए, कंपनी ने मजदूरों को पहले ही बता दिया है कि सन 76-77 का बोनस सन 78 के मार्च महीने के बाद ही दिया जाएगा, क्योंकि तभी इसके नफा नुकसान का हिसाब तैयार किया जाएगा।
1: वाह ठाकुर साहब, बहाना बनाकर टालने में बहुत पारंगत हो गए हैं आप, लेकिन मेरा नाम भी शास्त्री है ठाकुर साहब, शास्त्री। अब आप ग्रेच्युटी की मांग को भी किसी बहाने से खारिज कर देंगे, क्यों?
0: देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि 20 साल से कंपनी की सेवा करने वाले खास मजदूरों को ही यह सुविधा दी जाती है।
1: मैं कंपनी के खास मजदूरों, नहीं, मजदूरों नहीं, खास चमचों या 20 साल पुराने मजदूरों की बात नहीं कर रहा हूं ठाकुर साहब, मैं बाकी के उन मजदूरों की बात कर रहा हूं जिन पर कंपनी की टेढ़ी नजर है।
0: देखिए, आप सरकारी कर्मचारियों के लिए बने ग्रेच्युटी एक्ट की बात कर रहे हैं, ये एक्ट कंपनियों पर लागू नहीं होता।
1: हाँ ठाकुर साहब, हमने तो सोचा था कि हम बातचीत के जरिए किसी सार्थक निर्णय पर पहुंच सकेंगे, लेकिन ठाकुर साहब, आपकी लफाजी की वजह से बात बन नहीं सकी। चलते चलते आपको एक बात बता दूं ठाकुर साहब,
0: क्या?
1: भले ही मजदूरों को शहीद होना पड़े, भले ही साई नदी में पानी की जगह रक्त का उफान बहे, लेकिन हड़ताल जारी रहेगी ठाकुर साहब, याद रखिएगा, हड़ताल जारी रहेगी।
0: क्या?

0: ए बाबू, ए बाबू, कुछ खाने को देना, बहुत भूख लगी है।
1: अरे,
0: कुछ खाने को।
1: कौन है तू? कहाँ से आई है?
0: मैं दलितों की बैरक में रहती हूँ बाबू, कुछ खाने को देना, पिछले एक हफ्ते से कुछ नहीं खाया है।
1: अच्छा, तो तू यूनियन के साथ है?
0: बातें ना बना बाबू, रोटी का कोई टुकड़ा है तो देना, भूख लगी है।
1: अरे अरे अरे, तू जवान है, खूबसूरत है, अरे तू भूखी क्यों मरती है? अरे मुझसे कहना, मैं तुझे यहाँ से दूर ले चलूंगा। हाँ सच में, मेरे साथ रहेगी तो फिर कभी भूखी नहीं रहेगी।
0: सच सच बाबू, तू मुझे रोज खाना खिलाएगा?
1: हाँ, मैं सच कहता हूँ, खाना भी खिलाऊंगा और पहनने के लिए नए कपड़े भी दूंगा।
0: सच बाबू, तू कितना अच्छा है। मेरा बाबू और दादी ना तो मुझे खाने को देते हैं, नहीं नए कपड़े दिलवाते हैं।
1: ओह, तभी तो तेरा चेहरा कुमला गया है। देख तो, इस जवानी में तेरा

0: कैसा काला हो गया है। अच्छा अच्छा ये ये ये ले 5 रुपए। अरे रख लेना, कहीं से कुछ खरीद कर खा ले।
1: बाबू बाबू तेरा ही एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी।
0: अरे अरे सुन सुन, अपना नाम तो बता दे।
1: मेरा नाम पार्वती है बाबू।
0: हाँ तो पार्वती, कल शाम को स्टेशन पे मिलियो। हाँ मैं तेरा इंतजार करूंगा, आइएगा।
1: अच्छा आऊंगी बाबू, आऊंगी।

0: नारायणी।
1: आओ काकी।
0: हाँ भगवान तेरा भला करे नारायणी, जो तू हमको मिल गई। अच्छा पहले ये बता कि तेरा मर्द कैसा है?
1: कैसे होंगे काकी, मौत की राह देख रहे हैं।
0: चुप करनी गोड़ी, है क्या अनाप शनाप बक रही है?
1: तुम बताओ काकी, तुम मुझे क्यों ढूंढ रही थी?
0: अरे हाँ, तुझे एक बात बतानी थी।
1: कौन सी बात?
0: होशियार रहे नारायणी, होशियार। तुझे नहीं मालूम कैसे भयानक दिनों का सामना करना पड़ सकता है?
1: भयानक दिन? मैं कुछ समझी नहीं काकी।
0: अरे हम मुंशीगंज में काम के लिए गए थे, हम बीमार लोगों के कपड़े धो सकते हैं, यहाँ तक कि 5 महीने का गर्भ।
1: राम राम राम राम राम। क्या हुआ काकी, क्या कहीं काम नहीं मिला?
0: अरे वो काम की क्या कहूँ, बस पीने का पानी मांगा तो गाली दे दी, कुत्ते पीछे छोड़ दिए।
1: देख नारायणी, तेरी गोद में एक नन्हा बच्चा है, जब छठवीं होगी तो जेठ महीने की लू में तू राय बरेली की सड़क पर बच्चे को लेकर कहाँ कहाँ फिरेगी, और फिर तेरा वो बीमार मर्द, उसको भी घसीटना पड़ेगा, तो क्या करेगी तू?
0: अरे हम तो जानते थे एक भी पैसा न बचा होगा।
1: तू नहीं जानती नारायणी, वो दोनों शैतान झूठी गवाही देने के लिए बदनाम हो चुके हैं।
0: हाँ। अच्छा चल छोड़ उन दोनों को, अपने मतलब की बात सुन।
1: हाँ सुन ही तो रही हूँ तुम्हारी बात।
0: सुनने में आया है कि रायबरेली शहर में कोई लाडी कारपेट और कास आयरन कंपनी है, कंपनी वाले जगदीशपुर में कैंप बना कर रहेंगे। अरे तुझे वहाँ सफाई का काम मिल जाएगा।
1: अच्छा तुम्हें कैसे पता काकी?
0: यूनियन का एक आदमी मिला था हमको, वो कह रहा था कि पक्का मकान बनने तक अफसर लोग तंबू में ही रहेंगे।
1: लेकिन काकी कोई हमें काम क्यों देगा, हमें तो कोई जानता तक नहीं है।
0: अरे भगवान से दुआ कर सब ठीक हो जाएगा।

0: अरे अरे उधर देख मदन भैया, उधर देख, एक रोटी के लिए चार कुत्ते आपस में किस तरह लड़ रहे हैं।
1: रोटी? रोटी ही था वो। बालू भैया क्यों ना मैं कुत्तों से रोटी छीन लूं।
0: अब मरना है क्या? देखा नहीं कितने खतरनाक कुत्ते हैं, काट लिया तो पेट में ये बड़ी बड़ी सुइयां लगानी पड़ेगी।
1: सुइयां तो तब लगेगी ना जब जब मैं जिंदा रहूंगा, भूख से तो वैसे ही एक दो दिन में मर जाऊंगा बाबू भैया।
0: मदन
1: आत्मा तो मैं पहले हो रहा हूँ, कब कष्ट खाकर गिर पड़ूं पता नहीं।
0: ना बाबा ना, मेरे बस की बात नहीं है, मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता है।
1: तो ठीक है ठीक है, तुम यही खड़े रहो। हाँ मैं कुत्ते के मुंह से रोटी छीन कर लाता
0: भूखे कुत्तों के मुंह से बोला आज तक कोई रोटी छीन सका?
1: कुत्ते ही तो है ना, शेर तो नहीं। फिर भूखा इंसान तो शेर के मुंह का शिकार छीन लाता है। मैं तो चलता हूँ।
0: अरे सुन तो मदन,

0: लगता है कुत्ते ने उसे जान से मार डाला। अरे ये कुत्ते तो भाग गए रोटी भी नहीं है। इसको जाकर देखता हूँ। मदन, अरे हाँ मदन, मदन, ये हिलजुल क्यों नहीं रहा? मदन, मदन, हाँ मदन, अरे अरे इसकी तो सांस ही बंद हो गई है। मार डाला, अरे अरे मार डाला, मार डाला, अब तेरे मार डाला, अरे तेरे मार डाला।
1: बाबू, अरे कहाँ भागा जा रहा है बाबू? अरे बाबू रुक तो, अरे बता के जा कि किसने किसको मार डाला।
0: कुत्तों ने, मदन को मार डाला। अरे कुत्तों से रोटी छीनने वाले मदन को कुत्तों ने मार डाला।
1: कुत्तों के मुंह से रोटी।

घर वाली घटना घटी है, तब से यशवंत बाबू मुझसे मिलने नहीं आए। पहले तो इनका हाल चाल पूछने आ जाया करते थे,

0: मैं उनकी नजर में गिर गई हूँ। उन्हें मेरे चरित्रहीन होने का विश्वास हो गया है। हो भी क्यों ना, परिस्थितियां ऐसी थी। उस पर मेरी चुप्पी भी कांटा बनकर उनके सीने में कर रही होगी। वैसे भी यशवंत बाबू सज्जन आदमी है, हमेशा मेरी मदद की। पर हमेशा मेरी मदद क्यों की? लिच्छू, शंभू या बसुमती काकी की क्यों नहीं की? कहीं वो मुझे जाने तो नहीं लगे हैं? मुझे क्या हो रहा है? नहीं, एक सुहागन को पर पुरुष के विषय में सोचने का कोई अधिकार नहीं है।
1: नारायणी, हरिओम नारायणी।
0: कौन तुम?
1: हाँ, मैं कालू राम, यूनियन का सचिव।
0: तुम मेरे पास क्यों आए हो?
1: अरे, मुझसे तुम्हारी दुर्दशा देखी नहीं जाती। ये दूध मुहा बच्चा, बीमार पति और उस पर तेरी गरीबी, हाय हाय हाय। हरि नारायणी, मैं तो तेरी मदद करना चाहता हूँ।
0: मदद? कैसी मदद कालू राम?
1: अरे, क्या बसुमती ने नहीं बताया? लूडी कारपेट कंपनी के अफसर मुंशीगंज में ही रहेंगे। हाँ, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस के माध्यम से सफाई वालों की नियुक्ति होने में तो भी बहुत समय लगेगा। हाँ, अगर तब तक तुम चाहो।
0: बसुमती काकी ने मुझे बताया तो था।
1: नारायणी, आजकल तू ठाकुर साहब के यहाँ कपड़े धोने नहीं जा रही है? क्यों नहीं जा रही?

0: Desse rir.
1: Desse rir.
2: सुन नारायणी, ठाकुर साहब आजकल बीमार है, कुछ दिन के लिए कारपेट कंपनी के तंबू में आकर रहेंगे।
1: हाँ, अगर तू चाहे तो उसकी सेवा में आ सकती है। हाँ हाँ, समझ रही है ना तू?
0: ठाकुर साहब कारपेट कंपनी वालों के तंबू में क्यों रहेंगे वो?
1: अरे नारायणी, तू नहीं जानती, कारपेट कंपनी के साहब के साथ ठाकुर साहब की दोस्ती है। बहुत ही गहरी दोस्ती। इलाज करवाने के लिए ठाकुर साहब ने वहाँ रहने का मन बनाया है। अगर तू चाहे तो दो दिन बाद चुपचाप पुरानी सड़क से आकर अपना काम शुरू कर दे।
0: हाँ हाँ, लेकिन वो यूनियन के आदमियों ने देखा और मारपीट की तो?
1: अरे नहीं नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं, कोई डर नहीं। हाँ हाँ,
2: वो क्या है, कारपेट कंपनी के दरवाजे पर दो बंदूकधारियों का पहरा रुक गया।
1: बोल क्या कहती है? अरे बोल ना नारायणी,
2: बता मैं ठाकुर साहब को क्या जवाब दूँ?
1: बोल बोल बोल बोल।
0: कालूराम, पहले तो मुझे ये बताओ कि यूनियन के सचिव होकर तुम ठाकुर साहब का साथ क्यों दे रहे हो?
1: अरे नारायण, छोड़ इस बात को, ये अंदर की बात है। हाँ,
2: अंदर की बात, तू अपनी बात बता।
1: ठाकुर साहब ने विशेष रूप से मुझे तुम्हारे पास भेजा है।
0: मुझे सोचने के लिए समय चाहिए।
1: समय चाहिए? ठीक है, तो मैं दो दिन बाद फिर आऊंगा।
0: नहीं नहीं, तुम मत आना, मैं खुद आऊंगी।
1: खुद आएगी?
0: हाँ
1: ठीक है, तो ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है?
0: हाँ ठीक है।
1: अच्छा,
3: हमारा झंडा करे पुकार, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, मैनेजमेंट की धोखेबाजी, मैनेजमेंट की धोखेबाजी।
4: अरे तू यहाँ घुटनों में मुँह छिपाई क्यों बैठा? अब चल, जुलूस में हमारे साथ चल।
5: नहीं जाना मुझे जुलूस में, नहीं शामिल होना इस हड़ताल में। मुझे छोड़ दो।
4: तू रो रहा है भिगू? अरे क्या हुआ तुझे? देख भिगू, मैं तेरे भाई जैसा हूँ, मुझे बता क्या बात है।
5: मैं बर्बाद हो गया यशवंत, मैं बर्बाद हो गया।
4: क्या?
5: मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई। मैं कहीं का नहीं रहा यशवंत, कहीं का नहीं
4: रहा। देख तू रो मत, चुप हो जा, जो भी बात है मैं तेरे भाई जैसा हूँ, तू मुझे साफ साफ बता।
5: पार्वती?
4: हाँ हाँ, क्या हुआ पार्वती को?
5: पार्वती मेरे मुंह पर काली पोत कर भाग गई।
4: क्या?

कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक जंग लगी तलवार की 11वीं कड़ी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए पेश है इस घंटे की खास खबरें।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 18 से 22 जून तक मध्यप्रदेश के प्रवास पर रहेंगी। इस दौरान वे इंदौर, बैतूल, ओमकारेश्वर, जबलपुर, ग्वालियर और कुनो अभयारण्य जाएंगी। प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो सकता है। करीब 15 दिन तक चलने वाले इस सत्र में सदन की 10 से 12 बैठकें प्रस्तावित हैं। विधानसभा सचिवालय ने सत्र बुलाने का प्रस्ताव राज्यपाल को भेज दिया है। 21 जून को निर्धारित राष्ट्रीय प्रवेश और पात्रता परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा को देखते हुए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम ऐप पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान और नौवें महासचिव एंटोनियो गुतरस का कार्यकाल इस साल के अंत में समाप्त हो जाएगा। अगले वर्ष 1 जनवरी को नए संयुक्त राष्ट्र महासचिव अपना पदभार ग्रहण करेंगे। नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण कार्यक्रम में संशोधन किया गया है। अब दावे आपत्ति 25 जून तक लिए जाएंगे और इनका निराकरण 2 जुलाई तक किया जाएगा। फोटोयुक्त अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 27 जुलाई को किया जाएगा। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ाए गए दान और कीमती सामान के दुरुपयोग के आरोप में राज्य सरकार ने एसआईटी गठित की है। साथ ही 7 दिनों में प्रारंभिक और 15 दिनों में अंतिम रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। और महिला हॉकी में भारत ने न्यूजीलैंड में आयोजित एफआईएच हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। बृहस्पतिवार को भारत का अगला मुकाबला उरुग्वे से होगा। पुरुष हॉकी में नीदरलैंड में कल भारत का सामना जर्मनी से होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है महिलाओं के लिए उनका मनचाहा कार्यक्रम महिला सभा।

संतुष्ट जीवन सफल जीवन से सदैव श्रेष्ठ होता है, क्योंकि सफलता सदैव दूसरों के द्वारा निर्धारित होती है, जबकि संतुष्टि स्वयं के अंतर्मन और मस्तिष्क के द्वारा। आज के सुविचार के साथ आप सभी महिला सभा कार्यक्रम में स्वीकार करें अपनी साथी वंदना का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, आज के कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं चर्चा से। बहनों, आज 16 जून है और आज के दिन को अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक पोषण दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य उन लाखों प्रवासी श्रमिकों के योगदान को सम्मानित करना है, जो अपने परिवार का भरण पोषण और उन्हें अच्छा जीवन स्तर देने के लिए परिवार से दूर विदेश में रहकर उन्हें जीवन यापन के लिए एक निश्चित धनराशि भेजते हैं। यह दिन प्रवासियों द्वारा भेजी गई राशि से उनके परिवारों, समुदायों और संबंधित देशों के आर्थिक विकास पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभावों को उजागर करता है। साथ ही प्रवासियों द्वारा भेजे गए धन के महत्व और इसके माध्यम से परिवार के विकास में उनकी भूमिका को भी दर्शाता है। बहनों, इस दिवस को हर साल 16 जून को मनाए जाने का निर्णय संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किया गया था। दुनिया भर के लगभग 80 करोड़ से अधिक परिवार अपनी बुनियादी जरूरतों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और दैनिक आवश्यक सामग्री के लिए अप्रवासी कामगारों द्वारा भेजे गए धन पर ही निर्भर हैं। गरीबी कम करने, परिवार की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने और परिवार से दूर रहने वाले इन श्रमिकों के जज्बे और त्याग को सम्मान देने के लिए यह दिवस प्रत्येक वर्ष एक नई थीम के साथ मनाया जाता है। इस तरह से इस दिन का उद्देश्य प्रवासी श्रमिकों के बेहतर वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, परिवार और समुदाय को सशक्त करना एवं बच्चों के उज्जवल भविष्य का निर्माण करना है। बहनों, यह दिन अनगिनत लोगों की जीवन रेखा और समुदायों के विकास में सहायता को दर्शाता है। यह दिवस पहली बार 16 जून 2008 में रोम में स्थित इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट द्वारा वाशिंगटन डीसी के सहयोग से संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी के द्वारा मनाया गया था। फरवरी 2015 में IFAD की गवर्निंग काउंसिल ने आधिकारिक तौर पर 16 जून के दिन को IDFR के रूप में घोषित करने का निर्णय लिया और तब से प्रत्येक वर्ष 16 जून के दिन को पूरे विश्व में

0: अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस तरह से आज का दिन अप्रवासी कामगारों के आर्थिक योगदान को समर्पित है। बहनों, ये तो थी आपसे संक्षिप्त सी चर्चा, और इस चर्चा के बाद आपसे लेते हैं छोटा सा विराम।
1: ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर बी आर श्रीवास्तव के नेतृत्व में शुरू हुआ है एडवांस्ड एआई बेस्ड रेडियोथेरेपी सेंटर। सरकारी योजनाओं के तहत निःशुल्क इलाज भी उपलब्ध है।
2: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, ग्वालियर।
0: बहनों, इस अल्प विराम के पश्चात आप सभी का पुनः स्वागत है आपके अपने मनचाहे कार्यक्रम महिला सभा में। और अब हम कार्यक्रम का रुख करते हैं गीत संगीत की ओर, और सुनते हैं झूठा कहीं फिल्म का एक प्यारा सा गीत किशोर कुमार, आशा भोसले और साथियों की आवाजों में। कुलथन बाबरा के लिखे गीत को संगीत दिया है आरडी बर्मन ने।

0: बहनों, पर्यावरण संरक्षण हम सभी के सुखी और स्वस्थ जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। पर्यावरण संरक्षण के प्रति हम सभी की क्या नैतिक जिम्मेदारियां हैं, हमें पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए क्या करना चाहिए और हर एक क्षेत्र की तरह पर्यावरण को संरक्षित करने में महिलाओं का क्या योगदान है, इस विषय पर आज हम आपको एक वार्ता सुनवाते हैं। हमारी आज की वार्ता का विषय है पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं की भूमिका। वार्ताकार हैं सोनम नामदेव। सुनते हैं ये वार्ता।
1: श्रोताओं, जब हम पर्यावरण शब्द को सुनते हैं तो हमारे मन में क्या आता है? हरे भरे पेड़, नदियाँ, शुद्ध हवा और चहचहाते पक्षी। लेकिन आज का यथार्थ इससे थोड़ा अलग है। आज दुनिया ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण और बदलते मौसम चक्र जैसी गंभीर चुनौतियों से जूझ रही है। ऐसे में एक सवाल हर संवेदनशील मन में उठता है, इस बिखरते पर्यावरण को संभालेगा कौन? जवाब हमारे इतिहास में भी है और वर्तमान में भी। इस धरती को बचाने की सबसे सशक्त और स्वाभाविक कमान हमेशा से महिलाओं के हाथों में रही है। भारतीय संस्कृति में प्रकृति को माता कहा गया है। संस्कृत में एक श्लोक है, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्यः, यानी भूमि मेरी माता है और मैं इस पृथ्वी का पुत्र हूँ। जब प्रकृति खुद एक माँ है तो उसकी रक्षा का दायित्व एक स्त्री से बेहतर और कौन समझ सकता है। सदियों से महिलाएं न केवल परिवारों को पाल रही हैं, बल्कि वे इस धरती की सबसे पहली और स्वाभाविक पर्यावरण विद भी हैं। चाहे रसोई में पानी की एक एक बूंद बचाना हो या खेतों में बीजों को सहेज कर रखना, महिलाओं का हर छोटा कदम पर्यावरण संरक्षण का एक बड़ा अध्याय है। श्रोताओं, पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं की भूमिका आज की बात नहीं है। यदि हम इतिहास के पन्नों को पलटें, तो हमें त्याग, शौर्य और पर्यावरण प्रेम की ऐसी मिसालें मिलती हैं, जो दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलती। आइए चलते हैं साल 1970 में राजस्थान के जोधपुर के खेजड़ली गांव में, जहां एक साधारण सी दिखने वाली बिश्नोई समाज की महिला अमृता देवी बिश्नोई ने पर्यावरण चेतना की वो अलख जगाई जिसकी गूंज आज भी पूरी दुनिया में सुनाई देती है। जब राजा के सैनिक हरे भरे खेजड़ी के पेड़ों को काटने आए तो अमृता देवी ने बिना डरे कहा था, सिर साठे रुख रहे तो भी सस्तो जान। अर्थात यानी अगर एक सिर कटने के बाद भी एक पेड़ बच जाता है तो यह घाटे का सौदा नहीं है। उन्होंने पेड़ को गले लगा लिया। उनके पीछे उनकी तीन बेटियां देखते ही देखते 363 लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। यह दुनिया

पहला ऐसा आंदोलन था जहां इंसानों ने पेड़ों के लिए अपनी जान दी और इसकी अगुवा एक महिला थी। इसी प्रेरणा की गूंज हमें आधुनिक भारत में 1970 के दशक में उत्तराखंड के चमोली जिले में दिखाई दी, जिसे हम चिपको आंदोलन के नाम से जानते हैं। जब ठेकेदार जंगलों को काटने आए तो गौरा देवी के नेतृत्व में ग्रामीण महिलाओं ने पेड़ों को अलग अपने आलिंगन में ले लिया, उनसे चिपक गई और कहा, पहले कुल्हाड़ी हम पर चलेगी, फिर इन पेड़ों पर। गौरा देवी, सुदेशा देवी और बचनी देवी जैसी महिलाओं ने यह साबित कर दिया कि पर्यावरण का असली रक्षक कोई पढ़ा लिखा वैज्ञानिक ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। जमीन से जुड़ी एक आम महिला भी पर्यावरण की सबसे बड़ी रक्षक हो सकती है। इन आंदोलन ने पूरी दुनिया को सिखाया कि पर्यावरण का सीधा संबंध जीवन से है और जीवन को सहेजना महिलाओं को ईश्वर से मिला एक अनूठा वरदान है। अब बात करते हैं ग्रामीण और शहरी परिदृश्य में महिलाओं के योगदान के बारे में। श्रोताओं, आज भी हमारे देश के ग्रामीण इलाकों में महिलाएं सीधे तौर पर प्रकृति से जुड़ी हुई हैं। वे ईंधन के लिए सूखी लकड़ियां चुनती हैं, पानी लाती हैं और पशुपालन करती हैं। वे जानती हैं कि अगर जंगल कटे या पानी के स्रोत सूखे तो सबसे पहला और सीधा संकट उन्हीं के जीवन पर आएगा। यही कारण है कि ग्रामीण महिलाएं पारंपरिक ज्ञान के माध्यम से जल संचयन और जैविक खेती में बहुत बड़ा योगदान दे रही हैं। वे बीजों को पारंपरिक तरीके से संरक्षित करती हैं ताकि हमारी फसलों की विविधता बची रहे। वहीं अगर हम शहरी परिदृश्य की बात करें तो आज आधुनिक शहरों में भी महिलाएं पर्यावरण संरक्षण की नई इबारत लिख रही है। रसोई के गीले कचरे से घर पर ही खाद बनाना, किचन गार्डन के जरिए छतों पर हरियाली बिखेरना और एकल उपयोग प्लास्टिक को पूरी तरह से नकारना, ये सब महिलाओं के दैनिक जीवन का हिस्सा बन चुका है। आज की जागरूक महिलाएं जीरो वेस्ट लाइफस्टाइल को बढ़ावा दे रही हैं। इतना ही नहीं, आज महिलाएं पर्यावरण उद्यमी बनकर सामने आ रही हैं। वे जूट के थैले बनाने, रिसाइकलिंग यूनिट्स चलाने और सस्टेनेबल फैशन को बढ़ावा देने में नेतृत्व कर रही हैं। घर की बजट मैनेजर होने के नाते वे जब पर्यावरण अनुकूल उत्पादों को चुनती हैं तो वे सीधे तौर पर बाजार की दिशा बदल देती हैं। श्रोताओं, सरकार भी ये भली भांति जानती है कि महिलाओं की भागीदारी के बिना कोई भी पर्यावरण आंदोलन सफल नहीं हो सकता। इसीलिए पिछले कुछ वर्षों में ऐसी कई योजनाएं शुरू की गई हैं जो पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ सीधे तौर पर महिलाओं के जीवन को बेहतर बनाती हैं। आइए कुछ प्रमुख योजनाओं पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, यह योजना सिर्फ एक LPG कनेक्शन देने की योजना नहीं है, बल्कि यह पर्यावरण और महिला स्वास्थ्य का एक बहुत बड़ा संगम है। पहले ग्रामीण महिलाएं चूल्हे के धुएं में खाना बनाती थी, जिससे भारी मात्रा में कार्बन उत्सर्जन होता था और पेड़ों की कटाई होती थी। इस योजना ने करोड़ों महिलाओं को स्वच्छ ईंधन दिया, जिससे जंगलों पर दबाव कम हुआ और पर्यावरण स्वच्छ हुआ। अब बात करते हैं जल जीवन मिशन के बारे में। इस मिशन का उद्देश्य हर घर तक नल से जल पहुंचाना है। ग्रामीण क्षेत्रों में पानी के प्रबंधन की जिम्मेदारी पानी समितियों को दी गई, जिनमें कम से कम 50% महिलाओं की भागीदारी अनिवार्य की गई। महिलाएं पानी की शुद्धता की जांच खुद फील्ड टेस्ट किट के माध्यम से करती हैं और जल संरक्षण की योजनाएं बनाती हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत कचरा प्रबंधन और स्वच्छता में महिलाओं ने स्वच्छ ग्राहियों के रूप में नेतृत्व किया है। सूखे और गीले कचरे को अलग अलग करने की आदत को महिलाओं ने अपने घरों से शुरू करके एक जन आंदोलन बना दिया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत आज गांवों में महिलाओं के स्वच्छ सहायता समूह बड़े पैमानों पर वृक्षारोपण, नर्सरी तैयार करने, जैविक खाद बनाने और पर्यावरण अनुकूलन सामग्रियां तैयार करने का काम कर रहे हैं। इससे उन्हें रोजगार भी मिल रहा है और पर्यावरण की रक्षा भी हो रही है। श्रोताओं, सिद्ध पर्यावरणविद डॉक्टर वंदना शिवा ने एक बार कहा था कि प्रकृति और महिलाएं एक दूसरे के पूरक हैं।

0: दोनों में ही सृजन और पोषण की अद्भुत क्षमता है। आज आवश्यकता इस बात की है हम महिलाओं के इस पारंपरिक ज्ञान और आज आवश्यकता इस बात की है कि हम महिलाओं के इस पारंपरिक ज्ञान और उनकी नेतृत्व क्षमता को और अधिक सम्मान दे। जब एक माँ अपने बच्चे को संस्कार देती है तो उसमें यह संस्कार भी शामिल होना चाहिए कि वह राह चलते किसी पेड़ की पत्ती न तोड़े और पानी की एक बूंद भी बर्बाद न करे। आइए आज आकाशवाणी के माध्यम से हम सब ये संकल्प लें कि हम अपने घरों की महिलाओं के पर्यावरण अनुकूल प्रयासों में उनका साथ देंगे। एक पौधा अपनी माँ, बहन, पत्नी या बेटी के नाम पर जरूर लगाएंगे और उसकी देखरेख करेंगे, क्योंकि जब एक महिला संभलती है तो एक परिवार संभलता है और जब महिलाएं पर्यावरण संभालेंगी तो पूरी पृथ्वी मुस्कुराएगी। इसी सुंदर विचार के साथ मुझे यानी आपकी वार्ताकार सोनम नामदेव को अनुमति दीजिए। सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार
1: बहनों, अभी हम सोनम नामदेव से उनकी वार्ता सुन रहे थे, पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं की भूमिका। यकीनन इस वार्ता के जरिए आपको कुछ नई बातें जानने को प्राप्त हुई होंगी और आपको वार्ता पसंद भी आई होगी। मैंने वर्तमान में इंटरनेट की सुविधा की वजह से लोगों का मार्केट जाकर शॉपिंग करने की जगह घर बैठे शॉपिंग करने का चलन बहुत बढ़ गया है। इससे एक तो समय की बचत हो जाती है, दूसरा घर बैठे ही अपना मनपसंद सामान व्यक्ति आसानी से प्राप्त कर लेता है। लेकिन इन सारी सुविधाओं के साथ ही साइबर क्राइम यानी ऑनलाइन शॉपिंग में फ्रॉड यानी धोखाधड़ी भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आपकी थोड़ी सी असावधानी आपके नुकसान की वजह भी बन सकती है। बनो ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए सतर्कता और सही जानकारी ही आपको सुरक्षित रख सकती है। आजकल डिजिटल लेन देन बढ़ने के साथ ही ठगी के नए नए तरीके भी लोगों के द्वारा तैयार किए जा रहे हैं। नकली वेबसाइट या बैंक के जरिए फर्जी ईमेल या मैसेज के द्वारा गोपनीय जानकारी प्राप्त कर लेना, पैसे प्राप्त करने के लिए आपसे कॉल या मैसेज के जरिए QR कोड स्कैन करवाना या UPI जानकारी प्राप्त करना, आपके द्वारा बैंकिंग जानकारी जानना, आपकी डाटा जानकारी प्राप्त करना आदि अपराध बहुत चलन में है और अज्ञानतावश कई बार हम अपनी पर्सनल जानकारियां शेयर भी कर देते हैं। आपको लालच देकर या KYC के नाम पर आपसे आपकी व्यक्तिगत जानकारी भी हासिल की जाती है और जानकारी के अभाव में हम चूंकि बहुत सारे हमारे जो साथी हैं वो बहुत सारी चीज़ों के बारे में सतर्क और जागरूक नहीं होते हैं, तो इस तरह की जानकारी के अभाव में वे इस धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं और बाद में परेशान होते हैं और नुकसान भी सहन करते हैं। तो इस तरह की ऑनलाइन ठगी से बचने के लिए थोड़ी सी सावधानी रखना जरूरी है और हमारा जागरूक होना भी जरूरी है। हमें अपनी जानकारियां भी बढ़ानी चाहिए, अपनी गोपनीय और वित्तीय जानकारी कभी भी हमें किसी के भी साथ शेयर नहीं करना है। अपना UPI पिन, ATM और OTP किसी को भी आप ना बताएं। बैंकिंग जानकारी यानी खाते से संबंधित जानकारी कभी भी फोन पर किसी से डिस्कस ना करें और ना ही किसी के साथ शेयर करें, क्योंकि बैंक फोन के माध्यम से आपकी निजी वित्तीय जानकारी कभी भी हासिल नहीं करते हैं। अनजान लिंक पर भी अपनी पर्सनल जानकारी कभी भी उनके द्वारा मांगे जाने पर आप शेयर ना करें। बहनों, किसी भी तरह की धोखाधड़ी का अंदेशा होने पर अपने बैंक को आप सूचित करें। साथ ही भारत सरकार के आधिकारिक राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर फ्रॉड यानी धोखाधड़ी से जुड़े साक्ष्यों के साथ शिकायत आप जरूर दर्ज करवाएं और अपने खाते को ब्लॉक करवाएं। बैंक और कार्ड स्टेटमेंट को हमेशा आप लगातार समय समय पर चेक करते रहें। इसके साथ ही अपने मोबाइल उपकरणों को लगातार समय समय पर अपडेट करते रहें, अपना पासवर्ड भी बदलते रहें और उसे भी अपडेट करते रहें। हर एक के साथ अपनी पर्सनल जानकारी कभी भी शेयर न करें, भले ही वो आपका कितना भी खास क्यों ना हो, ये भी ऑनलाइन ठगी का एक कारण बन सकता है। तो बहनों, थोड़ी सी सावधानी और सतर्कता जरूर बरतें ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान और थोड़ी सी अपनी जानकारियां भी बढ़ाएं। सारी जानकारी हासिल करने के बाद ही आप ऑर्डर करें। नकली लिंक को जानना और पहचानना सीखें और उसके माध्यम से कोई भी सामान ना खरीदें। खरीदारी या बैंकिंग वेबसाइट का उपयोग स्वयं के डिवाइस से ही करें। सार्वजनिक स्थल, साइबर कैफे या दूसरों के डिवाइस का उपयोग

शॉपिंग के लिए ना करें, क्योंकि इससे आपका डेटा चोरी होने और कॉपी होने का अंदेशा होता है, जिससे आपको भविष्य में नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो बहनों, इस उपयोगी चर्चा के बाद अब हम एक बार फिर से कार्यक्रम का रुख करते हैं मनोरंजन की ओर और सुनते हैं कारवा फिल्म का एक प्यारा सा गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। मजरूह सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत को अपना मधुर संगीत दिया है आरडी बर्मन ने।

मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज पर और प्रसार भारती का ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं, हमारी सांध्यकालीन सभा अब आरंभ होती है। सभा की शुरुआत में युवा साथियों के लिए प्रस्तुत है युववाणी कार्यक्रम।

0: इसी शुभ विचार के साथ स्वागत है आपका अपने कार्यक्रम युवाणी में। आज मैं हूं आपके साथ प्रफुल्ल दीक्षित और मेरे साथ हैं
1: प्रीति कुशवाहा।
0: तो स्वीकार कीजिए हमारा
1: नमस्कार।
0: श्रोताओं, आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक चर्चा के माध्यम से। चर्चा का विषय है अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस। तो श्रोताओं, करते हैं इस विषय पर चर्चा।
1: साथियों, अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस प्रतिवर्ष 16 जून को मनाया जाता है।
0: इस दिवस को मनाने का उद्देश्य उन करोड़ों प्रवासी श्रमिकों के योगदान को सम्मान देना है जो अपने परिवार की सहायता के लिए विदेशों या अन्य स्थानों पर काम करते हैं और अपनी कमाई का कुछ हिस्सा अपने परिवार को भेजते हैं।
1: प्रेषण वह धनराशि है जो कोई व्यक्ति अपने परिवार को भेजता है। आज के समय में लाखों भारतीय और अन्य देशों के नागरिक रोजगार के लिए अपने घरों से दूर रहते हैं।
0: हाँ साथियों, वे कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं, अपने माता पिता पत्नी बच्चे और अन्य परिवार जनों की सहायता करते हैं। उनके द्वारा भेजा गया धन परिवार के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
1: साथियों, प्रेषण केवल धन का आदान प्रदान नहीं बल्कि यह प्रेम, जिम्मेदारी और पारिवारिक संबंधों का प्रतीक है।
0: इस धन से बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और भोजन, आवास, इसके अलावा जरूरी आवश्यक जरूरतों की पूर्ति होती है। कई परिवार के लिए यह आय का मुख्य स्रोत होता है।
1: अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रेषण का बहुत महत्व है। विश्व के अनेक विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था में इसका बड़ा योगदान होता है।
0: श्रोताओं, प्रेषण से गरीबी कम करने, रोजगार बढ़ाने तथा सामाजिक विकास को गति देने में सहायता मिलती है। यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं प्रवासी श्रमिकों को योगदान को विशेष महत्व देती हैं।
1: साथियों, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि प्रवासी श्रमिक अपने परिवारों के बेहतर भविष्य के लिए अनेक त्याग करते हैं। वे अपने प्रियजनों से दूर रहकर कठिन परिश्रम करते हैं।
0: इसलिए उनके अधिकारों की रक्षा करना, उन्हें सुरक्षित वातावरण प्रदान करना तथा धन भेजने की सुविधाओं को सरल और सस्ता बनाना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है।
1: साथियों, आज के इस अवसर पर हमें उन सभी प्रवासी श्रमिकों के प्रति सम्मान और आभार व्यक्त करना चाहिए।
0: हाँ बिल्कुल, जिनके अथक प्रयासों से लाखों परिवारों का जीवन सुचारू रूप से चल रहा है एवं उनका योगदान केवल उनके परिवारों बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
1: साथियों, अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस हमें परिवार, जिम्मेदारी, त्याग और मानवीय संबंधों के महत्व का संदेश देता है।
0: श्रोताओं, ये तो थी अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस पर एक महत्वपूर्ण चर्चा। कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं छोटे से अंतराल के बाद।
2: अब कैंसर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं,
3: क्योंकि अब ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेट सीटी स्कैन, लीनियर एक्सेलरेटर जैसे एडवांस मशीन्स उपलब्ध हैं। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, मंदिर की माता।
0: श्रोताओं, एक बार अंतराल के बाद पुनः स्वागत है आपका कार्यक्रम युवाणी में। दोस्तों, ले चलते हैं आपको गीत संगीत की ओर और सुना देते हैं प्यारा सा ये गीत।

0: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे फिल्म वांटेड से ये गीत, जिसमें आवाज थी शान और श्रेया घोषाल की।
1: गीतकार थे अरुण भैरव और संगीतकार थे साजिद बाजिद। साथियों मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद।
2: जानते हैं कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
3: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: दोस्तों पुनः स्वागत है अंतराल के बाद आपका अपने कार्यक्रम वाणी में। अगला कार्यक्रम में सुनेंगे आप भेंट वार्ता। भेंट वार्ता का विषय होगा परीक्षा के समय में विद्यार्थी किस तरह से संतुलन बनाए, विषय पर तुलसीदास प्रजापति से बातचीत।
4: हमारे श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार। श्रोताओं, हम हमारे विद्यार्थियों के लिए भी अलग अलग विषय विशेषज्ञों को आपके बीच में लाते हैं। तो हमारे विद्यार्थी परीक्षाओं के तनाव से कैसे दूर रहें, उनके मन में कई तरह के प्रश्न होते हैं और उनकी अपनी अपनी जिज्ञासाएं होती हैं और उनके मन में थोड़ा सा डर भी महसूस होने लगता है। तो ये जो समस्याएं कैसे दूर हों और कैसे हम परीक्षाओं के डर से दूर हों, हमारे बीच विषय विशेषज्ञ हैं तुलसीदास प्रजापति जी। आप शिक्षक हैं और साथ ही साथ हमारे विद्यार्थियों को मोटिवेट भी करते हैं और उनकी विशेष कक्षाएं भी आप ले रहे हैं ताकि विद्यार्थी परीक्षा के तनाव से दूर रहें। सर बहुत स्वागत है आपका।
5: धन्यवाद।
4: सर सबसे पहले हम जानेंगे तनाव क्या हो सकता है, खासकर विद्यार्थी जब परीक्षा देते हैं तो अपने आप में एक उन्हें डर जैसा महसूस होने लगता है, तो क्या कुछ कहेंगे इस विषय में?
5: आजकल बच्चे ई शिक्षा प्रणाली में इतनी

0: स्पर्धा है कि बच्चों पर माता पिता प्रभाव डालते हैं और बच्चों में एक भय बना रहता है कि हम कैसे ज्यादा अंक प्राप्त करें, इसलिए बच्चों में तनाव बढ़ जाता है। यदि इस तनाव से बचने के लिए यदि बच्चे अपने कोर्स को अपना टाइम टेबल बना के विषयों को विभाजन करके और डेली दिनचर्या में लाएं, अपना टाइम टेबल बना के कोर्स की तैयारी करें, तो भी उनका आत्मबल बढ़ेगा और तनाव से दूर रहेंगे।
1: बहुत अच्छी आपने बात कही है कि हमारे बच्चे अगर डेली रूटीन में अपनी दिनचर्या बनाएं, अलग अलग जो विषय हैं उनको अच्छे से पढ़ें, रिवीजन करें, तो ये जो तनाव है उससे वो दूर रह सकते हैं। अब हम बात करते हैं, हमारे जो विद्यार्थी हैं वो ये जानते हैं कि हम मोबाइल से पढ़ लेंगे या देख लेंगे या कुछ भी उसमें गाने सुन लेंगे तो उससे दूर हो सकता है, तो इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे, उनकी दिनचर्या कैसी हो, मोबाइल से वो दूरी बनाएं, खासकर परीक्षाओं के समय में?
0: अपने समय का प्रबंधन करें, अपनी योजनाबद्ध तरीके से टाइम टेबल बना के और मोबाइल ज्यादा प्रयोग ना करें, उससे दूर रहें, जो कोर्स की तैयारी है उतना ही प्रयोग करें। इसके बाद यदि तनाव होता है तो थोड़ी मनोरंजन करें, खेलें, गाने सुने, क्योंकि लगातार पढ़ाई से मन भी थक जाता है, तो बच्चे अपने इस तनाव को दूर करने के लिए थोड़ा मनोरंजन भी करें, समयबद्ध तरीके से अपनी पढ़ाई करें, योग प्राणायाम करें, खेल कूद करें, तो उससे तनाव में कमी आ सकती है। अपने समय विभाजन अनुसार अपनी पढ़ाई को जारी साल भर रखें, जो कठिनाई हो
1: जी।
0: अपने शिक्षक से संपर्क बनाए रखें, अपने माता पिता से साझा करें, तो उन समस्याओं को आसानी से सरल किया जा सकता
1: है। बहुत अच्छी आपने बात कही है कि अपने माता पिता से भी हम संपर्क बना सकते हैं, साथ ही साथ अपने समय का विभाजन हम बहुत अच्छे तरीके से करें, जिससे हम बहुत अच्छे तरीके से अपने जो पढ़ाई का समय है, जो खासकर परीक्षाओं का समय है, उसमें बहुत अच्छी तैयारी हम कर पाएंगे। अब हम बात करेंगे कि माता पिता की क्या भूमिका हो सकती है हमारे बच्चों के लिए। अक्सर हमारे बच्चे बहुत अच्छी पढ़ाई करते हैं, वो अलग अलग ट्यूशन का भी सहारा लेते हैं, या हमारे स्कूलों में भी इतनी अच्छी सुविधाएं हैं कि उनके लिए रेमेडियल क्लासेस भी लगती हैं, जिन्हें हम अतिरिक्त क्लासें भी बोल सकते हैं, जो विद्यार्थी कमजोर होते हैं तो उनको अतिरिक्त पढ़ाया जाता है, उनके जो डाउट्स हैं वो बिल्कुल आसानी से समझाए जाते हैं, उनके हल उन्हें बताते हैं जो शिक्षा विभाग काम करता है या हमारे अलग अलग बोर्ड काम करते हैं, तो हमारे परिवार की क्या भूमिका होनी चाहिए उनके इस परीक्षा के दौरान?
0: परिवार को उनके खाने पीने, सोने का और पढ़ाई का, माता पिता का ये कर्तव्य है कि बच्चे की पढ़ाई पर पूरी साल निगरानी रखें, ट्यूशन के भरोसे न रखें, उनके आगे किताबें देखें, उनको कहाँ कठिनाई आ रही है, उसका माता पिता से नहीं बनता है तो उनका निदान विद्यालय में टीचरों से संपर्क करें
1: जी,
0: और अपने बच्चों की कठिनाइयों का निराकरण करवाएं।
1: बहुत अच्छी सलाह हमारे बच्चों के लिए है। और बच्चों के लिए कुछ आप कहना चाहें, हमारे बच्चे जैसे मैथ्स है, इंग्लिश है, साइंस है, या और भी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन विषयों में वो कमजोर होने लगते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को कुंठित मानसिकता में ले जाते हैं कि ये प्रश्न अगर हम गुरुजी से पूछेंगे या अपने टीचर्स से पूछेंगे तो ऐसा नहीं वो कहें कि इतना सरल आंसर है और आप हमसे पूछ रहे हैं, तो उनसे कुछ आप कहना चाहें कि कोई भी प्रश्न हो वो आप पूछ सकते हैं बेझिझक, तभी आप उसको अच्छे से हल कर पाएंगे।
0: जिन बच्चों की पढ़ाई में रुचि है और साल भर अपनी समय चक्र के अनुसार अपने कोर्स का विभाजन करके पढ़ाई करते हैं, तो उनमें आत्मबल बढ़ता है और वो निश्चित सफल होते हैं, उनकी वो पूछते हैं। अब मोबाइल इंटरनेट का जमाना है तो मोबाइल का बच्चे भी गलत प्रयोग कर रहे हैं, अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, रातों रात देख रहे हैं, तो उससे बच्चों की नींद पर असर पड़ता है, उनकी पढ़ाई पर असर पड़ता है। यदि बच्चे के अंदर लगन है तो वो असफल नहीं हो सकता है, ना उसके अंदर तनाव आ सकता है, बशर्ते वो अपने जैसे ही स्कूल खुलते हैं और पूरी साल अपने कोर्स का विभाजन करके समय चक्र अनुसार अपनी दिनचर्या में काम करता है और जहाँ कठिनाई होती है पूछता है, वो बच्चा कभी असफल।
1: जी जी, बहुत अच्छी सलाह हमारे विद्यार्थियों के लिए, खास खासकर वो अगर नियम से चलते हैं तो वो असफल हो ही नहीं सकते। अब हम सर आपसे ये भी जानना चाहेंगे, हमारे माता पिता अक्सर इतने व्यस्त रहते हैं कि इस दौरान खासकर परीक्षा के दौरान वो अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते, तो इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे उन पेरेंट्स से, अभिभावकों से, कि आप एक बार उनसे मिलें, उनसे उन्हें मोटिवेट करें कि आप ये कर सकते हैं, बहुत अच्छे से कर सकते हैं, उन्हें ढांढस बनाएं अगर वो थोड़ा सा लग रहा है कि वो नर्वस हो रहे हैं।

0: या थोड़ा सा उन्हें डर जैसा लग रहा है, तो कुछ आप कहना चाहें?
1: जो माता पिता बिल्कुल बच्चों ट्यूशन के भरोसे छोड़ते हैं, तो उनको उनको हमारा सुझाव है कि कम से कम आप उनके किताबों को पलट कर देख लें, उनसे पूछ लें और उनकी कठिनाइयों का निराकरण कराएं। तो या तो हमारा ये कहना है कि एक घंटे बच्चों को स्वयं पढ़, तब आपको पता चलेगा कि हमारे बच्चे को यहाँ कठिनाई है। यदि आप नहीं देख पाते हैं तो उनके कोर्स पर नजरअंदाज जरूर करें, जिससे बच्चे की कठिनाइयों का निराकरण आप स्वयं कर सकें। आप यदि ट्यूशन के भरोसे रहेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमारा बच्चा अच्छा है या बुरा है। प्राइवेट स्कूलों में स्टैंडर्डता खूब दी जाती है, बच्चे रटुआ कर दिए जाते हैं, लेकिन उनको जो विषय विशेषज्ञ होगा वो उनको विस्तार से जानकारी देगा और बच्चे की कठिनाइयों का निराकरण होगा।
0: बिल्कुल सर, बहुत ही महत्वपूर्ण ये सुझाव है और सलाह है हमारे उन अभिभावकों के लिए जो कामकाजी हैं, उन्हें थोड़ा सा समय जरूर देना चाहिए, नहीं तो हमारे विद्यार्थी कहीं ना कहीं उस संगत में आ जाते हैं, जैसे हम कहें कि मोबाइल में भी वो रील में भी लगे रहते हैं या सोशल मीडिया का अधिक उपयोग करते हैं इंटरनेट, तो उसमें कई तरह की गलत जानकारी भी उन्हें मिलती है जिससे उनका मनोबल कमजोर होता है और वो तनाव में जाते हैं। और तनाव का कोई इलाज नहीं है, तनाव तो खुद में एक बीमारी है और बीमारियों का घर हम उसे कह सकते हैं। इसलिए व्यक्ति को, हमारे जो अभिभावक हैं, वो बच्चों पर पूरा का पूरा ध्यान रखें ताकि हमारे बच्चे बहुत अच्छा कर पाएं। और परीक्षा जो होती है, देखिए वो हमारा जीवन तय नहीं करती, वो एक परीक्षा होती है और वो निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जीवन भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब हमारे बच्चों से कुछ कहना चाहें कि जो ऑनलाइन भी पढ़ते हैं, सोशल मीडिया में भी थोड़ा सा व्यस्त रहते हैं, तो वो इन चीजों को करें या ना करें या कितना उपयोग करें, इस संदर्भ में कैसे आप सलाह देना चाहेंगे?
1: जितना जरूरी है उतना उपयोग करें, फालतू की चीजों में बच्चे न अपना टाइम वेस्ट करें। एक होती है परीक्षा, एक होती है प्रतीक्षा। परीक्षा जीवन भर चलती है, हम उसकी प्रतीक्षा करते हैं, तो परीक्षा जीवन का केवल एक पड़ाव है, पूरा जीवन नहीं।
0: बिल्कुल,
1: आत्मविश्वास, सही तैयारी, सकारात्मक दृष्टिकोण से विद्यालय में परीक्षा तनाव से दूर रह सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
0: बहुत अच्छी सलाह आपने दी है, अगर हम आत्मविश्वास से अपने काम को करते हैं और बहुत अच्छी मेहनत से करते हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से, नियम से, तो बहुत अच्छे अंक हम अर्जित कर सकते हैं। और जैसा आपने कहा कि देखिए ये परीक्षा है, पूरा जीवन आपके पास रहता है, इसलिए बिल्कुल ना घबराएं। अगर आपको लग रहा है कि हमें इस विषय में कमजोरी है, तो आप थोड़ा सा अधिक मेहनत कर लें, निश्चित रूप से आपके अंक बहुत अच्छे होंगे। और अगर फिर भी आपको कोई समस्या है, तो हमारे गुरुजन हैं, शिक्षक हैं, माता पिता हैं या और भी हमारे साथी हैं, उनसे हम सीख सकते हैं, पूछ सकते हैं, क्योंकि अगर आप पूछेंगे तो निश्चित रूप से उसके हल आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे। और अगर आप सोशल मीडिया पे देखेंगे तो बहुत ज्यादा आपको तनाव होगा और ऐसे ऐसी जानकारियां मिलेंगी वो शायद आपकी परीक्षा से हटकर हो, तो निश्चित रूप से आपको इससे थोड़ा सा बचना चाहिए। बहुत अच्छी सलाह है, आज हमारे बीच थे शिक्षक तुलसीदास प्रजापति जी। तो सर, आज इतनी महत्वपूर्ण सलाह है और इतने महत्वपूर्ण विषय पर, ये जो समय चल रहा है, परीक्षाओं का समय है, बोर्ड की परीक्षाएं हैं और हमारे और भी विद्यार्थियों की परीक्षाएं हैं, तो एक अच्छे आत्मविश्वास के साथ आप पेपर हल करें, बहुत अच्छे अंक आपको मिलेंगे निश्चित रूप से। देखिए हम पूरे जीवन भर सीखते रहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी भी मन की बात में कहते हैं, परीक्षा पे चर्चा पे वो कहते हैं कि हमें अपने आत्मविश्वास और आत्मबल से अपने जो भी हमें काम है वो करने हैं, निश्चित रूप से एक अच्छे विषय में या अच्छे अंक हम हासिल कर पाएंगे, बस हमें मेहनत से परीक्षा देनी है। बहुत अच्छी जानकारी सर आपने दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: साथियों, अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता, परीक्षा के समय में विद्यार्थी किस तरह से संतुलन बनाए, विषय पर तुलसीदास प्रजापति से बातचीत। कहीं मत जाइएगा साथियों, मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद।
3: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
4: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: अंतराल के बाद पुनः स्वागत है आपका अपने कार्यक्रम वाणी में। इसी के साथ आपको ले चलते हैं साथियों गीत संगीत की ओर, और सुनवा देते हैं प्यारा सा ये गीत।

0: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे फिल्म खट्टा मीठा से यह गीत, जिसमें आवाज थी के और सुनिधि चौहान की।
1: संगीतकार थे प्रीतम और गीतकार थे इरशाद कामिल।
0: साथियों, कार्यक्रम की चर्चा माफ कीजिए साथियों, कार्यक्रम में अगली चर्चा का विषय होगा किसानों के लिए नई सरकारी योजनाएं।
1: साथियों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे किसान के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित महत्वपूर्ण योजनाओं की, जिनका उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना, खेती के लाभकारी बनाना और कृषि के क्षेत्र को मजबूत बनाना।
0: श्रोताओं, सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इसके तहत पात्र किसानों को हर वर्ष 6,000 रूपये की आर्थिक सहायता 3 समान किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खाते में दी जाती है।
1: यह राशि किसानों को बीज, खाद और अन्य किसी कार्यों में मदद करती है।
0: अब बात करते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की। यह योजना प्राकृतिक आपदा, बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि या अन्य कारणों से फसल को हुए नुकसान की भरपाई के लिए बनाई गई है।
1: कम प्रीमियम पर किसान अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं और नुकसान होने पर आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
0: श्रोता, इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड KCC के माध्यम से किसानों को कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध करा रही है, जिससे खेती के लिए आवश्यक संसाधन आसानी से जुटाए जा सकते हैं।
1: साथियों, नई तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए कृषि यांत्रिकरण योजना के तहत ट्रैक्टर, कृषि उपकरण और आधुनिक मशीन की खरीद पर अनुदान भी दिया जा रहा है।
0: इसके अतिरिक्त मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को अपनी भूमि की गुणवत्ता और पोषक तत्वों की जानकारी दी जाती है, जिससे किसान संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग और बेहतर उत्पादन कर सकते हैं।
1: साथियों, किसानों की आय बढ़ाने के लिए और कृषि उत्पादकों के बेहतर विपणन के लिए राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी ई-नाम प्लेटफॉर्म भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जिससे किसान को अपनी फसल का उचित मूल्य प्राप्त हो सके।
0: प्रिय किसान भाइयों और बहनों, इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए अपने निकटतम कृषि विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र एवं सरकारी कार्यालय में संपर्क करें और इन सभी योजनाओं से संबंधित लाभ प्राप्त कर सकें। साथियों, यह तो थी किसानों के लिए नई सरकारी योजनाओं पर एक चर्चा। कहीं जाइएगा मत दोस्तों, सुनवा देते हैं आपको गीत संगीत।

0: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे फिल्म एक्शन रिप्ले से ये गीत, जिसमें आवाज थी श्रेया घोषाल की,
1: संगीतकार थे प्रीतम और गीतकार थे इशरत कामिल।
0: दोस्तों कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद।
2: अब कैंसर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं,
3: क्योंकि अब ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेट सीटी स्कैन, लीनियर एक्सेलरेटर जैसे एडवांस मशीन्स उपलब्ध हैं। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, मंदिर की माता।
0: दोस्तों पुनः स्वागत है आपका अपने कार्यक्रम युवाणी में। दोस्तों दे देते हैं आपको आज की रोजगार सूचना। SSC CGL यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है।
1: पद का नाम है ग्रुप ए और सी।
0: पदों की संख्या है 12,256।
1: आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम 32 वर्ष।
0: आयु सीमा में छूट नियमानुसार दी जाएगी।
1: आवेदन की अंतिम तिथि 22 जून 2026। शैक्षणिक योग्यता स्नातक की डिग्री पास होना।
0: अधिक जानकारी के लिए आप इनकी आधिकारिक वेबसाइट www.ssc.gov.in पर विजिट करें। दोस्तों ले चलते हैं आपको एक गीत संगीत की ओर, सुनवा देते हैं प्यारा सा ये गीत।

0: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे फिल्म रेडी से गीत, जिसमें आवाज थी तुलसी कुमार और केके की।
1: संगीतकार थे प्रीतम और गीतकार थे नीलेश मिश्रा।
0: श्रोताओं तो ले चलते हैं आपको कल के कार्यक्रम की ओर। बता देते हैं कल के कार्यक्रम में होगा लोक संगीत गायन और होगी महत्वपूर्ण चर्चाएं और इसी के साथ होगी रोजगार सूचना। साथियों वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, तो स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों का मनचाहा कार्यक्रम युववाणी। मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए श्रोताओं, सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

ऑलवेज कभी कभी। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना शफाकत अमानत अली की आवाज में। गीत के बोल लिखे थे अमिताभ भट्टाचार्य, इरफान सिद्दीकी, प्रशांत पांडे और रोशन ने। धुन बनाई थी प्रीतम और आशीष ने। फिल्म लीजिए, अब सुनिए एआर रहमान, सुजैन, काश एंड कृष की आवाज में रोबोट फिल्म का गीत। गीत के बोल लिखे स्वानंद किरकिरे ने और संगीत एआर रहमान का।

कार्यक्रम के अंत में लीजिए अब सुनिए केके और सुचित्रा की आवाज में जावेद अख्तर की रचना, संगीत हैरिस जयराज और फिल्म का नाम फोर्स।

श्रोताओं, अभी आपने सुना केके और सुचित्रा की आवाज में जावेद अख्तर का लिखा गीत। संगीत हैरिस जयराज का था और फिल्म का नाम था फोर्स। इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज पर और प्रसार भारती का ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए आपको हमारी आज की सभा के शेष और कल की सभा में प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में बता दें। सबसे पहले सुनिए आज की सभा के शेष कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ देर बाद 6 बजे सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम NCERT, जिसे हम भोपाल केंद्र से रिले करेंगे। शाम 6:30 पर बुंदेली लोकगीतों के कार्यक्रम लोकधारा में आज कलाकार होंगी उमा देवी। 7:20 पर ग्रामीण महिलाओं के लिए घरनी कार्यक्रम का प्रसारण होगा, जिसमें सुनिएगा श्रोताओं के पत्रों और ईमेल पर आधारित फरमाइशी लोकगीतों का कार्यक्रम लोक मंजरी। प्रस्तुति होगी रविन्द्र कुमार प्रजापति की। भेंटवार्ता क्रम में सुनिएगा कार्बनिक पदार्थ का मृदा स्वास्थ्य पर प्रभाव विषय पर प्रियांशु चौबे से रविन्द्र कुमार प्रजापति की बातचीत। आज की सीख का विषय होगा वृक्षारोपण करें। रात 8 बजे हम भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष, विषय होगा आतंकवाद। रात 8:35 पर सुनिएगा कुछ फिल्मी गीत। श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मनभावन आप सुनेंगे रात 10 बजे। दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कार्यक्रमों में रात 9:15 पर सुनेगा स्पॉटलाइट कार्यक्रम, 9:30 पर सुनिएगा मनी टॉक कार्यक्रम और रात 9:45 पर सुनिएगा मंथन कार्यक्रम। ये तो थे हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रम। लीजिए सुनिए कल की सभा में प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। कल प्रातः 7:20 पर हिंदी महक कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिएगा वार्ता, विषय होगा सूरदास के साहित्य में अध्यात्म। वार्ताकार होंगे कैलाश प्रसाद सोनी। 8:30 पर सुनिएगा धारावाहिक गीत गीता का 17वां भाग। फिल्मी गीतों का आनंद आप लेंगे प्रातः 7:30 पर, शाम 5:40 पर और रात 8 बजे। प्रातः 9 बजे लोकरंग कार्यक्रम में कलाकार होंगे बद्री प्रसाद कुडेरिया। प्रातः 9:30 पर आप सुनेंगे एक ही फिल्म से के अंतर्गत 1942 अ लव स्टोरी फिल्म के कुछ मधुर गीत। 10:05 पर सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम स्वस्थ तन स्वस्थ जीवन का 10वां भाग। प्रातः 10:10 पर सुनिएगा कन्नड़ भाषा में सामुदायिक गान का प्रशिक्षण पाठ, गीतकार होंगे BR गीता। प्रातः 10:30 पर सुनिएगा श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। दिन में 1 बजे महिला सभा कार्यक्रम का प्रसारण होगा, जिसमें महिलाएं सुनेंगी वार्ता, विषय होगा आयुष्मान भारत योजना। वार्ताकार होंगी रुचि नांगल, साथी होगी उपयोगी जानकारी। शाम 5 बजे युवा साथियों के लिए युवा वाणी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा, जिसमें युवा साथी सुनेंगे लोक संगीत गायन गीता अहिरवार से, साथी होगी रोजगार सूचना। 6:30 पर लोकधारा कार्यक्रम में कलाकार होंगे कल्लू कुर्मी। 7:20 पर ग्रामीण भाई सुनेंगे ग्राम सभा कार्यक्रम, इसमें सुनिएगा धारावाहिक अटकन चटकन का 13वां भाग। भेंटवार्ता क्रम में सुनिएगा भूमि विन्यास एवं जुताई प्रबंधन द्वारा उत्पादकता एवं मृदा स्वास्थ्य में सुधार विषय पर ज्योति कहार से रविन्द्र कुमार प्रजापति की बातचीत। आज की सीख का विषय होगा जब बरसें उत्तरा धान खाएं कुत्तरा। श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मनभावन सुनिएगा रात 10 बजे।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से दिन में 11 बजे सुनिएगा सजीव फोन इन कार्यक्रम। फोन करें, गीत सुने 12 बजे और दिन में 2:30 पर आपकी फरमाइश कार्यक्रम। संग्रहालय से 12:30 पर फिल्म संगीत दिन में 2 बजे। प्रायोजित कार्यक्रम एनसीआरटी शाम 6 बजे। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 5:58 होने वाले हैं। न्यूज हेडलाइंस कुछ ही समय में हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करते हैं।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए दो दिन के दौरे पर फ्रांस के एवियन शहर पहुंच गए हैं। शिखर सम्मेलन कल शुरू हुआ। एवियन पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि वे विश्व नेताओं के साथ बातचीत करने और प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए उत्सुक हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि युवा संसद इस लोकतांत्रिक संस्कृति के लिए एक सशक्त मंच है। ये युवाओं में नेतृत्व, कर्तव्य बोध, तार्किक सोच और राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने जैसे मूल्यों को विकसित करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 18 से 22 जून तक मध्य प्रदेश के प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान वे इंदौर, बैतूल, ओमकारेश्वर, जबलपुर, ग्वालियर और कुनो अभयारण्य जाएंगे। वे 20 जून को शाम करीब 6 बजे जबलपुर पहुंचेंगे। इस दौरान वे दो प्रमुख कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राज्यों से एक याचिका पर जवाब मांगा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार कार्ड का दुरुपयोग नागरिकता, निवास स्थान और आवासीय पते के प्रमाण के रूप में किया जा रहा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया कि आगामी नीट UG पुनर्परीक्षा 2026 के लिए प्रवेश पत्रक डाउनलोड करने की सुविधा शुरू होने के 24 घंटे के भीतर ही 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्रक डाउनलोड कर लिए हैं। और मौसम विभाग ने प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के 18 से 19 जून के बीच प्रवेश करने की संभावना जताई है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश।
1: नमस्कार, मैं हूँ अजीत। करते हैं एक बार फिर से कार्यक्रम की शुरुआत एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। इन्होंने पर्यावरण संदेश भेजा है, लिखते हैं,
0: आज जल पेट्रोल डीजल बचाओगे कल बहुत सुख पाओगे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने खूबसूरत पर्यावरण संदेश के लिए। अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, समीक्षा बेबी, आराध्या साहू लिखते हैं,
0: आदरणीय अजीत सर जी, विमलेश मैम जी, सप्रेम नमस्ते। इस हफ्ते ये भी जानिए मैं फूलों की जानकारी से हमारा हर पल महक उठा। बहुत सुंदर जानकारी थी। नव तपा की इस चिलचिलाती गर्मी में इन फूलों की जानकारी ने हमें शीतलता प्रदान की। प्रोग्राम की शानदार, मस्त, मनभावन, लाजवाब प्रस्तुति के लिए एनसीईआरटी की पूरी टीम को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं एवं साधुवाद। आपकी इस अथक मेहनत को हम दिल से नमन करते हैं।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें प्रोत्साहित करने वाले इतने सुंदर संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से अखिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम सेजल साहू।
0: बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या।

0: देवांगन हेमलता और डिंपल देवांगन।
1: और कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका और मन्नत।
0: और भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता और कमला देवी गुप्ता।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके संदेश श्रोताओं हमें हमेशा प्रोत्साहित करते हैं। इसी तरह से भेजते रहिए संदेश और जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम के साथ।
0: स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि इस श्रृंखला की कड़ियों में हम लेकर आते हैं देश विदेश की रोचक जानकारियाँ,
1: इतिहास, भूगोल, विज्ञान, साहित्य और अनेकानेक विषयों की जानकारियाँ।
0: आशा है आपको वे जरूर पसंद आती होंगी। तो अजीत जी, क्या विषय रहेगा हमारा इस सप्ताह की चर्चा का?
1: निलेश जी, इस सप्ताह हमारी चर्चा होगी भारत की अनूठी और खूबसूरत झीलों के बारे में।
0: जी अजीत जी, बहुत अच्छा विचार है। तो श्रोताओं, इस सप्ताह हम आपको उमंग कार्यक्रम के माध्यम से लेकर चलेंगे भारत की सुंदर झीलों तक और लेंगे उनकी रोचक जानकारियाँ। लेकिन आइए सबसे पहले जानते हैं कि झील किसे कहते हैं या इसकी सामान्य परिभाषा क्या है।
1: श्रोताओं, सामान्य भाषा में कहें तो धरती के किसी गड्ढे नुमा भाग में चारों ओर से घिरा हुआ स्थिर जल का संग्रह झील कहलाता है। यहाँ का पानी खारा और मीठा दोनों हो सकता है। वैसे कई झीलों में जलधाराएं भी गिरती हैं। लेकिन श्रोताओं, एक प्रश्न और उठता है कि चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ जल का संग्रह ये तालाब भी तो हो सकता है, तो तालाब और झील में अंतर क्या है? जी आपको बताते हैं, तकनीकी रूप से तालाब और झील अलग अलग हैं। सबसे पहली बात, झील का आकार सामान्यतः बहुत बड़ा होता है जबकि तालाब का अपेक्षाकृत बहुत छोटा। झील की गहराई बहुत अधिक होती है जबकि तालाब की अपेक्षाकृत कम। झील का निर्माण अधिकतर, यदि आप ध्यान दें तो, प्राकृतिक होता है जबकि अधिकांश तालाब मानव निर्मित होते हैं। तो श्रोताओं, ये थी सामान्य जानकारी झील की। आज हम चर्चा करेंगे भारत की एक अनोखी झील के बारे में। इसका नाम है लोकटक झील। ये भारत के मणिपुर राज्य की राजधानी इम्फाल से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर मोयरंग में स्थित है। श्रोताओं, आपको बता दें कि लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। झीलें तो बहुत हैं हमारे देश में, लेकिन आइए जानते हैं जरा कि इस झील में ऐसी कौन सी बात है जो इसे दूसरी झीलों से अलग बनाती है। तो आपको बता दें श्रोताओं, लोकटक झील को तैरते हुए द्वीपों वाली झील कहा जाता है। अब आप कहेंगे कि तैरती हुई झील का क्या मतलब? तो आपको बताते हैं कि इस झील पर मिट्टी, पौधों और ऑर्गेनिक चीजों से निर्मित घने दलदली समूह हैं, जो तैरते हुए द्वीपों की तरह दिखाई देते हैं, जिन्हें हम फुमदी कहते हैं। सचमुच ये बड़ी अनूठी बात है। और श्रोताओं, एक बात और आपको बता दें कि इस झील में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है जिसका नाम है केबुल लामजाओ। लेकिन एक प्रश्न श्रोताओं मन में आता है, और मुझे लगता है कि ये भी आपको बहुत रोचक लगेगा कि आखिर ये द्वीप तैरते कैसे हैं? जी, इसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको दे दें। एक बड़ी दिलचस्प बात है, इम्फाल हवाई अड्डे पर उतरने वाले अधिकांश यात्री विमान लोकटक झील के ऊपर से ही गुजरते हैं। विमान की खिड़की से झील साफ साफ दिखाई देती है और ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे झील पर बहुत सारी गोल गोल सी दिखने वाली आकृतियाँ हैं। तो अब आप पूछेंगे कि ये आकृतियाँ क्या हैं? तो आपको बताते हैं, जैसा कि हमने पहले भी बताया, इन्हें स्थानीय भाषा में फुमदी कहा जाता है। ये इतने मजबूत होते हैं कि इन पर लोग झोपड़ियां बनाकर रहते हैं। और हाँ श्रोताओं, इन झोपड़ियों में उनके पालतू जानवर भी रहते हैं। यहाँ रहकर लोग छोटी मोटी खेती भी करते हैं और मछलियां पकड़ते हैं। आपको एक बात और बता दें कि लोकटक झील को देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। वे आसपास की सुंदरता को देखते हैं और बोटिंग करते हैं। जी हाँ श्रोताओं, लोकटक झील सैलानियों के आकर्षण का केंद्र तो है ही। कहा जाता है कि मणिपुर में यदि लोकटक झील नहीं देखी तो फिर कुछ नहीं देखा। आपको बता दें, लोकटक झील जैव विविधता से भरी हुई है। यहाँ लगभग 233 जलीय पौधों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। तो श्रोताओं, कभी यदि आप इस क्षेत्र में आएं, तो अक्सर दुकानों में, होटलों पर और सामुदायिक स्थानों में आपको हिरण की तस्वीर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ, इसे संगाई हिरण कहते हैं। इसे नाचने वाला हिरण भी कहा जाता है। ये दुर्लभ हिरण यही मिलता है और ये मणिपुर का राजकीय पशु है। लोकटक झील के आसपास ये बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो श्रोताओं, आज की चर्चा को समाप्त करने से पहले आपको बता दें कि लोकटक झील मणिपुर की जान है, क्योंकि विद्युत उत्पादन से लेकर जलापूर्ति और हजारों लोगों की आजीविका का ये मुख्य आधार है। तो यदि कभी आपको इम्फाल जाना हो तो अपनी घूमने की सूची में सबसे ऊपर रखिए लोकटक झील। सचमुच यहाँ फुंगी से बने हुए तैरते द्वीपों को जब आप देखेंगे तो सचमुच आश्चर्य में पड़ जाएंगे। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी भारत की प्रसिद्ध अनूठी लोकटक झील की। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से प्रश्न है, लोकटक झील में तैरते द्वीप किस चीज से बने हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। लोकटक झील में तैरते हुए द्वीप किस

0: चीज से बने हैं। हाँ, आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। आप हमारा IVS नंबर भी नोट कर लें, 8800-440-559। और हाँ, आप हमें यानी CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की अद्यतन जानकारी मिलती रहेगी। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं आज का सबसे पहला कार्यक्रम, वो आखिरी पत्ता।
1: साथियों नमस्कार।
2: नमस्कार साथियों।
1: साथियों, आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं कक्षा 9 की अंग्रेजी की पूरक पाठ्य पुस्तक मोमेंट्स के एक पाठ की कथा नाट्य प्रस्तुति। शीर्षक है द लास्ट लीफ, यानी आखिरी पत्ता।
2: ये कहानी प्रसिद्ध अमेरिकी कहानीकार ओ हेनरी द्वारा 1905 में लिखी गई थी। ओ हेनरी का पूरा नाम था ओलिवर हेनरी। तो आइए सुनते हैं ये कथा नाट्य प्रस्तुति।
1: अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन। इसी शहर का एक बहुत सुंदर कस्बा है जो ग्रीनविच विलेज के नाम से जाना जाता है। प्राकृतिक रूप से ये बहुत ही रमणीक और सुरम्य गांव है, इसीलिए इस गांव में अक्सर बहुत से चित्रकार आया करते थे
2: ताकि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को वो अपने कैनवस पर उतार सके और दुनिया के सामने ग्रीनविच गांव की खूबसूरती का नजारा पेश कर सकें। इसी ग्रीनविच गांव में एक दिन दो लड़कियां रहने के लिए आईं। वो दोनों चित्रकार थीं और वो भी वहां के सौंदर्य को अपने कैनवस पर उतारना चाहती थीं। एक थी कैलिफोर्निया से और एक थी मेन से।
1: इन लड़कियों में से एक का नाम था जॉन्सी और दूसरी का नाम था सू। दोनों साथ साथ रहने लगी और उन्होंने चित्रकारी शुरू कर दी।
3: अरे जॉन्सी, तुम इतनी सुबह सुबह अपना पेंट ब्रश और कैनवस लेकर कहाँ चल दी?
4: ओ सू, ग्रीनविच के सुहाने सूर्योदय को अपने कैनवस पर उतारना जो है।
3: अरे हाँ, तो चलते हैं और यहाँ की सुंदरता को घर लेकर आते हैं, वो भी अपने अपने कैनवस पर।
2: साथियों, वो मिली तो थी वसंत के महीने में, लेकिन धीरे धीरे शरद ऋतु शुरू हो गई और अब भयंकर सर्दी का मौसम था। उस भयंकर शरद ऋतु में अचानक एक अजनबी ने ग्रीनविच गांव में प्रवेश किया और उसने अपने ठंडे हाथों से लोगों को छूना शुरू किया। उस अजनबी को डॉक्टरों ने नाम दिया था मिस्टर निमोनिया। उसके ठंडे स्पर्श में राहत नहीं थी बल्कि मौत थी। अब ये महामारी बन गई थी दोस्तों। बहुत से लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे, जिनमें एक जॉन्सी भी थी। वो गंभीर रूप से बीमार थी और दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही थी।
1: उसके मित्र सू उसकी बहुत सेवा करती थी। बड़ी मुश्किल से उसने किसी डॉक्टर से संपर्क किया और दवाओं का इंतजाम किया। एक दिन जब डॉक्टर उसे देखने आया तो उसने नोट किया कि जॉन्सी उससे ठीक से बात भी नहीं कर रही है, बस हां हूं कर रही है। डॉक्टर ने एक खास बात नोटिस की कि जॉन्सी बस खिड़की की ओर लगातार देखती जा रही थी।
2: साथियों, डॉक्टर ने उधर भी देखा लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसने सू से कहा,
5: सू
3: जी,
5: जॉन्सी तुम्हारी दोस्त है।
3: जी हाँ।
5: भाई, मुझसे तो वो ठीक से बात नहीं कर रही, जरा उससे पूछकर मालूम करो कि उसे ऐसी क्या तकलीफ है।
3: जी डॉक्टर साहब।
5: और वो क्यों हमेशा खिड़की की तरफ देखती रहती है?
3: मैं पूछती हूँ।
1: दूसरे दिन सू ने गौर से देखा तो उसे समझ में आया कि जॉन्सी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से खिड़की के बाहर किसी चीज को घूरते हुए कुछ बुदबुदा रही है।

0: धीरे से उसके पास गई और सुनने की कोशिश करने लगी।
1: 15, 14
0: क्या?
2: थोड़ी देर के लिए वो चुप रही, फिर उसने गिना, लेकिन इस बार उसने कुछ जल्दी में गिना, जैसे कुछ जल्दी जल्दी घटित हो रहा हो।
1: 13, 12, 11 ओह
3: जॉन्सी,
1: अब सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है। सू
0: सू ने जॉन्सी को झकझोरा और पूछा,
1: क्या गिन रही हो? 11, 10, 9 ओह उस दिन वो करीब 100 थे, लेकिन सू अब वो बहुत कम हो गए।
3: क्या कम हो गए?
1: पहले मुझे गिनने में मुश्किल होती थी, लेकिन हाँ अब मैं इन्हें गिन सकती हूँ, आसानी से गिन सकती हूँ। सू
2: सू ने फिर से बाहर देखा, खिड़की के सामने बस एक आईवी क्रीपर का पेड़ था जो पतझड़ की मार से बहुत बुरी हालत में था, लगभग अधमरा सा, बस कुछ पीली पत्तियां दिखाई दे रही थी। सू ने उसे दोबारा झकझोरा और पूछा,
3: जॉन्सी उस दिन क्या 100 थे जब कम हो गए हैं? तुम क्या गिन रही हो?
1: 6, 9, 6, 5, 4 ओह
3: जॉन्सी, जॉन्सी तुम्हें क्या हो गया है? मुझे डर लगने लगा है, खिड़की में तो कुछ नहीं है, तुम क्या गिन रही हो? उधर नहीं मेरी तरफ देखो,
1: ओनली 4
3: मेरी तरफ देखो।
1: सू ओनली 4 ओह अब सिर्फ 3 बचे हैं।
3: क्या 3 बचे हैं? व्हाट्स 3 डियर?
1: 3 पत्तियां।
3: पत्तियां?
1: हाँ, खिड़की के पास जो आईवी क्रीपर का पेड़ है ना सू?
3: हाँ हाँ,
1: मैं उसकी पत्तियां गिन रही हूँ। मुझे लगता है,
3: क्या लगता है?
1: यही कि बस अब 3 पत्तियां बची हैं, और जिस दिन आखिरी पत्ता गिर जाएगा ना, उस दिन
3: क्या जॉन्सी?
1: उस दिन मेरी मौत हो जाएगी सू।
3: ओह नो, ये क्या कह रही हो तुम जॉन्सी? ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारा भ्रम है।
1: नहीं, ये तय है सू कि उस दिन मेरी मौत हो जाएगी। सू
3: हाँ
1: सू, अब सिर्फ 3 पत्तियां बची हैं, ज्यादा समय नहीं है मेरे पास सू।
3: जॉन्सी
2: साथियों, सू ने उसे बहुत समझाया। उसी दिन डॉक्टर भी आ गए, डॉक्टर ने भी बहुत समझाया, सारे तर्क दिए, लेकिन जॉन्सी मानने को तैयार नहीं थी।
0: अचानक उस दिन कुछ अजीब सा हुआ। एक बूढ़ा व्यक्ति जॉन्सी को देखने आया। सभी उस बूढ़े व्यक्ति को सनकी और लगभग पागल समझते थे।
2: उस व्यक्ति का नाम था मिस्टर बेयरमैन। वो बहुत दिनों से ग्रीनिच गांव में रह रहे थे।
0: वो चित्रकार थे। बहुत बार उन्होंने चित्रकारी में असफलता देखी थी और लोगों का मजाक भी सहा था। वो घर घर घूमकर हमेशा लोगों से कहा करते थे,
4: मैं अपनी चित्रकारी से एक मास्टरपीस बनाना चाहता हूँ जो अब तक नहीं बना पाया, लेकिन बनाऊंगा जरूर।
2: लोग उसे देखते ही उससे कतराने लगते थे। लोग उस पर हंसते और कहते, देखो मास्टरपीस वाला बुढ़ा आ रहा है। जब वो जॉन्सी को देखने के लिए आए तो सू ने उन्हें बताया कि वो किस वजह से पत्ते गिन रही है।
0: इतने में जॉन्सी ने अपनी दुर्बल आवाज में फिर से गिना,
1: अब सिर्फ 2 पत्तियां ही बची हैं।
2: मिस्टर बेयरमैन ने बड़ी खामोशी से

0: सिंह को देखा और एक लंबी सांस लेने के बाद गंभीरता से कहा,
1: जोंसी, अभी मैं जा रहा हूं, लेकिन देखना देखना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं जल्दी ही तुम्हें देखने आऊंगा, मैं जल्दी ही तुम्हें देखने आऊंगा।
0: इतना कहकर तेज कदमों से मिस्टर बेयरमैन वहां से चले गए।
2: अब मात्र दो पत्तियां ही बची थी। दूसरे दिन की शाम एक पत्ता और गिर गया। सुबह हुई तो जोंसी ने देखा अब सिर्फ एक ही पत्ता बचा हुआ है। उसका दिल धक धक कर रहा था। वो सोचने लगी,
3: आखिरी पत्ता अब शायद गिरने ही वाला है। अब मेरी चंद सांसें ही बाकी हैं। आखिरी पत्ता गिरने ही वाला है, बस गिरने ही वाला है।
0: साथियों, जोंसी खिड़की की ओर देखती रही और इस तरह पूरा दिन बीत गया, पर वो आखिरी पत्ता अभी भी वहीं था। हैरत की बात तो ये कि दूसरा दिन भी बीत गया पर पत्ता वहीं का वहीं था। जोंसी खिड़की की ओर टकटकी लगाए बैठी रही और इस दौरान बर्फबारी के साथ पतझड़ के मौसम की बारिश शुरू हो गई। साए साए आंधी चलने लगी। रात भर रुक रुक कर बारिश होती या बर्फ गिरती।
2: जैसे ही सुबह हुई जोंसी ने सू से कहा,
4: सू, मेरी दोस्त।
5: हाँ जोंसी।
4: जरा वो खिड़की खोल दे, मैं देखना चाहती हूँ कि वो आखिरी पत्ता वहाँ है या नहीं। खोल जरा खिड़की सू।
0: सू की तो मानो रूह ही कांप गई थी। कांपते हुए हाथों से डरते डरते सू ने खिड़की खोली। जोंसी ने खिड़की की ओर देखा लेकिन आश्चर्य, वो पत्ता अभी भी गिरा नहीं था। सुहानी सुबह थी, मंद मंद हवा चल रही थी, आकाश मानो पूरी तरह से धुला हुआ था, चमकता हुआ सूरज निकल आया था। वो आखिरी पत्ता हवा में कांपता हुआ अभी भी वहीं का वहीं था। अचानक जोंसी को कुछ हुआ और उसने सू को बुलाया और कहने लगी,
4: सू।
5: हाँ जोंसी।
4: सू,
5: ऐसा लगने लगा है
4: कि मुझे नई जिंदगी मिलेगी। मैं नहीं मरूंगी।
5: हाँ बिल्कुल,
4: अब मैं नहीं मरूंगी सू।
5: बिल्कुल जोंसी।
4: हाँ, इसलिए ये पत्ता नहीं गिरा।
5: पत्ता?
4: हाँ, मेरी सोच अच्छी नहीं थी जो मैंने अपनी मृत्यु के बारे में सोचा। देखो ना, वो पत्ता अभी भी वही है।
5: हाँ हाँ, मैंने देखा, मैंने देखा जोंसी, मैंने देखा।
4: देखो, अब वो वहीं पर है। अभी वो नहीं गिरा सू।
5: हाँ जोंसी, वो वहीं पर है, वहीं पर है।
4: हाँ हाँ,
2: दो दिन और बीत गए, वो पत्ता वहीं का वहीं था। जोंसी अब ठीक होने लगी थी। डॉक्टर ने आकर उसे चेक किया और कहा,
1: गुड, थैंक गॉड, अब इसकी तबीयत अच्छी हो गई है, ये लड़ाई जीत जाएगी।
2: जोंसी मुस्कुराई और उसने खिड़की की ओर देखा। वो आखिरी पत्ता वही था, पर डॉक्टर के जाने के बाद

0: सू ने कहा। जॉन से कैसा महसूस कर रही हो?
1: बेहतर।
0: ये लो कॉफी पियो।
1: थैंक यू।
0: जॉन से एक बुरी खबर भी है।
1: क्या हुआ?
0: वो मिस्टर बेरमन उनकी कल अस्पताल में मौत हो गई।
1: कौन बेरमन? वही बुरे कलाकार?
0: हाँ।
1: ओह, जो मुझे उस दिन देखने आए थे?
0: हाँ वही।
1: ओह, जो कहते थे मैं मास्टरपीस बनाऊंगा, वही ना?
0: हाँ वही मिस्टर बेरमन।
1: ओह गॉड,
0: उनकी हालत दरअसल उसे बहुत खराब हो गई थी जब तुमने वो आखिरी पत्ता देखा था। जॉनसन, मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहती हूँ।
1: क्या?
0: क्या कभी तुम्हें ये ख्याल नहीं आया कि सारे पत्ते इस पतझड़ में गिर गए पर वो आखिरी पत्ता
1: क्यों नहीं गिरा?
0: हाँ,
1: क्यों नहीं गिरा? आखिर क्या हो सकता है सू?
2: जॉन्सी सोच में पड़ गई। फिर सू ने कहा,
0: जॉन्सी जिस दिन वो आखिरी पत्ता बचा था ना, उसके दूसरे दिन किसी ने मिस्टर बेरमन को हमारी ही खिड़की के पास बहुत बुरी हालत में पाया। उनके जूतों में बर्फ भरी हुई थी और उनके पेंट ब्रश और कैनवस इसी आईवी क्रीपर पेड़ के पास पड़े पाए गए थे।
1: ओह,
0: जहां वो रात भर पेंटिंग करते रहे।
1: पेंटिंग?
0: हाँ।
1: कैसी पेंटिंग?
0: जो पत्ता तुम देख रही हो वो कुछ और नहीं लेकिन मिस्टर बेरमन की पेंटिंग है, जो उन्होंने आखिरी पत्ते के गिरने के बाद उस कड़कड़ाती सर्दी वाली रात में उस पेड़ पर चिपका दी थी।
1: ओह, तो वो पेंटिंग है?
0: हाँ,
1: असली पत्ता नहीं है?
0: नहीं।
1: लेकिन सू, कितना असली लग रहा है।
0: हाँ जॉन्सी, बिल्कुल असली है ना मास्टरपीस?
1: हाँ सू, मास्टरपीस। वो कहा करते थे कि मैं कभी ना कभी मास्टरपीस बनाऊंगा और सू, उन्होंने बना दिया।
0: हाँ जॉन्सी,
1: आखिर बना दिया उन्होंने मास्टरपीस सू।
0: हाँ, उन्होंने बना दिया।
1: उन्होंने बचा दिया मुझे, उन्होंने मेरी जान बचा ली सू, बचा लिया उन्होंने मुझे, उन्होंने मरने से बचा लिया मुझे सू।
0: हाँ
1: मास्टरपीस।
0: हाँ
1: मास्टरपीस। आखिरी पत्ता, आखिरी पत्ता।
3: डबडबाई आंखों से जॉन्सी ने एक बार फिर से खिड़की के बाहर देखा। वो आखिरी पत्ता वही था जो अब मास्टरपीस बन गया था।
2: ग्रीनविच गांव के कलाकार एक एक करके आ रहे थे और उस आखिरी पत्ते को विस्मय और श्रद्धा से निहार रहे थे। जॉन्सी और सू की आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह रहे थे, मानो वे अश्रु अविरल बहकर उस बूढ़े कलाकार को श्रद्धांजलि दे रहे हो।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वो आखिर।

0: सोशल मीडिया पर कभी ऐसी सामग्री न भेजें जिससे किसी की भावना को चोट लगे। छानबीन किए बिना और सत्यता की जांच किए बिना किसी भी सूचना को शेयर न करें। सावधान रहें और जिम्मेदार नागरिक बनें। NCERT द्वारा जनहित में जारी।
1: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
5: मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज पर और प्रसार भारती का ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, हम आपको याद करा दें, आज रात 10 बजे आप सुनेंगे श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मनभावन। श्रोताओं, मेल करने के लिए हमारा ईमेल आईडी है AIRCHHATARPUR1976@gmail.com। तो ईमेल जरूर करें और हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़े रहें। मीडियम वेब पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा। इसमें आज कलाकार हैं उमा देवी। इनके साथ ढोलक पर संगत दे रहे हैं गोविंद, बैंजो पर हैं लखनलाल वंशकार और हारमोनियम पर हैं सतीश कुमार पांडे। कार्यक्रम में सबसे पहले लीजिए सुनिए उमा देवी से ये कृष्ण भजन।

0: लोकधारा कार्यक्रम जारी रहेगा इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: बदलो बदलो, आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: लोकधारा कार्यक्रम आप आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से सुन रहे हैं। इसमें आज कलाकार हैं उमा देवी, इनके साथ ढोलक पर संगत दे रहे हैं गोविंद, बैंजो पर हैं लखनलाल वंशकार और हारमोनियम पर हैं सतीश कुमार पांडे। कार्यक्रम में लीजिए इनसे सुनिए ये गारी।

0: ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर बी आर श्रीवास्तव के नेतृत्व में शुरू हुआ है एडवांस्ड AI बेस्ड रेडियोथेरेपी सेंटर। सरकारी योजनाओं के तहत निःशुल्क इलाज भी उपलब्ध है।
1: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, ग्वालियर।
2: लोकधारा कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए उमा देवी से ये बाबा साहेब पर केंद्रित लोकगीत।

0: ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर बी आर श्रीवास्तव के नेतृत्व में शुरू हुआ है एडवांस्ड AI बेस्ड रेडियोथेरेपी सेंटर। सरकारी योजनाओं के तहत निःशुल्क इलाज भी उपलब्ध है।
1: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, ग्वालियर।
2: मम्मी, ये जहाज कहाँ जा रहा है?
3: बेटा, अब तो भारत का हर कोना आसमान से जुड़ रहा है।
4: जब भारत उड़ान भरता है तो उड़ान भरते हैं सपने, जुड़ते हैं शहर, बढ़ते हैं अवसर।
3: पिछले 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सक्षम नेतृत्व में विकसित हुए हैं 160 से ज्यादा एयरपोर्ट्स। उड़ान योजना से संभव हुआ है छोटे शहरों तक हवाई संपर्क। डीजी यात्रा से सरल एवं सुगम हुई हवाई यात्रा।
4: नागर विमानन मंत्रालय, विकसित होते भारत की नई उड़ान। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा आप आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से सुन रहे हैं। इसमें आज कलाकार हैं उमा देवी, इनके साथ ढोलक पर संगत दे रहे हैं गोविंद, बेंजो पर हैं लखनलाल बंसकार, हारमोनियम पर हैं सतीश कुमार पांडे। तो लीजिए कार्यक्रम में इनसे सुनिए ये गारी।

0: श्रोता, अभी आपने सुनी उमा देवी से ये गारी। इनके साथ ढोलक पर संगत दे रहे थे गोविंद, बैंजो पर थे लखनलाल बंसकार और हारमोनियम पर थे सतीश कुमार पांडे। लोकधारा कार्यक्रम जारी रहेगा इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
2: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: अंतराल के बाद आपका एक बार पुनः स्वागत है। आप सुन रहे हैं लोकधारा कार्यक्रम। इसमें आज कलाकार हैं उमा देवी। इनके साथ ढोलक पर संगत दे रहे हैं गोविंद, बैंजो पर हैं लखनलाल बंसकार और हारमोनियम पर हैं सतीश कुमार पांडे। तो कार्यक्रम में लीजिए सुनिए उमा देवी से ये साक्षरता पर केंद्रित लोकगीत।

श्रोताओ, अभी आपने सुना उमा देवी की आवाज में ये साक्षरता पर केंद्रित लोकगीत। बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा आप आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से सुन रहे हैं। इसमें आज कलाकार हैं उमा देवी, इनके साथ ढोलक पर संगत दे रहे हैं गोविंद, बेंजो पर हैं लखनलाल बंसकार और हारमोनियम पर हैं सतीश कुमार पांडे। कार्यक्रम में लीजिए आप सुनिए उमा देवी से ये चेतावनी लोकगीत।

श्रोताओं, अभी आपने सुनी उमा देवी की आवाज में ये चेतावनी। इसी के साथ बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा अब यहीं पर संपन्न होता है। इसमें आज कलाकार थी उमा देवी, इनके साथ ढोलक पर संगत दे रहे थे गोविंद, बैंजो पर थे लखनलाल बंसकार, हारमोनियम पर थे सतीश कुमार पांडे।

श्रोताओं, हम आपको याद करा दें, आज 7:20 पर ग्रामीण महिलाओं के लिए घरनी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। इसमें महिलाएं सुनेंगी श्रोताओं के पत्रों और ईमेल पर आधारित फरमाइशी लोकगीतों का कार्यक्रम लोक मंजरी। प्रस्तुति होगी रविन्द्र कुमार प्रजापति की। एक भेंटवार्ता क्रम में सुनेंगे कार्बनिक पदार्थ का मृदा स्वास्थ्य पर प्रभाव विषय पर प्रियांशु चौबे से रविन्द्र कुमार प्रजापति की बातचीत। आज की सीख का विषय होगा वृक्षारोपण करें। श्रोताओं, रात 8 बजे हम आपको सुनवाएंगे विशेष श्रृंखला सरकार के बारे बर्स। विषय होगा आतंकवाद। ये कार्यक्रम हम भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कुछ मधुर फिल्मी गीतों का आनंद आप लेंगे रात 8:35 पर। दिल्ली केंद्र से रिले होने वाले कार्यक्रमों में रात 9:15 पर स्पॉटलाइट कार्यक्रम आप सुनेंगे। रात 9:30 पर सुनिएगा मनी टॉक कार्यक्रम और रात 9:45 पर मंथन कार्यक्रम। रात 10 बजे सुनिएगा श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन।

मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज पर, और प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। गुमशुदा व्यक्ति के संबंध में सूचना सुनिए। गुमशुदा व्यक्ति का नाम श्रीमती सुष्मिता अग्रवाल उर्फ वर्षा, पत्नी श्री धर्मेंद्र अग्रवाल, निवासी मोहल्ला जयप्रकाश नगर, थाना कोंच, जनपद जालौन, उत्तर प्रदेश। इनकी उम्र 28 वर्ष, कद 5 फुट 5 इंच के लगभग, रंगोरा। इनकी उम्र करीब 28 वर्ष है। ये बैगनी रंग की साड़ी व पैर में चप्पल पहने हुए हैं। ये दिनांक 11 अप्रैल 2026, समय लगभग 1 बजे दोपहर को, घर से बाजार जाने की कहकर निकली, फिर वापस घर नहीं पहुंची। इनके बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी होने पर मोबाइल नंबर 8887570407, 9198753894, या फिर 9454403597 पर संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर एक बार पुनः सुन लें, 8887570407 9198753894, या फिर 9454403597 पर संपर्क कर सकते हैं।

एक और सूचना सुनिए। गुमशुदा व्यक्ति का नाम श्रीमती नेहा, पत्नी सुरेश कुशवाहा, निवासी पहाड़गांव थाना कैलिया, जनपद जालौन, उत्तर प्रदेश। इनकी उम्र 28 वर्ष, कद 4 फुट 10 इंच के लगभग, रंग सांवला, ये दिनांक 19 मई 2026 दिन बुधवार को रात्रि 2 बजे के लगभग अपने घर से लापता हैं। इनके बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी होने पर मोबाइल नंबर 8756796677

छः या फिर 8299302871 पर संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर एक बार पुनः सुन लें, 8756796676 या फिर 8299302871 पर संपर्क कर सकते हैं। सूचना समाप्त हुई।

मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज़ पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 7:10 होने वाले हैं प्रादेशिक समाचार। कुछ ही समय में हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करते हैं।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
1: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
4: PLI है ना?
5: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा, और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
6: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में आज प्रदेश के विकास और जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कल नशा मुक्त भारत सप्ताह का वर्चुअल माध्यम से करेंगे उद्घाटन। मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से प्रारंभ होगा और प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के 18 से 19 जून के बीच प्रवेश करने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विकास और जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य कुमार कश्यप ने बताया कि प्रदेश के बुनियादी ढांचे और जन कल्याण को बड़ी रफ्तार देते हुए कुल 24,200 करोड़ रूपये के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इंदौर मेट्रो रेल परियोजना के लिए अतिरिक्त वित्त पोषण सहित कुल 19,472 करोड़ 29 लाख रूपये का पुनरीक्षित बजट स्वीकृत किया गया।
1: इंदौर की मेट्रो जिसकी लागत 2017 में 7,500 करोड़ का आकलन किया गया था, उसका पुनर्निरीक्षण अनुमान व कुछ क्षेत्रों में मेट्रो का अलाइनमेंट बदला गया, कहीं पर उसको अंडरग्राउंड भी किया गया, तो अब वह 12,889 करोड़, 12,900 के करीब उसकी लागत हो चुकी है। तो यह अतिरिक्त 5,388 करोड़ की लागत की स्वीकृति दी गई और अब यह इंदौर की मेट्रो 31 किलोमीटर की करीब 2030-31 तक पूर्ण रूप से वहां पर परिचालन

0: चलन में आ जाएगी।
1: मध्य परिषद ने ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए रीवा, देवास और गुना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को आउटसोर्स मॉडल पर चलाने का पायलट प्रोजेक्ट भी मंजूर किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 18 से 22 जून तक मध्य प्रदेश के प्रवास पर रहेंगी। इस दौरान वे इंदौर, बैतूल, ओमकारेश्वर, जबलपुर, ग्वालियर और कुनो अभ्यारण्य जाएंगी। वे 20 जून को शाम करीब 6 बजे जबलपुर पहुंचेंगी। इस दौरान वे दो प्रमुख कार्यक्रमों में शामिल होंगे। श्रीमती मुर्मू 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर शहर के गैरिसन ग्राउंड में आयोजित मुख्य योग कार्यक्रम में शामिल होंगी। केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार कल नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत नशा मुक्त भारत सप्ताह का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। इस पहल का उद्देश्य नागरिकों की भागीदारी को मजबूत करना, स्वयं सेवकों की सहभागिता बढ़ाना और देश भर में नशाखोरी के खिलाफ जागरूकता फैलाना है। कार्यक्रम के दौरान डॉ. वीरेंद्र कुमार नशा मुक्त मित्र के लिए पर्सनल डैशबोर्ड और एनएमबीए पर आधारित एक लघु फिल्म सहित कई प्रमुख पहलों का भी अनावरण करेंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने कहा कि इस अभियान के दौरान देश भर में जागरूकता और सामुदायिक जन सहभागिता से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। इनमें सामूहिक प्रतिज्ञा अभियान, जागरूकता रैलियां, साइकिल रैलियां, युवा नेतृत्व वाले अभियान, पोस्टर निर्माण, निबंध प्रतियोगिताएं, वेबिनार, विशेषज्ञों के साथ संवाद और नुक्कड़ नाटक शामिल है। प्रदेश के सभी शासकीय विद्यालयों और सांदीपनी विद्यालयों में आज से 30 जून तक स्कूल चले अभियान के दूसरे चरण के अंतर्गत शाला प्रारंभोत्सव आयोजित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत प्री प्राइमरी से 8वीं तक के स्कूलों में बाल सभा का आयोजन होगा। इसके साथ ही शाला में शत प्रतिशत नामांकन, पुस्तक वितरण, शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार, क्रियाशील बालिका शौचालयों की उपलब्धता, पेयजल की उपलब्धता, अभिभावकों का शाला से जुड़ाव जैसे विषयों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि नीट राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है, इसके लिए सभी तैयारियां समय से पहले पूरी कर ली जाएं। आज मंत्रालय में नीट परीक्षा की तैयारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि परीक्षा आयोजन में किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की कमी या त्रुटि न रहे। परीक्षा कराने में संलग्न सभी अधिकारी कर्मचारी पूरी मुस्तैदी से अपने कर्तव्यों का पालन करें। यह परीक्षा प्रदेश के 30 जिलों में 283 परीक्षा केन्द्रों में सम्पन्न कराई जाएगी। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से प्रारंभ होगा। विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार ये सत्र 20 जुलाई से 24 जुलाई तक आयोजित किया जाएगा। 5 दिवसीय सत्र के दौरान सरकार विभिन्न विभागों से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों, नीतिगत निर्णयों और विकास कार्यों से संबंधित मुद्दों को सदन के पटल पर रख सकती है। वहीं विपक्ष भी प्रदेश में कानून व्यवस्था, किसानों, युवाओं, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जनहित के मुद्दों को कर सरकार को घेरने की तैयारी में रणनीति तैयार करेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित कृषि भवन में साप्ताहिक कृषि समीक्षा बैठक में खरीफ 2026 के लिए देशव्यापी तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में अल नीनो की संभावित स्थिति पर चर्चा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन जिलों में कम बारिश या वर्षा में असमानता की आशंका है वहां पहले से पूरी तैयारी की जाए ताकि किसी भी मौसमी चुनौती की स्थिति में किसानों को तुरंत विकल्प सलाह और सहायता उपलब्ध कराई जा सके। खरीफ 2026 के लिए फसलवार लक्ष्य, बुआई की प्रगति और राज्यवार तैयारियों के समीक्षा करते हुए कपास उत्पादन बढ़ाने पर विशेष चर्चा की गई। साथ ही दलहन आत्मनिर्भरता मिशन पर भी विस्तृत विचार विमर्श हुआ। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस दौरान सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण तथा सशक्तिकरण के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की हैं। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम आतंकवाद के खिलाफ सरकार की शून्य सहिष्णुता नीति के बारे में जानकारी दे रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
0: पिछले वर्ष 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट किया कि यदि आतंकवाद किसी देश की नीति का हिस्सा बनेगा तो उसका सीधा

0: और सशक्त जवाब दिया जाएगा। वहीं 9 और 10 मई को भारत ने इतिहास रचते हुए परमाणु हथियार युक्त किसी देश के 11 एयरबेसों पर एक ही अभियान में प्रहार करने वाला पहला राष्ट्र बनने का गौरव प्राप्त किया। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के 18 से 19 जून के बीच प्रवेश करने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग का मानना है कि मॉनसून के आने के बाद प्रदेश में बारिश की स्थिति में सुधार होगा। फिलहाल जून माह में प्रदेश में सामान्य से कम वर्षा दर्ज की गई है। प्री मॉनसूनी गतिविधियों के चलते आज भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, जबलपुर, सागर, शहडोल संभागों के 30 से अधिक जिलों में आंधी और बारिश की संभावना जताई गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खजुराहो लोकसभा सांसद और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने आज पन्ना जिले के पवई विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। झाबुआ में आज कलेक्टर ने जनसुनवाई से पहले राणापुर में ट्रेंचिंग ग्राउंड और सब्जी मंडी का निरीक्षण किया। राजगढ़ जनपद पंचायत नरसिंहगढ़ के अंतर्गत प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत कुकिंग कॉम्पिटिशन आयोजित किया गया। आगरमालवा में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना और ई श्रम कार्ड योजना के प्रचार प्रसार हेतु विशेष शिविर आयोजित किए गए। देवास जिले में 15 अगस्त तक की अवधि में मत्स्या खेत करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। नर्मदापुरम जिले को मखाना उत्पादन के साथ साथ उसकी प्रोसेसिंग का केन्द्र बनाने की तैयारी शुरू की गई है। मंदसौर में जिला स्तरीय जन सुनवाई में कलेक्टर ने 120 आवेदकों की समस्याएं सुनकर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पश्चिम मध्य रेलवे के तीनों मंडलों में जबलपुर रेल मंडल ने ऑरिजिनेटिंग रेवेन्यू अर्जित करने में सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है। सीहोर में कल 17 जून को राजपूत संगठनों द्वारा महाराणा प्रताप जयंती पर शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। दीजिए इजाजत, नमस्कार।

मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलो हर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रस्तुत है घरनी कार्यक्रम।

घर नहीं सुनने वाली सभी बहनन खा राधा बहन की दो हाथ जोड़ के राम राम। देखो बहनों, गर्मी तो खूब ही पड़ रही है। अब देखो आज 16 जून है और एक दो दिन दैया तो बूंदा बांदी सी हो गई तनक सी, पे इतने में होत का है और भवक हो जात है। ऐसे में आदमियन से लेके पेड़ पौधा ढोर बछेरू सभी कोल तो व्याकुल हो रहो। अब का है पे अपने हाथ में तो कछु है नहीं है। अपन तो इतना ही कर सकत कि अपने परिवार को अच्छे से ध्यान रखो, ताजो गरम पौष्टिक खाना बनाओ और समय से खवाओ। बासो कूसो कोखा बिल्कुल भी ना खवाओ, उतना ही बनाओ जितनो जरूरत है। यानी अपने परिवार के सभी लोगों को अच्छे से ध्यान रखो, ख्याल रखो और अच्छो ताजो बढ़िया खाना बनाओ खवाओ, समय से सुवाओ और समय से जागो। अब ऐसे में सोचने वाली बात जा है कि जो को भी पैसा रुपया कमावे के लाने बाहर रह रहो है, माने अपने परिवार से दूर विदेशन में, उनको का हाल होत हुए। अब आप सोच रही हो कि बहन जिक्का बतखाव लेके बैठ गई, तो आप खा बता दें कि आज है

0: अंतर्राष्ट्रीय परिवारिक प्रेषण दिवस माने हर साल 16 जून का विदेशन में काम करने वाले प्रवासियन के बलिदान समर्पण और उनके द्वारा अपने देश में अपने परिवार जनन के लाने भेजे वाले रुपया पैसा के आर्थिक महत्व का सम्मानित करवे के लाने जो दिन मनाओ जाते हैं, जिसे प्रवासियन के द्वारा भेजी गई मदद से उनके परिवार के जीवन स्तर सुधरे, गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण विकास में उनके योगदान का मान्यता मिले। तभी तो कहा थे मेहनत की कमाई और परिवार की भलाई, है ना। इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र को एक विशेष एजेंसी इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट IFAD ने 2008 में करी थी, जिसे शिक्षा, स्वास्थ्य और बेहतर जीवन यापन में सहायता मिले। परिवार की खुशियों का आधार प्रेषण से मिलता प्यार अपार, प्रेषण का सम्मान करें, परिवार का उत्थान करें। तो निश्चित रूप से अपन उन सभी भारतीय भैया बहन जो विदेशन से रह के पैसा भेजा थे अपने परिवार की खुशहाली के लाने, उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और इन्हीं बदकावन का इतने पर रोक के लिए थे छोटो सो अल्प विराम और मिलते ही अल्प विराम के बाद।
1: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और एप्लासी एनीमिया जैसे रोगों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के द्वारा इलाज उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से निशुल्क इलाज की सुविधा भी है।
2: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स।
3: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की GDP से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
4: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: देखो पंचो, अपनी किसानी खेती अच्छी होए इके लाने अपन से जितनों बन पड़त है सभी कछु करत है, जैसे बेरा पे निराई गुड़ाई सिंचाई बुआई, अच्छे से बीज देते हैं और अच्छे बीज देते हैं, अच्छी खाद कीटनाशक को प्रयोग भी बहुत अच्छे से करत है, जिसे अपनी फसल बढ़िया होए और अपन का ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले और उसमें कीट पतंगा न लगे, रोग राई न लगे, जिसे जौन अपन का रकम मिले वह अच्छी मिले। पे जौन सब जरूरी चीज है तो वे तो अपन करते हैं, उखा हम कई बार भूल जाते हैं माने अपनी माटी की जांच करवाओ। जा बात हम कई बार भूल जाते हैं कि अपनी माटी कौन सी फसल के लाने बढ़िया है या जौन फसल अपन के लाने बो चाहिए अपन खा, उके लाने माटी में कौन से तत्व की कमी है उकी जांच करवाओ चाहिए। जी के लाने भारत सरकार ने पहल करी है और सभी किसान भाइयों के लाने बनवाओ है मृदा स्वास्थ्य कार्ड, जिसे किसानन खां उनकी माटी में पोषक तत्व की सटीक स्थिति की रिपोर्ट दई जाते। तभी तो कहा थे कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड अपनाएं, खेतों की उपज बढ़ाएं, स्वस्थ मृदा स्वस्थ फसल, किसान का यही है संबल। जो कार्ड फसल की पैदावार और खेती की लागत कम करवे के लाने उर्वरकन की सटीक मात्रा और माटी की उपचार की सलाह देते हैं। अब आप और पूछो कि जो कार्ड बनत कैसे है, तो आपका बता दें कि ग्राम स्तर पर कार्यकर्ता और कृषि अधिकारी खेत की माटी के नमूना इकट्ठे करत हैं और फिर प्रयोगशाला में नमूना की विश्लेषण होते हैं और फिर परिणाम और अनुशंसा का अपलोड करो जाते हैं और एक कार्ड के रूप में तैयार करो जाते हैं और फिर जी कार्ड राज्य के कृषि विभाग द्वारा मुद्रित करके स्थानीय किसानन खा दे जाते हैं। जो कार्ड नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, जस्ता, लोहा, pH और कार्बन सहित 12 जरूरी मापदंडन को परीक्षण करत है और फसल और क्षेत्र के अनुसार उर्वरक संबंधी उचित सलाह देते हैं। जो कार्ड हर 3 साल में जारी होते हैं। कहत नहीं कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड है वरदान, बढ़ाए फसल और किसान का मान। मिट्टी स्वस्थ तो फसल शानदार, मृदा स्वास्थ्य कार्ड है इसका आधार। सही पोषण सही उपचार मृदा स्वास्थ्य कार्ड का है ये उपहार। तो इन्हीं बदखावन के संगे लिए थी छोटो सो अल्प विराम और मिला था ही अल्प विराम के बाद।
5: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
4: हमारा छोटा किसान

0: हजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और एप्लासी एनीमिया जैसे रोगों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के द्वारा इलाज उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से निशुल्क इलाज की सुविधा भी है।
3: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स।
4: देखो बहनों, बदखाव तो चलता ही रहे हैं और जैसे अभी अपन ने करी है मृदा स्वास्थ्य कार्ड की चर्चा, तो यही बदखाव उनका थोड़ी सो और आगे बढ़ाओ थे। और सुना थे जब भेंट वार्ता कार्बनिक पदार्थ का मृदा स्वास्थ्य पर प्रभाव विषय पे, प्रियांशु चौबे से बदखाव कर रहे हैं रविंद्र कुमार प्रजापति जी। सुलियो सुनो।
5: हमारे ग्राम सभा सुनने वाले सभी श्रोताओं को, हमारे पंच भाइयों को, हमारे किसान भाइयों को, बहनों को बहुत बहुत नमस्कार। और हमारे किसान भाइयों को मालूम है कि हम उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर बीच बीच में लेकर आते हैं और इन विषयों पर जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में आते हैं कृषि विशेषज्ञ, कृषि वैज्ञानिक। तो ऐसा ही जो आज हमने विषय रखा है, कार्बनिक पदार्थ का मृदा स्वास्थ्य पर प्रभाव, इस विषय पर जानकारी हमारे आज किसान भाई जानेंगे। और इसके लिए हमने जो विषय विशेषज्ञ अपने स्टूडियो में आमंत्रित किए हैं, प्रियांशु चौबे मैडम जी हैं, जो पीएचडी स्कॉलर हैं मृदा विज्ञान में, कृषि विशेषज्ञ। डॉक्टर मैडम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आकाशवाणी छतरपुर के स्टूडियो में।
6: धन्यवाद सर
5: जी। जैसा कि आज का हमारा विषय है कार्बनिक पदार्थ का मृदा स्वास्थ्य पर प्रभाव, तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि कार्बनिक पदार्थ मिट्टी की उर्वरकता कैसे बढ़ाते हैं।
6: जैसे कि सर, हमारे सभी किसान भाई जानते हैं कि जो कार्बनिक पदार्थ है हमारी मिट्टी के लिए बहुत अत्यंत आवश्यक, महत्वपूर्ण एक यूनिट है। और जो हमारे कार्बनिक पदार्थ मिट्टी में उपलब्ध होते हैं वो हमारी जो खेत होता है या फिर हमारे जो सरफेस है अर्थ की ऊपर, पृथ्वी के ऊपर में जितने भी हमारे वनस्पति हैं उनके जो अवशेष होते हैं या फिर जो फसलें जो हम पहले उगा चुके होते हैं अपने खेत में, उसके जो अवशेष बनते हैं, बचते हैं, जैसे कि पौधे की पत्तियां हैं, सूखी पत्तियां हैं, उसके जो स्टेम्स बचते हैं यानी कि जो उसकी डंठले बच जाती हैं, या फिर कुछ ऐसे हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं, उन सब के विघटित होने के बाद में जो पदार्थ बनता है हमारी मृदा में वो कार्बनिक पदार्थ होता है। अब इसमें जो हमारे जो भौतिक और रासायनिक और जो इसमें बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस के द्वारा जो है कार्बनिक पदार्थ विघटित होता है। और इसमें बहुत सारे हमारे जितने महत्वपूर्ण हमारे जो पोषक तत्व हैं, जैसे हम मृदा में पढ़ते हैं या फिर हमें अभी जितना ज्ञान है इस बारे में कि जो मृदा में जो हमारे महत्वपूर्ण जो मूलभूत पोषक तत्व हैं वो 17 हैं, और वो 17 पोषक तत्व इन कार्बनिक पदार्थों से अभी तक जितनी भी हमने स्टडी की है उसमें हमने ये माना है कि ये उससे हमें पूर्णता प्राप्त होते हैं। जैसे हमारे जो मूल रूप में जो हमारे पोषक तत्व हैं, जैसे नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, और जो हम द्वितीय हम अपने जो पोषक तत्व मानते हैं जैसे कैल्शियम है, सल्फर है, मैग्नीशियम है, और जो हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट के नाम से हम जैसे जानते हैं आयरन है, कॉपर है, जिंक है। तो ये जितने भी पोषक तत्व हैं, जो 17 पोषक तत्व हैं जिसको हमने बांटा है प्राथमिक रूप से और द्वितीय रूप से और माइक्रोन्यूट्रिएंट के टाइप में हमने इनको जो बांटा है वो पूर्णता हमें कार्बनिक पदार्थ से उपलब्ध होते हैं।
5: जी।
6: तो मैं ये अपने किसान भाइयों को ये बताना चाहूंगी कि कार्बनिक पदार्थ का हमारे मृदा स्वास्थ्य में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। क्योंकि आजकल हम बहुत ज्यादा आधुनिक युग में खेती करते हैं और हम फर्टिलाइजर का बहुत ज्यादा महत्व अभी समझने लगे हैं। फर्टिलाइजर के थ्रू में हम यूरिया यूज करने लगे हैं, डीएपी यूज करने लगे हैं, जो भी और हमारे सिंथेटिक फर्टिलाइजर है। लेकिन यदि हम अपने हम प्रणालिक खेती की तरफ में जाएं और हम उसको समझने की कोशिश करें तो धीरे धीरे अब हमारे जो मृदा है उसमें जो कार्बनिक पदार्थ का जो परसेंटेज है वो कम भी होते जा रहा है, स्तर कम होते जा रहा है। इसका कारण ये अभी तक हम जो समझ पा रहे हैं स्टडी में वो हम मान रहे हैं कि जितनी ज्यादा हम फर्टिलाइजर का यूज करेंगे उतना ज्यादा हमारा कार्बनिक पदार्थ हमारा कम होते जा रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, जो मृदा स्वास्थ्य डिस्टर्ब हो रहा है। जैसे कि अब जो मृदा में कार्बनिक पदार्थ एक तरीके के जो सूक्ष्म जीवों की जो गतिविधि है उसको वो बढ़ावा देता है, और वो सूक्ष्म जीवों की जो गतिविधि है वो पूर्ण रूप से मृदा के अंदर

0: जैसे हम पृथ्वी में ऊपर की तरफ हमारा एक एनवायरनमेंट होता है, एक पर्यावरण होता है, वैसे मृदा का भी एक अपना एनवायरनमेंट पर्यावरण होता है, उसको वो डिस्टर्ब कर रहा है, उसको
1: ठीक
0: वो आगे बढ़ने से उसके जो स्वास्थ्य है उसको वो पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश कर रहा है। तो मैं ये किसान भाइयों को बताना चाहूंगी कि आप कार्बनिक पदार्थ की तरफ में, उसको उसके बढ़ाव की तरफ में आप ध्यान दें, जो नेचुरल खेती है उसकी तरफ में आप जाएं, जिससे मृदा स्वास्थ्य भी आपका बना रहेगा। दूसरी तरफ हम जो ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात कर रहे हैं, मैन्योर की बात करते हैं, और साथ में हम वर्मी कंपोस्ट की बात जो करते हैं, हम हरी खाद की जो बात करते हैं, उसकी तरफ में किसान भाई अपना रुख मोड़े, ताकि जो कार्बनिक पदार्थ है जो मृदा में, उसका जो स्तर है वो बढ़ता जाए, और हमारी जो मृदा में जितने भी सूक्ष्म जीव है उनकी गतिविधि बढ़ती जाए, साथ में जो हमारे 17 पोषक तत्व हैं
1: जी
0: उसकी बढ़ोतरी होती जाए।
1: बिल्कुल, कार्बनिक पदार्थ मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाते हैं, जैसा कि मैडम ने पूरी तरह से समझाया हमारे किसान भाइयों को। तो हमारे किसान भाई ये भी जानना चाहते होंगे कि कार्बनिक पदार्थ जो हैं वो मिट्टी की जो जलधारण क्षमता है, क्या वो भी बढ़ाते हैं?
0: जी, मैं बिल्कुल इस बारे में भी चर्चा करना चाहूंगी सर। ये बात सही है, कार्बनिक पदार्थ आपकी मिट्टी में जल धारण क्षमता को बढ़ाते हैं और ये महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि कार्बनिक पदार्थ जो हैं वो सूक्ष्म जीवों की गतिविधि को बढ़ाते हैं। जैसे ये सूक्ष्म जीवों की गतिविधि आपके मृदा में बढ़ती है, चूंकि हमारी जो मृदा है उसमें छिद्र पाए जाते हैं, छोटे
1: बिल्कुल
0: छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जो कि हम साइंटिफिक रूप से यदि इसको समझे तो कुछ छिद्र बहुत छोटे होते हैं और कुछ छिद्र जो होते हैं वो थोड़े बड़े साइज के होते हैं। अब ये जो छिद्र होते हैं, क्योंकि मृदा का जो एक कण होता है वो कण एक दूसरे कण से चिपका होता है, एक तरीके से हम जैसे बोल सकते हैं कि गम का, ये जो कार्बनिक पदार्थ है गम का एक गोंद की तरह का काम करता है, तो ये जो गोंद होता है ये गम की तरह जो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स आप मिट्टी के जो पार्टिकल्स हैं वो चिपके रहते हैं, और ये तो ये क्या करता है कि जैसे माइक्रोबल एक्टिविटी बढ़ती है यानी कि सूक्ष्म जीवों की गतिविधि बढ़ती है, तो वैसे ही जो मृदा होते हैं, मृदा में पोरोसिटी अच्छी होती है यानी कि सूक्ष्म जो छिद्र होते हैं वो अच्छे होते हैं, खुलते हैं, तो इसमें जो हवा का जो आदान प्रदान होता है उसमें बढ़ोतरी होती है, और जब हवा का आदान प्रदान होता है तो उसमें जो जल धारण क्षमता होती है उसकी भी बढ़ोतरी होती है, जिससे कि जो पौधे होते हैं उनको पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध हो पाता है, और ये जो जब मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में जब पानी उपलब्ध होता है तो जो सूखे जैसी जो स्थिति जब भी पैदा होती है उसमें पौधों को बहुत लाभ मिलता है।
1: जी, जो कार्बनिक पदार्थ है वो मिट्टी की संरचना में भी सुधार करते हैं, तो कैसे क्या सुधार करते हैं?
0: जी हाँ, कार्बनिक पदार्थ जो है वो मिट्टी की संरचना में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अब जैसे मैंने आपसे पहले ही बताया कि ये बेसिक यूनिट है हमारी मृदा का, जैसे कार्बनिक पदार्थ किसी मृदा में बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है तो उसकी संरचना बहुत अच्छी होती है। संरचना कैसे बहुत अच्छी होती है, तो इसके बारे में हम समझते हैं कि जो मृदा जितनी दानेदार होगी, कणाकार होगी, उतनी ही अच्छी मृदा में जो गैसों का आदान प्रदान है, हवा का आदान प्रदान है, वो उतना ही अच्छा होगा, और उतना ही अच्छा, जैसे मैंने अभी आपसे इस बारे में चर्चा की, उसमें जन धारण क्षमता अच्छी होगी, जो उसमें सूक्ष्म जीवों की जो मात्रा है, बढ़ोतरी है, उनकी गतिविधि है वो बहुत अच्छी होगी। जब ये हमारे तीन चार जो हमारे अंक हैं वो अच्छे होंगे, जैसे कि हम यदि इसमें पूरी तरह से समझने की कोशिश करें तो मिट्टी के अंदर में जो रासायनिक रासायनिक गतिविधि होती है सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही होती है, रासायनिक गतिविधि बहुत अच्छी होती है, तो उसकी जो भौतिक संरचना है वो अपने आप बहुत अच्छी होने लग जाती है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कार्बनिक पदार्थ सूक्ष्म जीवों की गतिविधियों को जैसे जैसे बढ़ाएगा, अच्छा करेगा, विघटन बहुत अच्छा होगा कार्बनिक पदार्थ का, वैसे जो हमारी मृदा है वो कणाकार होगी, वो दानेदार होगी, वो उसकी जो उर्वरता है वो बढ़ती जाएगी और वो पौधों को उचित मात्रा में पोषक तत्व प्रदान करेंगे।
1: तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कार्बनिक पदार्थ सूक्ष्म जीवों की गति भी बढ़ाता है।
0: जी
1: हमारा अगला सवाल था कि कार्बनिक पदार्थ पोषक तत्वों के संरक्षण में कैसे सहायता और कैसे मदद करता है?
0: पोषक तत्वों में हमने अभी जैसे चर्चा की इस बारे में कि हमारी मृदा में हमने 17 टाइप के हमने पोषक तत्वों को हमने निश्चित किया है साइंटिफिक रूप से कि ये 17 टाइप के जो हमारे प्राथमिक एवं माइक्रो जितने हमारे न्यूट्रेंट है वो बहुत एसेंशियल है हमारे पौधों की उपज के लिए, उनकी बढ़ोतरी के लिए, अच्छे फसल लेने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्योंकि जो सूक्ष्म जीव होते हैं उसमें बहुत

0: सारे हमारे लाभकारी जीवाणु होते हैं, लाभकारी कवक होते हैं, ऐसे बहुत सारे सूक्ष्म जीव हैं जो हमारे पौधों के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी हैं। अब जैसे कार्बनिक पदार्थ के विघटन में यही सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु हुए, कवक हुए, अन्य सूक्ष्म जीव हुए, वो भोजन का एक तरीके का स्रोत है। और
1: बिल्कुल
0: वो भोजन का स्रोत है तो वो जैसे भोजन अपना प्राप्त करते हैं और उसको हम एक प्रक्रिया का नाम दे के रखे हैं विघटन होना है, तो वो जो विघटन की जब प्रक्रिया होती है, तो मैंने आपसे अभी चर्चा की थी कि रासायनिक बहुत

0: रखते हैं और उसको हम एक प्रक्रिया का नाम दे के रखे हैं, विघटन होना है। तो वो जो विघटन की जब प्रक्रिया होती है, तो मैंने आपसे अभी चर्चा की थी कि रासायनिक बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं उस समय में मृदा में जो हैं वो स्त्रावित होते हैं, और वही स्त्रावित पदार्थ जो होते हैं वो हमारे पौधों के लिए लाभकारी होते हैं। उसी समय में बहुत सारी ऐसी एंजाइमिक क्रियाएं होती हैं, प्रोटीन का, ऐसे बहुत सारे कार्बोऑक्सिलिक गुणों का स्त्रावण होता है, जिसकी वजह से हमारे पौधों के लिए वो एक बायोलॉजिकल फैक्टर का काम करते हैं, जैविक फैक्टर का काम करते हैं, उनके जो बढ़ोतरी के लिए काम करते हैं। यानी मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि सूक्ष्म जीव का होना, पौधा जब एक हम मानते हैं कि जब वो बच्चा रूपी रूप में होता है, या फिर हम उससे हम बोल लेते हैं जब वो अंकुरण करने की क्षमता उसमें जब आती है, तो उस समय से उसमें बहुत सारे ऐसे एसेंशियल न्यूट्रेंट की जरूरत होती है, जैसे कि पोटेशियम की, फॉस्फोरस की उस समय की जरूरत होती है। तो उसकी जो सप्लाई है, उसकी जो जरूरत है, वो सूक्ष्म जीवों की गतिविधि से ही प्राप्त होता है। और जैसे जैसे पौधा जब बच्चा रूपेण बढ़ते जाता है, वो अपने वयस्क उसमें जाने के टाइम पे, वो उस समय में उसको और भी ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट की जरूरत पड़ती है, जिंक की जरूरत पड़ती है, आयरन की जरूरत पड़ती है। तो उसकी जो जरूरत है, वो उसकी जो सप्लाई है, वो उसको उस समय ये जितनी भी माइक्रोबल एक्टिविटी होती है और कार्बनिक पदार्थ का जितना विघटन होता है, उस समय वो पूर्ति उसकी पूर्ण होती है।
1: कार्बनिक पदार्थ का मृदा स्वास्थ्य पर प्रभाव आज का ही हमारा विषय था। अंत में हमारे किसान भाइयों के लिए कार्बनिक पदार्थ के महत्व के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या सलाह देना चाहेंगे?
0: मैं अपने किसान भाइयों को कार्बनिक पदार्थ के महत्व में ये उनको सलाह देना चाहूंगी कि जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, वैसे हमारे पास में खाद्यान्न हमारे पास में है, भरपूर मात्रा में है, लेकिन एक जो सुरक्षित और पोषण से भरपूर जो खाद्यान्न है, उसकी अभी हमारे पास में, मुझे ऐसा लगता है कि अभी कमी है, जो हमें मिलनी चाहिए। यानी एक क्वालिटी वाला जो हमारे पास में भोजन है, उसकी मुझे लगता है कमी है, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है। अब वो खाद्यान्न की जो पूर्ति है, क्वालिटी वाले खाद्यान्न की जो पूर्ति है, वो अच्छे मृदा से होगी, स्वस्थ मृदा से होगी, स्वस्थ मिट्टी से होगी। तो उस मिट्टी को स्वस्थ रखने के लिए, उसको पोषण पूर्ण रखने के लिए, मैं अपने किसान भाइयों से कहना चाहूंगी कि वो गोबर की खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करे, जिससे कि कार्बनिक पदार्थ अच्छे से अच्छा हमारी मृदा में अप्लाई हो। वर्मी कंपोस्ट का उचित मात्रा में उपयोग करें। हमारे जो खेतों का जो अवशेष बसता है, जिसे हम क्रॉप रेसिड्यूज बोलते हैं, उसको विघटन कर, डिकम्पोज कर, उसको अपने खेत में यूज करें, और उचित मात्रा में गोबर की, वर्मी कंपोस्ट की, और भी जो ग्रीन मैन्योर है, इनका यूज करें, ताकि हमारा कार्बनिक पदार्थ उचित मात्रा में मृदा में सप्लाई हो पाए।
1: हमारे बीच में थी महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय से पधारे हुई प्रियांशु चौबे मैडम जी, जो हमें जानकारी दे रही थी कार्बनिक पदार्थ का मृदा स्वास्थ्य पर प्रभाव। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे किसान भाइयों के साथ साझा की कि कार्बनिक पदार्थ आखिर है क्या और इसका क्या महत्व है हमारी मृदा पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्टूडियो में आने के लिए।
0: थैंक यू।
2: हेलो, देखो बहनों, अपन अबे सुन रहे थे ऐसी नौनी भेंट वार्ता, कार्बनिक पदार्थ का मृदा स्वास्थ्य पर प्रभाव विषय पे प्रियांशु चौबे जी से बतकाव कर रहे थे रविंद्र कुमार प्रजापति जी। अब देखो बहनों, अपन अपने घर परिवार की लाने काने करत, मोड़ा मोड़ियन खा अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाऊत हैं, अच्छे से अच्छे संस्कार देते हैं, पाई पाई जोर के बढ़िया घर बनाऊत हैं, जिसे अपने मोड़ा मोड़ियन खा कोनो तरह की परेशानी न हुए। जो कभो नहीं सोचत कि हम तो ऐसे में राहत रहे तो अब हमें का करने, की किलाने जोड़ने, बल्कि जो सोचत कि हमने जो कछु नहीं कर पाओ या जो कछु हमने सहो, वो हमें मोड़ा मोड़ियन खा ना झेलने पड़े, ना झेलने पड़े, और ई के बाद भी तमाम परिवारन में देखवे में मिलत है कि मोड़ा मोड़ी गलत संगत में पड़ के अपनी संगत खराब कर लेते हैं और नशा पत्ती करन लगत है। तो जो बहुत ही गलत है, चाहे अपने पास कितनों जमीन जागा होए, कितनों धंधा पानी होए, चाहे कितनों अच्छे रुपए या पैसा होए, नशा एक ऐसी आंधी है जो सबई कछुखा उड़ा के ले जाते है। नशा माने कोनो भी शौक अति में ना करो चाहिए, तभी तो कहते हैं कि नशा नाश की जड़ होते है। तो सबई भैया बहनों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि नशा ना करो, नशा ना करन दियो। आस पड़ोस में कोनो भी नशा करत दिखाए तो तुरंत ही मताई बाप खबर दियो और उन्हें समझाओ कि अपन बड़न कि अपन बड़न से भी अपन खां जो कहबो है।

कि मोना मोड़ियन के सामने तमाम ऐसी चीजें हैं जो अपन गलत कर दिए थे और चीखा देख के अपने मोड़ा मोड़ी बिगड़ा थे। कात नहीं है, नशा नाश की जड़ है, जीवन को करता बर्बाद, स्वास्थ्य धन और मान सम्मान सबका कर देता विनाश। नशे से सदा दूर रहें, स्वस्थ रहें और खुशहाल रहें। नशा छोड़ो, जीवन जोड़ो, नशा त्यागो, स्वस्थ समाज बनाओ। तो पंचो, आज है देखो मंगलवार और अपनी बहनन का इंतजार रहा थे उनकी फरमाइशी कार्यक्रम, श्रोताओं के पत्रन और ईमेल पे आधारित फरमाइशी लोकगीतन को कार्यक्रम लोक मंजरी को। तो ज्यादा समय नहीं गमाऊ भाई, अपन उठाऊ थे जी कछु चिट्ठिया। पहली चिट्ठिया अपने पास आई है लक्ष्मीपुरा सागर से, भेजने वाले भैया बहन है अनुपमा, अनूप, मेघना, अनुराग, सुखदा, अमृषा, अनुज, आयुष, अविक और समस्त सुबेदार परिवार। जब दूसरी चिट्ठी अपने पास आई है राम मंदिर दमोह से, भेजने वाले भैया बहन है निर्मला, सोनकर, पद्माकर, मणिक, प्रवीण, कीर्ति, प्रकाश, शुभांगी, वैभव, राधिका, वैभव, प्रियंका, अबीर, कौस्तुभ, कौशिकी और समस्त सोनवलकर परिवार। एक और चिट्ठी अपने पास आई है गंज बसौदा से, भेजने वाले भैया बहन हैं अमृता देव, अरुण देव, आकांक्षा और अक्षय की। एक और चिट्ठी अपने पास आई है पंचो बिलासपुर से, भेजने वाले भैया बहन हैं हेमंत, मंजरी, नितिन, जागृति और आर्या खरणवीस की। और जय एक और चिट्ठी अपने पास आई है भोपाल से, शिशिर, माधुरी, डॉक्टर अर्पित और अभय खरडेन वीस की। और जय एक और चिट्ठी अपने पास आई है मॉडल बेसिक स्कूल ग्रुप से, मंजू शुक्ला, मंजू सिंह, नीना राठी, कामनी, नीलमा खरे, किरण निगम, निधि खरे, विदुषी गुप्ता, मधु कौशल और मीना खरे की। और इन सब जनन की पसंद पे सुनत है जो दादरा।

अब इन्हीं बातों के संगे उठाऊ थे कछु और चिट्ठियां जो अपने पास आई हैं। जब पहली चिट्ठिया अबार माता धाम बस स्टैंड रामटोरिया गुआरा जिला छतरपुर बुंदेलखंड से भेजने वाले भैया बहन हैं बहादुर चक्रवर्ती, नंदकिशोर चक्रवर्ती, भारती, आरती, काजल, करण, करिश्मा, गोलू, नीरज, मोहिनी, खुशबू, शिवांगी, श्रीमती सीला, भावी और दसोदा बाकी। तो इन्हीं बतकाउन के संगे उठाऊ थे जी कछु ईमेल जो अपने पास आए हैं। तो जो पहलो ईमेल अपने पास आओ है मालवा रेडियो श्रोता संघ ग्राम हिगड़ी अलोट जिला रतलाम एमपी से भेजवे वाले भैया बहन हैं जगदीश धाकड़ नायमा, श्रीमती रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़, शिवांगी धाकड़। जय एक और ईमेल अपने पास आओ है भेजवे जय जिनेन्द्र श्रोता संघ परभड़ी महाराष्ट्र से भेजवे वाले भैया बहन है रूपे संघई, महेश संघई, प्रज्ञेश संघई, प्रीतेश संघई और पूरा संघई परिवार से। जय एक और ईमेल अपने पास आओ है धनोरी तेलीवाला उत्तराखंड से भेजने वाले भैया बहन है निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू। तो इन सब जनन की पसंद पे सुनत है जो बारामासी आवाज है अनुपम जैन की। सुनो

देखो बहनों, अभी अपन ने सुनो ऐ सुनो नो बारामासी, आवाज हती अनुपम जैन जू की। और अब उठाओ थे अपनी कछी और चिट्ठियां। तो जब पहली चिट्ठिया अपने पास आई है, ग्रीन एवेन्यू छतरपुर से हैं, भेजे वाले भैया बहन हैं अभिषेक राय, मीनाक्षी राय, लव और कुश। चाहे एक और चिट्ठिया अपने पास आई है, देरी रोड छतरपुर से हैं, भेजे वाले भैया बहन हैं दिनेश कुमार मिश्रा, मंजू।

मिश्रा, मुनमुन और वैशाली की। जय, एक और चिट्ठी अपने पास आई है। ग्राम रतवास, पोस्ट मवई, तहसील पलेरा, जिला टीकमगढ़ से भेजने वाले भैया बहन हैं वीरेंद्र कुमार शुक्ला, कृष्णा भैया शुक्ला, अनुज नीलम, सेजल कुमारी और चुन्नी बिटिया की। और जो अपने पास ईमेल भी आए हैं, जो ईमेल अपने पास आओ है, जनकपुरी सहारनपुर से भेजने वाले भैया बहन हैं जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल डिकेस्ट्रो और विलियम्स डिकेस्ट्रो को। जो एक और ईमेल अपने पास आओ है, गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से भेजने वाले भैया बहन हैं स्वर्णजीत गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह और अविराज सिंह को। तो इन सब जन की पसंद पे सुनत हैं जो युगल गीत आवाज है देशराज पटेरिया और उर्मिला पांडे जी की।

देखो बहनों, अब अपन ने सुनो ऐसो नोनो युगल गीत। आवाज आती देशराज पटेरिया और उर्मिला पांडे जी की। तो बहनों देखो, जो तो अपन सब जने जानते ही हैं और देख भी रहे हैं कि समय कैसे बदल रहा है, कितनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है। और अब इको कारण का है, कारण है बढ़त भई जनसंख्या, प्रदूषण, कारखाना से निकलने वालों धुआं, पेड़न की अधाधुंध कटाई। इन तमाम कारणों से ओजोन परत में छेद हो रहे हैं और जिसे अल्ट्रावायलेट किरणें जो है वे सीधी धरती पे आती जा रही है। जी हां, जिसे गर्मी दिन दिन बढ़त जा रही है। अब उपाय है कि ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करें। एक पेड़ माँ के नाम हरियाली से बनेगा देश महान। वृक्ष लगाएं, पर्यावरण बचाएं। पेड़ हैं जीवन का आधार, इनसे ही है संसार। और अब हो रही है जावे की बेरा, तो आपका बता दें कल की ग्राम सभा के कार्यक्रम। तो कल की ग्राम सभा में अपन सुने धारावाहिक अटकन चटकन भाग 3 भेंट वार्ता भूमि विन्यास एवं जुताई प्रबंधन द्वारा उत्पादनकर्ता एवं मृदा स्वास्थ्य में सुधार विषय पर ज्योति कहार से रविंद्र कुमार प्रजापति जी की बातचीत। और इन्हीं बदकामन से के संगे देव अपनी राधा बहन का आज्ञा पंचो राम राम।

अभी ग्रामीण महिलाओं के लिए घरनी कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था। मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज़ पर और प्रसार भारती का ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बजने वाले हैं। अगला कार्यक्रम कुछ ही समय में हम भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करते हैं। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 8 बज चुके हैं। लीजिए अब सुनिए समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष। आज का विषय है आतंकवाद।
1: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही हैं अनुभा रोहतगी।
2: नमस्कार। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार देश के नेतृत्व की जिम्मेदारी संभाली थी। तब से अब तक इन 12 सालों में भारत में कई बड़े बदलाव हुए हैं और हर क्षेत्र में अनगिनत उपलब्धियां हासिल की गई हैं। आकाशवाणी की इस विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के जन कल्याण के में आज हम पर्यावरण के क्षेत्र में हुई उपलब्धियों के बारे में बात कर रहे हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव। मंत्री जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: भूपेंद्र जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने हाल ही में 12 वर्ष पूरे किए हैं। इस पूरी यात्रा में, इन 12 सालों में, आप किन बदलावों को सबसे ज्यादा परिवर्तनकारी मानते हैं जिन्होंने भारत में गुड गवर्नेंस की एक नई परिभाषा गढ़ी है?
3: आपने जो शुरुआत में दो शब्द कहे थे
2: जी,
3: विश्वास और जनकल्याण
2: जी,
3: मुझे लगता है 12 साल की कहानी विश्वास और जनकल्याण की है। विश्वास इस बात का कि सरकार ऊपर से जो 100 रूपये भेजेगी वो जनधन खाते में पूरा 100 रूपया जाएगा। ये पहली बार हुआ है, वरना खुद देश के प्रधानमंत्री कहा करते थे कि हम 100 रूपया भेजते हैं 85 रूपया गायब हो जाता है। विश्वास इस बात का कि सरकार जिस प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेगी उसका उद्घाटन भी यही सरकार करेगी। 12 साल पहले जब प्रधानमंत्री जी आए और उन्होंने एक प्रगति नाम का कार्य शुरू किया तो कई सौ समय से पड़े हुए प्रोजेक्ट नहीं पूरे हुए
2: जी।
3: मध्य प्रदेश बुंदेलखंड में केन बेतवा प्रधानमंत्री जी के समय में पूरा हुआ, राजस्थान में ERCP प्रधानमंत्री जी के समय में प्रारंभ हुआ, या आपके ऊपर पुल बनाने का विषय हो या गुवाहाटी के पुल बनाने का विषय हो। तो दूसरा विश्वास कि सरकार जिसका उद्घाटन करेगी उसको जनता को समर्पित भी करेगी। तीसरा, जो लोगों का विश्वास है कि भारत का आत्मसम्मान और गौरव दुनिया में बड़ा है। फिर ऐसा जब अच्छा समय होता है तो आपकी परीक्षा भी ली जाती है।
2: बिल्कुल।
3: तो दुनिया में जब कोरोना की महामारी का संकट आया तो इस बात का विश्वास कि हम अपनी दवाई भी खुद ढूंढ सकते हैं और अपना रास्ता भी खुद तय कर सकते हैं। फिर भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनी तो इस बात का विश्वास कि हम जिस रास्ते पे चले हैं वह रास्ता विकसित भारत की ओर जा रहा है। और दूसरा जो शब्द आपने कल्याण कहा था,

0: कल्याण
1: जी,
0: गरीब कल्याण। 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी के खाते से निकाला, 80 करोड़ लोगों को समय पर राशन पहुंचाने का काम किया, किसानों को सम्मान निधि देने का काम किया। और कल्याण के इस कार्य में, जो कभी लोहिया जी 60 के दशक में कहा करते थे कि पानी और पखाना, ये भारत के महिलाओं की इतनी बड़ी त्रासदी रही है कि उनको मीलों दूर से पानी लाना पड़ता है और अपनी इज्जत को बचाने के लिए अपने नेचुरल क्रिया को रोकना पड़ता है, घर घर शौचालय बनाने जैसा छोटा लेकिन एक लंबा कार्य, और जल जीवन मिशन को पहुंचाना। और इसलिए विश्वास और जन कल्याण ये 12 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और सफलता को बताता है।
1: भूपेंद्र जी, जलवायु संरक्षण के प्रयास के क्षेत्र में भारत एक बहुत बड़ी वैश्विक आवाज बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री मोदी खुद भी इसके बहुत बड़े पक्षधर हैं। तो आपके मुताबिक भारत ने विकास की अपनी जरूरतों और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी के बीच संतुलन कैसे बनाया है?
0: विषय ये उठता है कि हम वैश्विक आवाज किसकी बने? हम वैश्विक आवाज ग्लोबल साउथ की बने
1: जी।
0: तो जलवायु परिवर्तन के संकट की असमानता और असंतुलन क्या है? जलवायु परिवर्तन संकट की असमानता ये है कि जो विकसित देश हैं, उन्होंने अपने स्पेस से ज्यादा धरती का कार्बन स्पेस घेरा हुआ है, और आज अगर वो पर्यावरणीय विषयों में विकासशील देशों को कुछ निर्देशित करना चाहते हैं तो पहले उनको जो उनका हिस्टोरिकल रॉन्ग है वो देना पड़ेगा
1: जी।
0: और भारत ने इसलिए अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में ग्लोबल साउथ की आवाज को प्रखरता के साथ उठाया है, लेकिन हमने ग्लोबल साउथ की आवाज को केवल लड़ने के लिए नहीं उठाया। प्रधानमंत्री जी हमेशा हमें निर्देशित करते हैं कि भारत दुनिया की जलवायु परिवर्तन वार्ताओं में समाधान का मार्ग प्रशस्त करे, समस्या ना बने
1: जी।
0: और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम, चाहे कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, अकाल, सूखे और बाढ़ के कारण होने वाले दुष्परिणामों के कारण दुनिया में कैपेसिटी बिल्डिंग और नॉलेज शेयरिंग का विषय हो, चाहे इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक वैकल्पिक ऊर्जा जिसको नवकरणीय ऊर्जा कहते हैं
1: जी,
0: उसका विषय हो, चाहे जो कार्बन एमिशन जिन इंडस्ट्रीज से निकलता है उनके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए लीडरशिप और इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन जैसा विषय हो, और चाहे बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जैसा विषय हो, तो भारत ने दुनिया में ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर के उनके हकों की बात करी है, क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम का हिस्सा बनकर उसका नेतृत्व करके समाधान, नॉलेज शेयरिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग का विषय अपनाया है, और मिशन लाइफ और एक पेड़ मां के नाम जैसे अभियान चलाकर ये समस्या हम सबकी समस्या है और अपनी अंतरचेतना को जगाकर अपना व्यक्तिगत योगदान क्या दे सकते हैं, उसमें एक बड़ी भूमिका प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निभाने का कार्य किया है।
1: आपने अभी जो कुछ पॉइंट्स कहे हैं, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन की बात की, आपने नेट जीरो एमिशंस की बात की, इन पर एक एक करके हम चर्चा करेंगे, पर उससे पहले मेरा आपसे एक सवाल है कि प्रदूषण आज एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है, खासकर की दिल्ली जैसे महानगरों में, और ये जो है वो हमारे पर्यावरण पर बहुत इसका बुरा असर पड़ रहा है। सरकार अपनी तरफ से इसके लिए कई प्रयास कर रही है, जैसे भी हमने हाल ही में देखा कि यूनियन कैबिनेट ने दिल्ली एनसीआर में पुराने ट्रकों और बसों को फेज आउट करने के लिए एक स्कीम जो है अप्रूव की है, साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ईवीज को बहुत बड़े पैमाने पर प्रमोट किया जा रहा है, आप खुद भी ईवी में ट्रैवल करते हैं, तो इन प्रयासों को आप कैसे देखते हैं?
0: नहीं, ये सकारात्मक प्रयास है, जनसंख्या के बढ़ते हुए दबाव, भौगोलिक परिस्थिति के कारण पर्टिकुलर समय में दिल्ली में वातावरण में प्रदूषण फैलता है
1: जी।
0: अभी तो आपको अच्छा लगा होगा कि मई तो हमारा क्लीनेस डे रहा है, अखबारों में भी आया है
1: जी।
0: लेकिन जहां पर मनुष्य आधारित गतिविधियां होती हैं, वहां PM2.5 और PM10, ये दो जो तत्व, मतलब PM2.5 में कार्बन, ओजोन, बाकी जो गैसेस निकलती हैं उद्योगों से, व्हीकल से, और PM10 में जो डस्ट पार्टिकल होते हैं उसके कारण ये प्रदूषण फैलता है। और जब मौसम में ऐसी स्थिति आती है, विशेष रूप से दिल्ली में जब हवाएं चलनी बंद होती है और सर्दी होती है, और सर्दी भी हो हवा भी ना चले, तो वो जो वायु में जो तत्व है जिसको एयर पार्टिकल कहते हैं वो जम जाता है, और जमने के कारण वो एक वातावरण का जो AQI है उसको खराब करता है। तो इसका उपाय विभिन्न क्षेत्रों में है, व्हीकल पॉल्यूशन के स्तर पर क्लीन और फ्यूल की बात कही गई है, पुराने व्हीकल्स को समाप्त किया गया है, स्मार्ट ट्रैफिकिंग

0: की ओर सरकार का ध्यान गया है। दिल्ली से कमर्शियल व्हीकल के लिए ईस्टर्न और वेस्टर्न पैरेलल एक हाईवे बना करके बड़ा ट्रैफिक वहां से निकालने की बात की गई है। मेट्रो का विस्तार करके सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने का काम किया गया है। इंडस्ट्री के मॉनिटरिंग के लिए हर इंडस्ट्री में OCM लगाने की बात की गई है, और उसके साथ ही साथ जो ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो अनधिकृत क्षेत्र में हैं, उनको सख्ती से बंद करने की बात की गई है। उसके साथ ही दिल्ली के ग्रीनिंग के अभियान को चलाया गया है। डस्ट के लिए जो मैकेनाइज मशीन की जो सफाई है, उसके लिए लगभग 100 से ज्यादा मशीनें मंगाई गई हैं। फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम किया है। फिर आर्टिकल जो P10 है, इसका बड़ा कारण डस्ट है, तो कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन के लिए साइट्स को बनाने का काम किया गया है। इन सारे विषयों को करते हुए आज शाम को ही कृषि मंत्रालय में हमारी बैठक है कि पराली के बारे में अभी से प्रबंधन के विषयों के लिए बाकी राज्यों से बात करने की बात की गई है। दिल्ली के आसपास जो कॉरपोरेशंस हैं, चाहे गाजियाबाद हो, नोएडा हो, फरीदाबाद हो, सोनीपत हो, मानेसर हो, गुड़गावा हो या फिर अलवर हो, वहां के जो हमारे कॉरपोरेशंस हैं, उनको अपना एडवांस में प्लानिंग बनाने को कहा है। व्हीकल पॉल्यूशन, इंडस्ट्री पॉल्यूशन, डस्ट कंट्रोल, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, इन सब विषयों में एक अच्छे तरीके की नीति बनाने की बात की गई है, और पब्लिक के सहयोग के लिए भी इस कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है।
1: जी, प्रधानमंत्री का एक संकल्प है भारत को विकसित भारत बनाना 2047 तक। इस विजन में सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक महत्वपूर्ण पिलर है, तो भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में आपकी मिनिस्ट्री यानी कि पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मिनिस्ट्री जो है, मैं कहूंगी कि सबसे अहम है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
0: सबसे पहले तो सतत विकास का अर्थ है कि विकास की धारा निरंतर चलती रहे, इसमें इम्बैलेंस ना है, कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी रहे। लेकिन हम धरती से जो संसाधन निकालते हैं, उन संसाधनों का हमें वापस से पुनः उपयोग करना चाहिए, इसलिए हमारा मंत्रालय जो है सर्कुलर इकोनॉमी पे बल देता है। सर्कुलर इकोनॉमी में चाहे आपका इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से निकलने वाला पदार्थ हो, चाहे यूज्ड ऑयल से निकलने वाला पदार्थ हो, चाहे फ्लाई ऐश जो होती है उनके साथ बेकार फ्लाई ऐश का विषय हो, और ऐसे अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र जो कि हम पहले क्या करते थे, मेक टेक एंड वेस्ट, वो क्या करते थे, अब जो सर्कुलर इकोनॉमी है वो एक नए कंसेप्ट को लेकर चलती है, रिसाइकल, रीयूज एंड रिप्रोड्यूस, है ना। तो उसके लिए रेगुलेशन के लिए हमारे मंत्रालय ने रेगुलेटरी मिनिस्ट्री के नाते सारे रूल्स के फ्रेमिंग करने का काम किया। दूसरा, जो एक लंबे समय से इंडस्ट्री में बात की जा रही थी कि भाई आप इंडस्ट्री चला रहे हैं, आपकी मॉनिटरिंग कौन करेगा, तो जैसे आपको अपना अकाउंट्स का ऑडिट देना पड़ता है, अब एनवायरमेंट ऑडिट की भी बात करी है, और उनके ऑडिटर वो ऑडिट देंगे, ताकि हम जैसे आजकल रोज सुबह उठकर अपना इंसुलिन नाप लेते हैं ना, कि हमारा आज कितना इंसुलिन है, हमारा आज कितना BP है, तो ये जो पर्यावरण का प्रदूषण भी एक किस्म का डायबिटीज ही है, इसके लिए अपना आपको एनवायरमेंट ऑडिट कराना चाहिए। और हमारे मंत्रालय ने रिफॉर्म्स के मानकों को काफी सरल करने का काम किया है, ताकि लोग नियम कठिन होने के कारण नियम को तोड़ते हैं। नियम जब सरल होते हैं और कॉन्शियसनेस होती है, उसके प्रति अवेयरनेस होती है, तो लोग उसको अपनाने का काम करते हैं। तो सर्कुलर इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी का उपयोग, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, देश के इको सेंसिटिव जोन का संवर्धन, देश में जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है उनका प्रोटेक्शन, एक पेड़ माँ के नाम अभियान चलाकर धरती को हरा भरा बनाने का विषय, उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन और कॉर्पोरेट पार्टिसिपेशन को लेने के लिए ग्रीन क्रेडिट फंड जैसा प्रोग्राम, कैंपा के माध्यम से ग्रीन इंडिया मिशन पे कार्य, बायोडायवर्सिटी संरक्षण के लिए गांव गांव में बायोडायवर्सिटी रजिस्टर बनाने का कार्य, इन सब विषयों को लेकर के हम कार्य कर रहे हैं।
1: शुरू में आपने बात की इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में फ्रांस के साथ मिलकर इसकी शुरुआत की थी, और ये आज दुनिया की सबसे बड़ी क्लाइमेट इनिशिएटिव्स में से एक है। तो वैश्विक जलवायु संरक्षण के प्रयास और भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को मजबूत करने में इस तरह के पहल के बारे में आप क्या कहेंगे?
0: ऐसा है कि दुनिया भर में ये कहा जाता है कि भाई आप दुनिया में अगर आपको कार्बन एमिशन कम करना है तो आपको फॉसिल फ्यूल जो है वो कम उपयोग करना पड़ेगा। भारत ने जो अपने NDCs टारगेट दिए थे उसमें हमने कहा था कि हमारी जो ऊर्जा की कैपेसिटी है उसका 50% हम रिन्यूएबल एनर्जी

0: से प्राप्त करेंगे। और रिन्यूएबल एनर्जी से हमने ये प्राप्त करने के लिए सोलर के क्षेत्र को हमने आगे बढ़ाने का काम किया। भारत ने सोलर के क्षेत्र में अपने 53% जो है ग्रोथ किया है। मैं जब G20 में कैपटाउन में गया था तो UNFCCC के माध्यम से एक प्रेजेंटेशन किया गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि पेरिस एग्रीमेंट के 10 साल बाद दुनिया में कहां पर नया और अच्छा नवाचार हुआ, और उसमें भारत की इस बात की प्रशंसा की गई कि भारत ने दुनिया को सोलर क्षेत्र में अपनी उपलब्धि से बताया है कि जिसको रिन्यूएबल एनर्जी या नवीनकरणीय ऊर्जा कहते हैं उसमें भारत ने अच्छा कार्य किया है। और अभी तो जो इरना की जो रिपोर्ट आई है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी की, वो भी ये बताता है कि भारत दूसरे नंबर पे पहुंचा है। तो हम भी मानते हैं कि कार्बन एमिशन कम होना चाहिए, रिन्यूएबल के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए, और इसलिए जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया है जिसका अब तो हेडक्वार्टर भी गुड़गांव है। एक समय होता था कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के हेडक्वार्टर हमें दुनिया के दूसरे देशों में दिखते थे। 12 साल में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उपलब्धि हुई है तो इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन और उनके हेडक्वार्टर भी अब भारत में बनने लगे हैं। और रिन्यूएबल के क्षेत्र में भारत ने विशेष रूप से सोलर के क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 12 साल में एक अच्छे मुकाम को हासिल किया है।
1: अगले सवाल के लिए मैं आपसे कुछ आंकड़े शेयर करना चाहूंगी कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक देश में फॉरेस्ट और ट्री कवर यानी कि वन क्षेत्र और वृक्षों का दायरा बढ़कर कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.17% हो गया है, और पिछली रिपोर्ट की तुलना में इसमें लगभग 1425 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है, और साथ ही फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक जो है उसमें भी 8 करोड़ 10 लाख टन से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। बहुत बड़े बड़े आंकड़े हैं, लेकिन अगर हम इसको समग्र रूप में देखें और अगर हम पर्यावरण की सुरक्षा और के रूप में देखें तो इन उपलब्धियों के पीछे आप कौन सी प्रमुख नीतियों और पहल की बात मानते हैं कि कौन सी पहल और उपलब्धियां रही हैं?
0: ऐसा है कि सतत विकास के साथ समग्र विकास भी होना चाहिए
1: जी।
0: और नेचर का ये नियम होता है कि जहां प्योरेस्ट नेचर होती है वहां पर जो अपेक्स प्रेडेटर है वो सर्वाइव करते हैं
1: जी।
0: नेचर जो है उसमें जैसे एक छोटा माइक्रो जो स्पीशीज है उससे लेकर और जो अपेक्स प्रेडेटर है, तो इसमें 7 बिग कैट्स हैं। तो भारत ने पिछले 12 साल में दिखाया है कि हमारे टाइगर की संख्या में वृद्धि हुई है, लेपर्ड की संख्या में वृद्धि हुई है, स्नो लेपर्ड का एस्टीमेशन हम लोगों ने कराया है, लॉयन जो है पूरे अफ्रीका में कम हो रहे हैं, भारत में उसकी संख्या में वृद्धि हुई है, और एक स्पीशीज जो हमारे यहाँ से एक्सटिंक्ट हो गई थी चीता उसका भी हमने वापस से री इंट्रोडक्शन किया है। तो हमने ये जो फॉरेस्ट कवर बढ़ाया ये इस बात को दर्शाता है कि हमने अपने यहाँ ये अभियान चला करके वो नेचर के बैलेंस को बनाने का काम किया है। यही कारण है कि आप ये देखोगे कि 2014 के पहले कांग्रेस के समय में ये इको सेंसिटिव जोन का नोटिफिकेशन ही नहीं करते थे, पड़ा रहता था मामला। अभी अगर 2014 से और 2026 12 साल में देखेंगे तो उनकी संख्या बढ़कर 391 हो गई है, प्रोटेक्शन एरियाज की संख्या बढ़कर 509 हो गई है, जो टाइगर रिजर्व्स हैं उनकी संख्या 47 थी वो बढ़कर के 58 हो गई है, जो एलिफेंट रिजर्व हैं उनकी संख्या बढ़कर के 33 हो गई है, जो हमारी एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं चाहे एलिफेंट हो, टाइगर हो, लॉयन हो, डॉल्फिन हो, पहली बार डॉल्फिन का एस्टीमेशन किया गया, मोर देन 6500 डॉल्फिन का हमने एस्टीमेशन किया है, उसके साथ ही साथ घड़ियाल हो, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो, तो ये सारी एंडेंजर्ड स्पीशीज को बचाने का, इनके प्रोटेक्शन का, प्रिजर्वेशन का काम हम लोग कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ जो हमारी लोकल ट्राइब्स हैं उनके जो राइट्स हैं उसके लिए भी हम पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत पट्टों के वितरण का कार्य किया गया है। ये इस बात को पूरी तरीके से दर्शाने का काम करते हैं कि हम अपने इकोलॉजी के क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं।
1: आपने डॉल्फिन्स की बात की तो नमामि गंगे मिशन की बात करना जाहिर हो जाता है। तो जब नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी तो उसका मकसद था गंगा को स्वच्छ करना, लेकिन समय के साथ ये बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के एक बहुत बड़े और अहम मॉडल के रूप में उभरा है। हाल ही में अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में भी इसका मेंशन किया था। उन्होंने कहा कि नमामि गंगे मिशन के तहत देश की पहली डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस द्वारा एक गंगा डॉल्फिन के सफल बचाव किया गया, और उन्होंने इसे आशा की किरण बताया और कहा कि गंगा डॉल्फिन की रक्षा गंगा के पूरे इकोसिस्टम की रक्षा है। तो नदी की स्वच्छता से लेकर उसके बायोडायवर्सिटी और इकोसिस्टम के संरक्षण तक की इस यात्रा के बारे में आप क्या कहेंगे, और नमामि गंगे मिशन की सफलता को आप किस तरह देखते हैं, कितनी

0: इम्पोर्टेंट है ये?
1: देखिए, सरकार ने तो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट भी फाइल किया है कि जो गंगा का जो अपर एरिया है, जहां ओरिजिनल गंगा बनने की शुरुआत होती है, उनकी ट्रिब्यूटरी पे अब कोई फर्दर और कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। हम ये मानते हैं कि गंगा की सेंटिटी, गंगा के जल की शुद्धता, ये तो हमारा लक्ष्य रहा ही है, और इसलिए नमामि गंगे मिशन को आगे बढ़ाने के लिए सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। और प्रोजेक्ट डॉल्फिन को भी हम इसीलिए चला रहे हैं क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि धरती पे भी अपेक्स प्रेडेटर तभी रहता है जब बाकी जो माइक्रो से लेकर के और मैक्रो सब सारा जो सिस्टम नेचर का सुरक्षित होता है, सेम डॉल्फिन के बारे में भी है। और इसलिए हमने डॉल्फिन मित्र बनाने का भी काम किया। सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो एक संस्थान है ICFR, उसने अभी एक पिछले तीन चार साल से एक रिपोर्ट पे हम काम कर रहे हैं कि हमारे नदियों के किनारे जो पेड़ लगाने के विषय हैं, उस पर उन्होंने एक पूरी DPR तैयार करी है और हम नदियों के किनारे भी वृक्षों के संरक्षण को लेकर के काम कर रहे हैं। मैं कुछ दिनों पहले जो पीलीभीत से ऊपर एक जगह है कतरनिया घाट, वहां पे सबसे अच्छी डॉल्फिन साइटिंग भी है और हमारे घड़ियाल के लिए भी मैं गया था। तो ये वाटर कंजर्वेशन के लिए काम कर रहे हैं। और जो अमृत सरोवर तो प्रधानमंत्री जी के हृदय के बड़ा नजदीक है, अगर आप एटलस भी देखेंगे तो जो छोटे सरोवर हैं उनकी संख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन बड़े सरोवर भी, जो बड़ी झीलें भी हैं, उनके प्रति जागरूकता के लिए हमको रामसर साइट का दर्जा दिला रहे हैं। और 2014 में जहां देश में 24 रामसर साइट्स थी, अब उनकी संख्या बढ़कर 100 हो गई।
0: मंत्री जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था एक पेड़ माँ के नाम अभियान, आपने भी बात की, और वो आज एक जन आंदोलन बन गया है, इसे भी हम सब जानते हैं। तो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस अभियान के तहत 140 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए जा चुके हैं। बेशक ये संख्या बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हम इसे सिर्फ संख्या के नजरिए से ना देखें तो जन भागीदारी, एफॉरेस्टेशन और पर्यावरण जागरूकता के संदर्भ में इसके प्रभाव को आप कैसे देखते हैं?
1: मैं हमेशा अपने अधिकारियों को कहता हूं कि देखिए, जो हरित क्षेत्र का विस्तार है ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये पैशन का विषय है
0: जी।
1: और ये नेचर के साथ आपके कंपैशन का विषय है। अगर आपके साथ नेचर के साथ अगर आपका भाव होगा तो आप लगाओगे। पेड़ लगाना ये फोटो खिंचाने के लिए नहीं होना चाहिए, पेड़ लगाना ये प्रकृति को बचाने के लिए होना चाहिए। और एक पेड़ माँ के नाम अभियान जब प्रधानमंत्री जी ने शुरू भी किया था तो प्रधानमंत्री जी का एक संदेश था और जिसको हम लोगों तक पहुंचाते हैं कि हमारे पे दो लोगों का बहुत एहसान है, एक हमारी माँ का जिसने हमें जन्म दिया और दूसरा धरती माँ का जिसने हमारा भरण पोषण किया। और इसके प्रति कृतज्ञता अर्पित करने का यही तरीका है कि हम वहां पर एक पेड़ कम से कम माँ के नाम लगाएं। देखिए, आप बहुत बड़ी किसी भी बड़े ब्रांड की गाड़ी खरीद सकती हैं, लेकिन वो गाड़ी ऑक्सीजन नहीं दे सकती। आप 10 मंजिल का मकान बना सकते हैं, लेकिन वो चिड़िया के लिए एक दाना नहीं बना सकता, है ना, पक्षियों को छांव नहीं दे सकता। तो पेड़ तो नैसर्गिक रूप से प्रकृति का दिया हुआ उपहार होता है। और मैं कई बार ये भी कहता हूं कि केवल पेड़ लगाना मतलब हॉर्टिकल्चर का विषय हो जाता है। जब हम वन की बात करते हैं, हम इकोलॉजी की बात करते हैं, तो पेड़ लगाना मतलब वुडलैंड तैयार करना, लेकिन जितना वुडलैंड का महत्व होता है उतना ही वेटलैंड का महत्व होता है पक्षियों के लिए, और उतना ही ग्रासलैंड का महत्व होता है। और ग्रासलैंड का जो हमारा एक बड़ा स्पीशीज था चीता, वो तो भारत से एक्सटिंक्ट हो गया था, तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने चीते के भी ट्रांसलोकेशन का कार्य किया है। तो एक पेड़ माँ का नाम अभियान प्रधानमंत्री जी का इस धरती की हरियाली से जुड़ने का अभियान है, और धरती की हरियाली वुडलैंड, ग्रासलैंड और वेटलैंड तीनों बायोडायवर्सिटी के समान रूप से संरक्षण में होगी, और हम तीनों के लिए कार्य कर रहे हैं।
0: भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, और अक्सर ऐसा माना जाता है कि विकास और पर्यावरण संरक्षण एक दूसरे के विपरीत हैं, दोनों एक साथ नहीं चल सकते हैं। ऐसे में जब हरित विकास भारत की स्ट्रैटेजी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन गया है, तब सरकार, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार, आर्थिक प्रगति, औद्योगिक विकास और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के बीच संतुलन कैसे सुनिश्चित कर रही है?
1: देखो, विकास तभी समृद्ध होता है जब नेचर समृद्ध होता है। मान लो आप पानी से बिजली बनाते हो
0: जी,
1: पानी नहीं होगा तो बिजली कहां से बनाओगे? आप

0: कोयले से बिजली बनाते हो, कोयला ही नहीं होगा तो बिजली कहां से बनाओगे?
1: जी
0: दुनिया की कौन सी ऐसी दवाई है जिसका लास्ट सोर्स नेचर ना होता हो? आप फैक्ट्री में ब्रेड बना सकते हो लेकिन गेहूं तो पैदा नहीं कर सकते हो। कोई ऐसी फैक्ट्री थोड़ी होती है कि जिसमें गेहूं बनता है। गेहूं से आटा बनता है लेकिन वो तो नेचर से आता है। तो हमारा फूड, हमारा एनर्जी रिसोर्स, हमारी औषधि, ये तो नेचर से आती है। तो नेचर सुरक्षित और संरक्षित होगी तो विकास भी होगा
1: जी।
0: आप एक बात बताइए कि जैसे आप सड़क बना रहे हैं या आप मकान बना रहे हैं, तो मकान में जो भी चीज लगा रहे हैं आप, दरवाजा है तो लकड़ी तो नेचर से आती है, ये कहां से आती है
1: जी।
0: तो विकास भी तभी होगा जब हम संसाधनों का बुद्धिमता तरीके से उपयोग करेंगे। सर्कुलर इकोनॉमी क्या है
1: जी?
0: कि कितना लंबे समय तक आप धरती को से खोद खोद कर केवल खनिज का उपयोग करोगे? कभी तो ऐसा समय आएगा कि इस खनिज का पुनर्उपयोग करने का काम आप करोगे। तो मेरा मानना है, जिसको आजकल कहते हैं नेचर बेस्ड सॉल्यूशन
1: जी,
0: नेचर बेस्ड सॉल्यूशन, नेचर बेस्ड लाइफस्टाइल, और नेचर के साथ विकास करने का काम हम लोग करेंगे। और इसलिए इकोलॉजी और इकोनॉमी ये एक दूसरे की विरोधी नहीं है, ये एक दूसरे के पूरक है
1: जी। हम बात कर रहे थे शुरू में नेट जीरो एमिशंस की, तो जो भारत ने वर्ष 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य तक लाने की, यानी कि नेट जीरो एमिशंस के लक्ष्य सहित कई महत्वाकांक्षी क्लाइमेट गोल्स को निर्धारित किया है खुद के लिए, सो इस दिशा में अब तक कौन सी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल हुई हैं और आगे के क्या हमारे लक्ष्य हैं?
0: देखो, जो रिन्यूएबल एनर्जी में हमारी क्षमता है ये नेट जीरो के है
1: जी।
0: जो ग्रीन सिटीज की बात है ये नेट जीरो की है। जो मेट्रो का विस्तार है ये नेट जीरो के लिए है। जो ईवी का विस्तार है वो नेट जीरो के लिए है। जो ग्रीन हाइड्रोजन नई एनर्जी रिसोर्स को ढूंढ रहा है वो नेट जीरो के लिए है। जो बायोफ्यूल अलायंस कर रहे हैं वो नेट जीरो के लिए है। जो सोलार की कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं वो नेट जीरो के लिए है। नेट जीरो का अर्थ है कि हम एक ऐसे अर्थव्यवस्था के मुकाम पे पहुंचे जो कार्बन एमिशन और कार्बन उत्सर्जन कम हो, हमारी जीवन शैली और हमारे विकास का आधार पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली हो। और इसलिए जैसा आपने बताया कि 1477 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र बढ़ा है, तो वो नेट जीरो के लिए है।
1: पर्यावरण लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सरकार अपनी तरफ से पूरा काम कर रही है, लेकिन इसके साथ ही जो हम जब पर्यावरण की बात करते हैं, उसकी सुरक्षा की बात करते हैं, तो उसमें इंडस्ट्री का, कॉरपोरेट जगत का कितना इम्पोर्टेंट आप एक रोल देखते
0: अभी
1: हैं?
0: अभी हमने ग्रीन क्रेडिट फंड में कॉरपोरेट को लगाया है, उनके जो ESG है वो भी है। कॉरपोरेट जगत में बात होती है, भारत में कॉरपोरेट जगत में एक उत्साह का भाव बना है कि वो ग्रीन ट्रांजिशन की ओर जाए, अपनी इंडस्ट्री को ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाए। पर मैं उम्मीद करता हूं कि विकास ऐसा होना चाहिए जो लंबे समय तक चले और धरती को बचाने के लिए हो। इसलिए कई बार ये कहते हैं ना कि ये ग्रह हमें अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में नहीं मिला है, अपने बच्चों से उधार में मिला है
1: जी।
0: तो ये हरा भरा ग्रह छोड़ के जाए
1: जी।
0: वरना एक दिन, जैसे आप ये कहते हैं ना कि मनुष्य ये सोचता है कि मंगल पे कभी जीवन था, तो ऐसा नहीं हो कि दूसरे ग्रह के लोग कहें कि पृथ्वी पे भी कभी जीवन था।
1: क्योंकि आपने बच्चों की बात की, तो आखिरी सवाल मेरा आपसे यही है कि आम नागरिक और आज खासकर की जो देश के युवा हैं, जो देश का भविष्य है, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के इस अभियान में क्या योगदान दे सकते हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है?
0: पहला तो एक पेड़ माँ के नाम अभियान से जुड़े, और दूसरा प्रधानमंत्री जी ने मिशन लाइफ में जो आयाम दिए हैं, सेव फूड, सेव वाटर, सेव एनर्जी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, बैन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक, हेल्दी लाइफ स्टाइल, ऐसे विषयों पे ज्यादा से ज्यादा काम करें, इसको अपनी जीवन पद्धति पे अपनाएं। तो मिशन लाइफ को अपना जीवन का आधार बनाएं, एक पेड़ माँ के नाम लगाएं और ग्रीन टेक्नोलॉजी के विकास में अपना योगदान करें।
1: मंत्री जी, आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए और पर्यावरण के क्षेत्र में पिछले 12 साल में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हुई उपलब्धियों के बारे में और लक्ष्यों के बारे में बातचीत की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आकाशवाणी में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ विशेष साक्षात्कार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।

समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष इसके अंतर्गत आज आप सुन रहे थे पर्यावरण के क्षेत्र में उपलब्धियां। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत कर रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। सबसे पहले सुनते हैं जावेद अली की आवाज में जोधा अकबर फिल्म का ये गीत, जिसके बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने।
1: मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज पर और प्रसार भारती का ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

श्रोता, अभी आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज में साहिर लुधियानवी का लिखा गीत, संगीत जयदेव का था और फिल्म का नाम था हम दोनों। कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए प्रेम पर्वत फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में, संगीत एक बार फिर जयदेव का और गीत के बोल लिखे जानिसार अख्तर ने।

अल्फाज में लैला मजनू फिल्म का गीत। गीत के बोल लिखे साहिर लुधियानवी ने, संगीत जयदेव और मदन मोहन का है।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। वे आज रात कनाडा तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। कल अमरीका के राष्ट्रपति से मुलाकात होगी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चालू खरीफ सीजन की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स के पुनरुद्धार और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं की भर्ती की घोषणा की। भारत और जापान ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी और सतत विकास पहलों पर सहयोग बढ़ाने के लिए पेरिस समझौते के अंतर्गत संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र के लिए नियम अपनाए। ईरान ने कहा अमरीका के साथ युद्ध विराम समझौते के लिए इसराइल को लेबनान से पीछे हटना होगा। उत्तर भारत में कल बिजली कड़कने और तेज आंधी का अनुमान। और 26वीं सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियॉन में चल रहे G7 शिखर सम्मेलन के उच्च स्तरीय कार्य सत्र में भाग ले रहे हैं। नई साझेदारियां बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का पुनः निर्माण विषय पर आधारित इस सत्र में G7 देशों के नेता, सहयोगी देशों के नेता और विश्व बैंक तथा अफ्रीकी विकास बैंक के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। बैठक की शुरुआत फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा प्रधानमंत्री मोदी और अन्य भागीदार देशों के नेताओं का औपचारिक स्वागत करने के बाद हुई। शिखर सम्मेलन के बारे में अधिक जानकारी के लिए चलते हैं एवियॉन में मौजूद हमारे संवाददाता अंकित कुमार के पास। अंकित, भारत के लिए सम्मेलन का रणनीतिक महत्व क्या है?
1: जी प्रियंका, देखिए भारत इस G7 शिखर सम्मेलन को केवल एक प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ संवाद के मंच के रूप में ही नहीं बल्कि ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती से रखने के अवसर के रूप में भी देख रहा है। भारत की अपेक्षा है कि व्यापार, प्रौद्योगिकी, नवाचार और भरोसेमंद सप्लाई चेन जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ाया जाए। खासतौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती तकनीकों के क्षेत्र में भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है और इस दिशा में भारत ठोस साझेदारियों की उम्मीद कर रहा है। इसके साथ ही इस बात की भी उम्मीद है कि भारत विकासशील देशों से जुड़े मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाएगा। इनमें सतत विकास, जलवायु, वित्त, ऊर्जा सुरक्षा और समावेशी आर्थिक विकास जैसे विषय शामिल है। भारत लगातार ये कह रहा है कि वैश्विक नीतियों और निर्णयों में विकासशील देशों की चिंताओं को पर्याप्त स्थान मिलना चाहिए। जी प्रियंका,
0: धन्यवाद अंकित इस जानकारी के लिए। शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा प्रधानमंत्री मोदी का राजनयिक कार्यक्रम भी व्यस्त है। वे कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। आज रात वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भव्य रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की कल अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के साझा दृष्टिकोण ने भारत इनोवेट्स की आधारशिला रखी जो भविष्य के लिए एक परिवर्तनकारी मंच बन गया है। श्री गोयल ने यह बात फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स के समापन समारोह में कही। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज पर और प्रसार भारती का ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। समाचार संध्या कुछ ही समय में हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करते हैं।

0: डेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में एक उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में चालू

0: खरीफ सीजन के लिए देश भर में की गई तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कपास उत्पादन बढ़ाने, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष बल दिया। एक रिपोर्ट।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट संदेश दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में किसानों के हितों की रक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बैठक में इस बात पर भी ध्यान केंद्रित किया गया कि फसल के मौसम के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रतिकूल मौसम स्थिति से कृषि और किसानों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम पहले से ही उठाए जाएं। श्री चौहान ने निर्देश दिए कि जिन जिलों में कम वर्षा या असमान वर्षा की संभावना है, वहां पहले से ही पूरी तैयारी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे जिलों की स्पष्ट पहचान की जानी चाहिए और राज्य सरकारों के समन्वय से फसलवार आकस्मिक योजनाएं तैयार की जानी चाहिए, जिससे मौसम संबंधी किसी भी चुनौती की स्थिति में किसानों को तत्काल विकल्प, सलाह और सहायता प्रदान की जा सके। इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि जल संरक्षण, नमी प्रबंधन, अंतर फसल खेती और वैकल्पिक फसल पैटर्न पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। सुपर्णा सेकिया के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इस बीच श्री चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी की 1 जुलाई को आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर शुरुआत होगी। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के साथ हुई बैठक के दौरान ये बात कही। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के करसियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि राज्य पुलिस बल में भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी, जिससे बड़ी संख्या में गोरखा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य भर्ती में कम से कम 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने आज स्वास्थ्य सेवा, पेयजल, तकनीक, डिजिटल कनेक्टिविटी और सुशासन से जुड़े कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी। इसके अंतर्गत नागपुर में हाई एनर्जी मेडिकल साइक्लोट्रॉन प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। मध्य भारत की ये पहली परियोजना है जिससे अलग अलग बीमारियों की जांच और उपचार बेहतर होने की उम्मीद है। मंत्रिमंडल ने ग्रामीण इलाकों में पीने के पानी की कमी को दूर करने के लिए महाराष्ट्र ग्रामीण पेयजल नीति तथा नवाचार और नई प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र अनमैंड सिस्टम पॉलिसी को मंजूरी दी। महाराष्ट्र में जून के पहले चरण में सामान्य से 26% ही बारिश हुई है। राज्य सरकार ने किसानों को सलाह दी है कि वे जल्दबाजी में बुआई न करें। सरकार ने किसानों से आग्रह किया है कि वे बुआई का काम शुरू करने से पहले बारिश की स्थिति पर ध्यान दें। पेयजल और स्वच्छता विभाग ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिला अधिकारियों के साथ पेयजल संवाद का आयोजन किया। इसमें वरिष्ठ अधिकारी, जिला अधिकारी, डिप्टी कमिश्नर और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के जल जीवन मिशन के डायरेक्टर शामिल हुए। इसका उद्देश्य जल के जीवन मिशन 2.0 के लागू होने की रफ्तार बढ़ाने और बेहतरीन तौर तरीकों पर चर्चा करना था। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वगणना की प्रक्रिया पूरी करके जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत की। जनगणना 2027 भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना है और ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रशासनिक तथा सांख्यिकी कार्य है, जिसे पूरी तरह से ऐप आधारित पेपरलेस सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस पोस्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया है। पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक इकाई ने कहा है कि यह दावा निराधार है। इकाई ने कहा है कि परीक्षा के प्रश्न पत्र देशभर से चयनित संबंधित विषयों के विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत के आधार पर भारत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज बात आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार की शून्य सहिष्णुता नीति की।
2: पिछले वर्ष 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन

0: मंसूर ने यह स्पष्ट किया कि यदि आतंकवाद किसी देश की नीति का हिस्सा बनेगा तो उसका सीधा और सशक्त जवाब दिया जाएगा। इस ऑपरेशन के जरिए भारतीय सेना ने लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थित 9 प्रमुख आतंकवादी लॉन्च पैडों को नष्ट कर दिया। इस अभियान में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। वहीं 9 और 10 मई को भारत ने इतिहास रचते हुए परमाणु हथियार युक्त किसी देश के 11 एयरबेसों पर एक ही अभियान में प्रहार करने वाला पहला राष्ट्र बनने का गौरव प्राप्त किया। इस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान वायुसेना के लगभग 20% बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में जम्मू कश्मीर में 15वीं कोर के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकारी एजेंसियों की खुफिया क्षमता और समन्वय की सराहना की।
1: इंडिया फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ,
2: भारत ने मजबूत स्थिति में होने के बावजूद जिम्मेदार लोकतंत्र और परमाणु संपन्न देश होने के नाते उनकी इस अपील को स्वीकार कर लिया। इस तरह ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकी देश को कड़ा सबक सिखाया कि भारत पर किसी भी आतंकी कृत्य को बख्शा नहीं जाएगा।
1: नो टेरर एक्ट इन इंडिया वुड गो अनपनिश्ड।
0: वहीं 7 पड़ोसी देशों से लगी 15,000 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत आज नेशन फर्स्ट के सिद्धांत पर आधारित प्रभावी विदेश नीति का पालन कर रहा है। सिलचर के प्रोफेसर अनूप कुमार डे ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि
3: 263 में से ज्यादातर हिस्सों में इंटरनेशनल जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ फेंसिंग हो गया है, उसके कारण न केवल वहां से जो अनुप्रवेश है उसमें रोक लगी है, उसके साथ साथ वहां से जो इल्लीगल ट्रेड्स होता था वो भी बंद हुआ है।
0: नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाकर देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च राजकीय सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया जाना देश के लिए अत्यंत गौरव की बात है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि ये देश में प्रधानमंत्री द्वारा किए गए कल्याणकारी कार्यों को मान्यता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारत और जापान ने जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्रवाई, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी तथा सतत विकास पहलों पर सहयोग बढ़ाने के लिए पेरिस समझौते के अंतर्गत संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र के कार्यान्वयन नियमों को अपनाया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार JCM के लिए पिछले वर्ष दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित सहयोग ज्ञापन के बाद इस वर्ष 8 जून को कार्यान्वयन नियमों को अपनाया गया। ईरान ने कहा है कि अमरीका के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत इसराइल को लेबनान से पीछे हटना होगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने आज कहा कि दक्षिणी लेबनान पर इसराइल का निरंतर कब्जा अमरीका और ईरान के बीच हुए समझौता ज्ञापन का उल्लंघन है। अमरीका ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि लेबनान अंतिम समझौते का हिस्सा है या नहीं। इस बीच अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वह परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश करता है तो भयानक तबाही मच जाएगी। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन से इतर कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री ट्रंप ने कहा कि प्रस्तावित समझौते में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे। मौसम विभाग ने कल उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में उत्तर पूर्वी भारत, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा हो सकती है। अगले 4 से 5 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान है। भारतीय तलवारबाजी संघ ने 26वीं सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। भारत पहली बार इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। 19 से 24 जून तक दिल्ली में आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में 30 से अधिक देशों के शामिल होने की उम्मीद है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियॉन में G7 शिखर सम्मेलन के उच्च स्तरीय कार्य सत्र में भाग लिया। वे आज रात कनाडा तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स के पुनरुद्धार की घोषणा की। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: not punished, then tomorrow you will find another set of exploiters coming into play. So, ये जरूरी है. दूसरी बात जो है, आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि जो डिटेल्स अब उभर के आ रही हैं, किस किस्म की एक्सप्लॉयटेशन होती थी, किस किस्म का तोलाबाजी हो रहा, किस किस्म का कट मनी. यू सी, दीज आर ऑल थ्री थिंग्स. तोलाबाजी इज कोई अगर रेड़ी भी लगाता है, ठेला लगाता है, उसका दिन में 100 रुपए का, या कोई ऑटो चलाता है तो उसका दिन में 100 रुपए का रोजगार होता है, तो आप उससे जाकर 50 रुपए उगा लीजिएगा. दैट इज तोलाबाजी. कट मनी है कि अगर कोई काम हो रहा है, सरकार काम करवा रही है, पंचायत का काम है, कुछ है, जो भी है, उसमें जो ठेका जिसको मिल रहा है, रास्ता बनाने का, ड्रेन बनाने का, टैप लगाने का, आप उससे उसका जो कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट है उसका एक परसेंटेज आप उससे निकाल लीजिएगा, रंगदारी टैक्स जिसे कहते थे. सो दैट वॉज कट मनी. एंड देन यू हैड सिंडिकेट्स. आप घर बना रहे हैं तो आपको अपना ईंटा, बालू, सीमेंट, लोहा पार्टी के लोगों से खरीदना पड़ेगा और उन्हीं के रेट पर खरीदना पड़ेगा. उनका जो ब्रांड है, उनका जो भी है, वही लेना पड़ेगा. आपका कोई इसमें ऑप्शन नहीं है. या आप अपना घर बेच रहे हैं, समझिए आपके पास मकान है जिसका वैल्यू 10 करोड़ है. वो लोग आकर बोलेंगे, सिंडिकेट कहेगी, जी ये मकान हम लोग तय करेंगे, आप कितने में बेचोगे, किसको बेचोगे, और 1 करोड़ का बिकवाएंगे, बाकी 9 करोड़ से वो लोग आधा 4.5 करोड़ अपने जेब में ले लेंगे.
1: सो एन एब्सोल्युटली एक्सप्लॉइटेटिव.
0: इट वॉज नॉट अ गवर्नमेंट, इट वॉज अ मॉन्यूमेंटल, क्या कहें, इट वॉज अ फैक्ट्री ऑफ करप्शन, इट वॉज एन इंडस्ट्री ऑफ करप्शन, इट वॉज नॉट अ गवर्नमेंट.
1: एक आखिरी चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी. अपने विक्ट्री स्पीच में प्रधानमंत्री ने May 4 को एक बात का जिक्र किया था. उन्होंने कहा था कि इंडिया की जो गोल्डन एज जब थी तो 3 भाग हमारे देश के उस गोल्डन एज के पिलर्स थे, अंग, बंग और कलिंग. तो अंग मतलब बिहार पहले भाजपा की विक्ट्री में आ चुका था, उसके बाद ओडिशा भाजपा जीत चुकी थी, और अब बंगाल की बारी थी, वो अब May 4 को रिजल्ट में हो गया. तो कितना इम्पोर्टेंट आप इस स्टेटमेंट को मानते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि विकसित भारत के स्वप्न को पूरा करना है तो ये 3 भागों को विकसित करना जरूरी है, क्योंकि ये पिछड़ गए हैं भारत की विकास यात्रा में.
0: ये बात सही है. और अंग बंग कलिंग जो आप कह रहे हैं, बट उसमें आप असम को भी जोड़िए, जो अपने जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं उनको भी जोड़िए. और जब तक ईस्ट में डेवलपमेंट नहीं होगा, जब तक ईस्ट की इकोनॉमिक कहानी एक कॉम्पिटिटिव स्टोरी नहीं बनेगी, तब तक भारत अपने आप को विकसित भारत नहीं कह पाएगा. अगर आप भारत के मानचित्र को देखें, वेस्ट इंडिया काफी डेवलप्ड है, साउथ इंडिया भी काफी डेवलप्ड है, ईस्ट इंडिया बस एक ही जगह रह जाता है जहां पर अभी तक कुछ खास काम नहीं हो पाया. मिडिल इंडिया, आप अगर मध्य प्रदेश को देखें, मध्य प्रदेश की जो रिकवरी स्टोरी है, बीमारू प्रदेश से आज कहां पहुंच गई है. अगर आप छत्तीसगढ़ को देखें, नया प्रदेश है और इतनी डिप्राइव्ड जोन थी कि उसको अलग स्टेट बनाना पड़ा, आज छत्तीसगढ़ कहां पहुंच गया, और वेस्ट बंगाल वहीं का वहीं पड़ा रह गया. तो हमें आगे का देखना पड़ेगा. एंड वेस्ट बंगाल कैनॉट जस्ट बी अ पोटैटो इकोनॉमी. That we produce the country's most largest amount of potatoes.
1: Like you heard Kanchan Gupta ji, that the destiny of India is inextricably linked to the destiny of Bengal, because you would recall that it was from Bengal that the British also began experimenting with their divide and rule policy, because they realized very early that if they have to capture the soul of India, they must first break Bengal. So that's the importance of West Bengal to the fate and destiny of our country. Thanks for joining us, Kanchan ji. Thank you.
2: In this special program, you were listening to a discussion on West Bengal after BJP's historic mandate, governance, development and future priorities. Participants were Kanchan Gupta, senior journalist and political analyst, and Aditi Tandon, senior journalist. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app, News on AIR. This program is also available on our YouTube channel, News on AIR Official. You may share your feedback about this program through email at airnsdtalks@gmail.com or WhatsApp on 9289094044.

मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज़ पर और प्रसार भारती का ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बजे हैं। लीजिए सुनिए श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मनभावन। श्रोताओं, आज का मनभावन कार्यक्रम लेकर मैं हाजिर हूं आपका मित्र कुलदीप खरे, तो स्वीकार कीजिए प्यार भरा नमस्कार।

श्रोत मनभावन कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म महबूब की मेहंदी से, जिसको गाया है लता मंगेशकर ने, शब्द रचना आनंद बख्शी की, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। पसंद करने वाले श्रोता, ग्राम मवैया तहसील नौगांव जिला छतरपुर से देवेंद्र कुमार राजपूत, राजेंद्र कुमार राजपूत और के। अगला पत्र हम तक आया है ग्राम रजौनी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से उदय भान पाल, जयहिंद पाल, दीक्षा पाल, प्रतीक्षा पाल, बिमलेश पाल, नीतू पाल, दिव्यांश बघेल और इनके परिवार वाले। ग्राम धुर्रा बांधा भाटापारा से यह पत्र हमें लिखा है प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, नेतराम साहू, भूपेंद्र साहू ने। अगला पत्र हम तक भेजा है शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ से। लिखने वाले श्रोता हैं अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और क्रिस श्रीवास्तव। यह अगला पत्र हम तक भेजा है अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंसीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, देशा और लबी श्रीवास्तव ने। इन्होंने भी इसी गीत को सुनना चाहा है। अगला पत्र हम तक आया है दादा बाबू रोड गिरडीह झारखंड से। लिखने वाले श्रोता मोहम्मद यासीन अजान, सलमा नवाज, हसन नवाज और बाबू अहद। अगला पत्र हम तक भेजा है बोड़गहन छत्तीसगढ़ से रामदुलारी प्रजापति, रामशरण प्रजापति, चंद्रेश कुमार प्रजापति, चंद्रकांता प्रजापति और शशिकांता प्रजापति। इन्होंने भी इसी गीत को सुनना चाहा है। अगला पत्र हम तक भेजा है यादव बंधु बस स्टैंड लोहेड़ी महोबा से। राजेश यादव, राम अवतार, दीपक, यदुबीर, राधिका, रामगोपाल जी और इनके परिवार वाले। जंटपुरा पनवाड़ी से ये पत्र हमें भेजा है देवीदी नहरवार, सुनीता देवी, दिवनेश कपेल, पूजा देवी और समस्त हरिवार परिवार ने। इन्होंने भी इसी गीत को सुनना चाहा है। ग्राम बनगाय तहसील पटेरा जिला दमोह से ये पत्र हमें लिखा है लिखने वाले श्रोता हैं प्रहलाद पटेल, माफ कीजिएगा प्रहलाद यादव, राकेश यादव, मनोज यादव, सुषमा, संगीता, गीता, कविता और गोविंद यादव। इसी गीत को सुनने के लिए कुछ ईमेल भी हम तक आए हुए हैं। ये पहला ईमेल हम तक आया है सनावत से शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा और राजकुमार बोनाना। अगला ईमेल हम तक आया है लिखने वाले श्रोता मोरटक्का माफी जिला खंडवा से जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम पटेल, ज्योति पटेल, शुभम, देवी किशन, भावना मान, मानस और कनिका पटेल। इन्होंने भी इसी गीत को सुनने की फरमाइश हम तक ईमेल के माध्यम से लिख भेजी है। अगला पत्र ग्राम लसूड़िया पाता तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से लिखने वाले श्रोता हैं गोविंद, वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल, परी, कृतिका, रमेश चंद्र डांगी। अगला पत्र हम तक भेजा है कुर्मा जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ से। लिखने वाले श्रोता हैं दिलदार मिरी, ज्योति जानवी और दीक्षांत मिरी। अगला ईमेल आया है लदावली जिला मुरादाबाद से। लिखने वाले श्रोता अजीत कसाना, माया देवी, रितेक, आदित्य कसाना। इन्होंने भी इसी गीत को सुनने के लिए ईमेल हम तक भेजा है। अगला ईमेल हम तक आया है गांव शोभापुर मेरठ कैंट से दिग्दर्शन

0: जानते हैं कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: मन भवन कार्यक्रम आप आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से सुन रहे हैं। कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में साहिर का लिखा गीत, धुन बनाई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, फिल्म का नाम दाग। पसंद करने वाले श्रोता, इस्लामपुरा सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, रमेश गौण, मेबी मंतशा, मोहम्मद शादाब खत्री। रेलवे कॉलोनी बठिंडा से यह पत्र हमें लिखा है जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार ने। दादरी गेट भिवानी से यह पत्र हमें लिखा है कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुणाल मेहरा, इन्होंने भी इसी गीत को सुनने की फरमाइश हम तक लिख भेजी है। ग्राम पोस्ट खन्ना जिला महोबा से यह पत्र हमें लिखा है ओम प्रकाश नामदेव, श्रीमती पुष्पा नामदेव, कुमारी वर्षा, मेघा घटा, रंबा, शिल्पा, अलका, परी, भूमि, अखंड नामदेव। ग्राम भड़भूजी जिला आगर मध्य प्रदेश से ये पत्र लिखा है रघुनाथ मालवी, रीना मालवी, सुषमा, दुर्गा, परी, मधुबाला, मिलन, सुषमा कपूर, ओम प्रकाश और इनके परिवार वाले। गौरीनगर इंदौर से ये पत्र में लिखा है आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी, पारस तपस्या, करिश्मा कामले और इनके परिवार वाले। बिलसराया से रामकेश चक्रवर्ती, पुष्पेंद्र, सोनम, गोल्डी, दीप्ति, अनुज और ओमजी चक्रवर्ती ने भी इसी गीत को सुनने की फरमाइश हम तक लिख भेजी है। शबाना रेडियो श्रोता संघ विजयनगर छतरपुर से ये पत्र हमें भेजा है बसीम अहमद खान, शबनम खान, साहिद खान, अरमान खान, जुनेद खान, आलीशान खान, आरजू परवीन, इन्होंने भी इसी गीत को सुनना चाहा है। ये अगला पत्र हम तक आया है रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश से, लिखने वाले श्रोता हैं विजय महोबिया, संजय महोबिया, कविता महोबिया, विशाल, विवेक, सपना, शिवी, सलोनी, राजू चराटे और पेंटर बाबू। श्री तुलजा भवानी माता बार्ड खंडवा से यह पत्र हमें लिखा है अनिल विंचुरकर, मंगला शोभित विंचुरकर ने। उदयनगर से मोहित रत्न पारखी, स्वाति मिस्टी, मनस्वी रत्न पारखी, इन्होंने भी इसी गीत को सुनना चाहा है। अगला पत्र आया है ग्राम खकल तहसील कौच जिला जालौन से, लिखने वाले श्रोता दीपक गुर्जर, सत्यम गुर्जर, अंशराज गुर्जर और इनके मम्मी पापा। अगला पत्र हम तक आया है इसी गीत को सुनने के लिए ग्राम पोस्ट प्रतापपुरा जिला छतरपुर थाना राजनगर तहसील राजनगर छतरपुर मध्य प्रदेश से, लिखने वाले श्रोता श्री मुन्नालाल अवस्थी, जया देवी अवस्थी, अनिल अवस्थी, ज्योति अवस्थी, आनंद कुमार अवस्थी, सजनी अवस्थी, नीलेश अवस्थी और शैलेश अवस्थी। इसी गीत को सुनने के लिए कुछ ईमेल भी हम तक आए हुए हैं। ये पहला ईमेल हम तक आया है पाकुड़ झारखंड से, लिखने वाले श्रोता हैं उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु, तासु, अर्णव आनंद और सत्यमानंद, बोहड़ा गाछी पश्चिम बंगाल से ये ईमेल हमें भेजा है मुन्ना भगत और गुड्डी भगत ने। अगला ईमेल हम तक आया है बिलासपुर छत्तीसगढ़ से, लिखने वाले श्रोता चन्नूलाल श्रीवास, अनीता, पुष्पा श्रीवास, अंजू योगिता श्रीवास, रंजन साहू, हेमंत नामदेव और धरमदास बाधवानी, इन्होंने भी इसी गीत को सुनने के लिए मेल हम तक भेजा है। गांधी पार्क मनपुरा जिला शिवपुरी से ये ईमेल हमें भेजा है मनोज नामदेव, मयंक नामदेव, खुशबू नामदेव, ममता नामदेव, रेखा नामदेव और समस्त नामदेव परिवार। अगला ईमेल हम तक आया है गणेशवाड़ी कोल्हापुर से, लिखने वाले श्रोता हैं संभाजी सुतार, चेतन सुतार और सारिका सुतार। तो लीजिए इन सबकी पसंद पर सुनते हैं दाग फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में।

0: मन भावन कार्यक्रम जारी रहेगा इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
2: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए चलती का नाम गाड़ी। इस फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज में, गीत के बोल लिखे मजरूह सुल्तानपुरी ने, संगीत एसडी फरमन का। पसंद करने वाले श्रोता, बहुत प्रेम रेडियो श्रोता संघ बखतपुरा पलेरा जिला टीकमगढ़ से, रामाधीन प्रजापति, श्रीमती लच्छी।

वर्षा, मनखुशी, सुमित, अमित और बाबूलाल प्रजापति। मनकारी जिला छतरपुर से ये पत्र हमें आया है फूलचंद्र पाल और उनके परिवार वालों का। करनाल से ये पत्र हमें लिखा है सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी और जगमोहन प्रजापत ने। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से ये पत्र हमें लिखा है मीका बिरक, बलबिंदर बिरक, जैतिक बिरक, हरदेव मीका। सारनी जिला बैतूल से ये पत्र हमें लिखा है अमित खातरकर, निहारिका खातरकर, शिवपाल यादव, अनामिका, अवंतिका, शिवालिका, पारसमणि बाग, पंजाराव निम्बालकर और संदीप पाटिल। गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी पारस, तपस्या और करिश्मा कामले, इन्होंने भी इसी गीत को सुनना चाहा है। अगला पत्र हम तक आया है ग्राम गुना वार्ड नंबर 15 जिला टीकमगढ़ से राजाराम अहिरवार, राधेलाल अहिरवार, शारदा, दीपा, बेनीबाई, सीमा, निशु और प्रवीण अहिरवार, इन्होंने भी इसी गीत को सुनना चाहा है। ग्राम गौना कुसमार थाना सौजना तहसील महरौनी जिला ललितपुर से ये पत्र हमें लिखा है कैलाश नारायण नामदेव, दीपक कुमार नामदेव, द्रौपदी देवी नामदेव, रामदेवी नामदेव, ब्रजेश देवी, अखिलेश देवी, लखनलाल चाहना, आकाश रानी, परी और सुरभि नामदेव। कस्बा बराड़ा जिला अंबाला से रवि कुमार राहुल, रणजीत कौर, प्रियंका, जयप्रकाश राहुल, नूर, नमन, सिमरत, गुरकीरत, गुरशब्द राहुल, इन्होंने भी इसी गीत को सुनना चाहा है। सनावत से दिलीप मालाकार, सुनीता, मुस्कान, योगेश, जितेंद्र, इन्होंने भी इसी गीत को सुनना चाहा है। अजनर बेलाताल महोबा से चरणदास रैकवार और सुरेश सक्सेना, इन्होंने भी इसी गीत को सुनने की फरमाइश हम तक लिख भेजी है। कुछ ईमेल हमारे पास इसी गीत को सुनने के लिए आए हैं। यह पहला ईमेल है डोगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्र पाल गजभिये, राधिका गजभिये, अनिष्का और तन्मय। अगला ईमेल है ग्राम ममना जिला हमीरपुर से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा। यहीं से सुनना चाहते हैं साधु बाबा, वीरेंद्र सिंह तोमर, संजय दीपक और सोनू तोमर, इन्होंने भी इसी गीत को सुनना चाहा है। अगला ईमेल हम तक आया है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयबीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप कालका से ये ईमेल हमें भेजा है शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज ने, इन्होंने भी इसी गीत को सुनना चाहा है। ग्राम पजौनिया जिला जालौन से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श सार्थक, अलौकिक चंसोलिया, इन्होंने भी इसी गीत को सुनना चाहा है। पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से लिखने वाले श्रोता हैं सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह। अगला ईमेल हम तक आया है पलारी छत्तीसगढ़ से, लिखने वाले श्रोता हैं नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद, पराग टेलर, तनुजा देवांगन और ईशांत देवांगन। बक्सर बिहार से सरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और सुरीत रमेश साहू। डुमरांत बिहार से डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी, सोनम, अदीबा, दानिश अंसारी। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर, अभ्यानंद आर और परमानंद आर, इन्होंने भी इसी गीत को सुनने के लिए हम तक ईमेल भेजा है। अगला ईमेल है सारिमपुर बक्सर से, लिखने वाले श्रोता हैं राज एस डी अंसारी और आसमा खातून अंसारी। चंडीगढ़ सिटी से ये ईमेल हमें भेजा है सतीश अनेजा और बिमला अनेजा ने। तो लीजिए इन सबकी पसंद पर सुनते हैं चलती का नाम गाड़ी फिल्म का ये गीत किशोर कुमार की आवाज में।

0: कार्यक्रम जारी रहेगा इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: मम्मी, ये जहाज कहाँ जा रहा है?
2: बेटा, अब तो भारत का हर कोना आसमान से जुड़ रहा है।
3: जब भारत उड़ान भरता है तो उड़ान भरते हैं सपने, जुड़ते हैं शहर, बढ़ते हैं अवसर।
2: पिछले 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सक्षम नेतृत्व में विकसित हुए हैं 160 से ज्यादा एयरपोर्ट्स। उड़ान योजना से संभव हुआ है छोटे शहरों तक हवाई संपर्क। डीजी यात्रा से सरल एवं सुगम हुई हवाई यात्रा।
3: नागर विमानन मंत्रालय, विकसित होते भारत की नई उड़ान। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: कार्यक्रम लीजिए, अब सुनिए कुदरत फिल्म का गीत, लता मंगेशकर की आवाज में, शब्द रचना मजरूह की, संगीत आर डी वर्मन का, पसंद आप सबकी। दुर्गा चौक रायसेन से राजू नामदेव, गायत्री महल पनवाड़ी जिला महोबा से पत्र हमें लिखा है शिवनारायण पांचाल, देवनारायण पांचाल, लक्ष्मी प्रसाद, मोहित, नीतू, विनय, नेहा, सत्या, मोहिनी, पवन, अनुज, गुड्डी और अंकुश। नेपाल पैलेस सागर से पत्र हमें लिखा है तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नुपुर, ऋषिका, रॉबिन ने। पटेरा तहसील पटेरा जिला दमोह से पत्र लिखा है प्रदीप ताम्रकार, राधा ताम्रकार, प्रतीक, प्रिया, पारस और समस्त परिवार। करोला मुरादाबाद से पत्र हमें लिखा है अयूब खान, इरम गुडिया, सोएब खान और नवेद खान ने। महसवाड़ी तहसील मलकापुर महाराष्ट्र से ये पत्र हमें लिखा है शत्रुघ्न धाड़े, बाल्मीक धाड़े, नेनाजी धाड़े, स्वप्निल धाड़े और अजय किरोदकर। डोगरगांव राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राजपाल गजबीय, राधिका गजबीय, बेबी अनुष्का और तन्मय गजबीय। बनोसा दरियापुर जिला अमरावती से यश चौहान, अंश, संदीप, माधवी और इनके परिवार वाले। शिवाजी चौक कटनी से अनिल ताम्रकार, अमर ताम्रकार, संजीव वर्मा, रंजन रजक, राजू ताम्रकार, दिलीप वर्मा, प्रकाश सोनी। यहीं से पवन यादव, सत्तू सोनी, अरुण कनौजिया, संजय सोनी, लालू, सोना, मोना, हनी, यश, सौम्या और इनके मम्मी पापा। ग्राम बड़ बगबुड़वा पथरिया से नरेंद्र

नेताम और कुसुम नेताम, इन्होंने भी इसी गीत को सुनना चाहा है। अलीका डब्बाली से ये पत्र लिखा है, बसंत सिंह छन, राजकुमार, सुनीता, कुलदीप गांधी। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। कुछ ईमेल भी आए हुए हैं, गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय। नगर निगम वार्ड नंबर 28 नाज मंजिल महसौल सीतामढ़ी से अकरम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत अकरम, वसीम अकरम, रुबीना बसीम, आरिज बसीम, नदीम अकरम, शमीम अकरम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा। कलेर बिहार से ये ईमेल आया है, मोहम्मद आसिफ खान, निकहत परवीन। दतरंगी भाटावारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्र मणि और नोखेलाल। ग्राम फ्रांसी हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार और पुष्पेंद्र कुमार। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया और अपार ढिंगिया। भाटापारा छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर साहू, करण राहुल साहू और चंपा साहू। दादा बाबू रोड गिरडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफ्रा नवाज, बेबी चाहत और सादिया। अगला ईमेल हम तक आया है, गोल्डन रेडियो श्रोता संघ, राज पैलेस, मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से ये ईमेल आया है, मुन्ना भाई सोनकार, पिंकी सोनकार, आर्यन कृष्णा और पीहू सोनकार। तो लीजिए इन सबकी पसंद पर सुनते हैं कुदरत फिल्म का ये गीत।

0: मन भवन कार्यक्रम जारी रहेगा इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
2: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: मन भवन कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए आशा भोसले और मोहम्मद रफी के युगल स्वर में तीसरी मंजिल फिल्म का गीत। गीत के बोल लिखे मजरू ने, संगीत आड़ी वर्मन का है। पसंद करने वाले श्रोता हैं जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत रानी, तबस्सुम रुखसार और मोहम्मद आसिफ। गांधीनगर गुरसराय झांसी से एस कुमार सिरोनिया, श्रीमती मिथिला सिरोनिया, सोनम, नितिन, मुकेश, रजनी, गौरव, रोशनी, नितेश, रितेश, आदर्श, चिंटू और कुमारी सौम्या सिरोनिया। छोटी माता मंदिर के निकट कोटरा जिला जालौन से ये पत्र हमें लिखा है अमित तिवारी, श्रीमती पूजा तिवारी, पंडित राम बिहारी शास्त्री, आशा तिवारी, राजा भैया, अभय और कार्तिक तिवारी और इनके समस्त परिवार। अमर रेडियो श्रोता संघ बसारी दरवाजा छतरपुर से ये पत्र हमें लिखा है राकेश रोशन वर्मा, अमर रोशन वर्मा, दीपक शर्मा, कपूर सिंह घोष, कुमारी पूर्वी, रागिनी सिंह घोष, श्रीमती सीमा और संध्या वर्मा। सिंचाई कॉलोनी अनगढ़ किटोरिया छतरपुर से ये पत्र हमें लिखा है हरि अहिरवार, रवि, सुनील, प्रमोद और इनके मम्मी पापा ने। नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा, शारदा और दामिनी वर्मा। छत्तीसगढ़ बेमेतेरा से ये पत्र में लिखा है सुरेश कुमार, कमलकांत और बीरेंद्र ब्रजकांत, इन्होंने भी इसी गीत को सुनना चाहा है। दिल्ली शहर मोरी गेट से ये पत्र लिखा है कन्हैयालाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार ने, इन्होंने भी इसी गीत को सुनना चाहा है। जिला खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीला धनजे, गायत्री धनजे। खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद और नीतू वैद, इन्होंने भी इसी गीत को सुनना चाहा है। वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब खत्री। छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश, नेहा और वान्या सिंगरौल, इन्होंने भी इसी गीत को सुनना चाहा है। कुछ ईमेल भी आए हुए हैं इसी गीत को सुनने के लिए। टोरोवाल गांव जिला नवाशहर पंजाब से लिखने वाले श्रोता गगनदीप, तृप्ता कुमारी, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर प्रियम, बेबी बामिका और बारनी, इन्होंने भी इसी गीत को सुनना चाहा है। अगला ईमेल हम तक आया है ग्राम लोहगढ़ ठाकुरवाला से स्वर्णजीत गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह और अविराज सिंह। ग्राम दूलापुर जिला मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलबीर सिंह, इन्होंने भी इसी गीत को सुनना चाहा है। ग्राम मृतला महोबा से सोनू भास्कर, मोनू भास्कर, सुषमा, रश्मि, दीपिका, देवांश और बेबी आरोही, रोहिदास चौक पंडरपुर सिटी से ये पत्र हमें लिखा है कृष्णा, प्रशांत, रूषि और यशराज एंड सुनीता सिंधे। ग्राम पोस्ट गौना कुसमाड़ थाना सोजना तहसील महरौनी से कैलाश नारायण नामदेव, दीपक

कुमार नाम दो, द्रौपदी नाम दो और राम देवी नाम दो। तो लीजिए इन सबकी पसंद पर सुनते हैं तीसरी मंजिल फिल्म का गीत।

कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए जूली फिल्म के गीत किशोर कुमार की आवाज में, शब्द रचना आनंद बख्शी की, संगीत राजेश रोशन का। पसंद करने वाले श्रोता छत्तीसगढ़ भाटापारा दत्तनेगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, जावेंद्र कुमार वर्मा, महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी, सूरज, सुजला, ज्योति और रियांश ठाकुर, ग्राम मिर्तला जिला महोबा से रामजीवन राजपूत, राममिलन, सायना देवी, भूरा राजपूत और लोकेश, छत्तीसगढ़ भाटापारा दत्तरंगी से पत्र में लिखा है द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार, झाविंद्र कुमार, बेरडी से हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक करमरकर, प्राची करमरकर और तनु करमरकर, इन्होंने भी इसी गीत को सुनना चाहा है। अगला पत्र हम तक आया है परमलागंज आलोड जिला रतलाम से, लिखने वाले श्रोता बलबंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति और अतुल, बटिंडा रोड डब्बाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग ने भी इसी गीत को सुनने के लिए हम तक पत्र भेजा है। औरंगाबाद से ये पत्र हमें लिखा है राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश ने। कुछ ईमेल भी आए हुए हैं इसी गीत को सुनने के लिए। टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर से अशोक श्याम कुमार, प्रमिला श्याम कुमार, चीनू आसमा, दीपक श्याम कुमार और अनुश्री श्याम कुमार।

गाडगेनगर, यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव, लोखंडे, कल्पना ताई, शैलेश, प्रतीक्षा, स्वप्निल एंड रक्षिता। अगला ईमेल हम तक आए हिंगोली महाराष्ट्र से, शाहजी, श्रीमती नंदा, हनुमान और उत्तम जमदाड़े। अगला ईमेल है ग्राम पीपर लोड सरगांव छत्तीसगढ़ से, दीपेश वर्मा, पूनम, ज्योति और शिवंश वर्मा। अगला ईमेल आया हुआ है संबलपुर कांकेर से, फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव। बागवान मंजिल छोटी बलिया से ये ईमेल हमें भेजा है नूर आयशा अहमद बागवान, इकबाल अहमद, अखलाक अहमद, आमना, आसमा, राबिया परी, आशु, जूही, सदब बागवान और छतरी टोल तेघड़ा बाजार बेगूसराय से, अदीबा अफसरी, इस्माइल आजाद, नन्हे राजा, फैयाज, फिरोज आलम, भाई शाह आलम, बली आलम जी। पदमपुर जिला गंगानगर, श्री गंगानगर राजस्थान से, मेहर अरोड़ा, ममता, कीर्ति और भूमिका अरोड़ा, इन्होंने भी इसी गीत को सुनने की फरमाइश हम तक लिख भेजी है। गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी, पारस, तपस्या, करिश्मा कामले, इन्होंने भी इसी गीत को सुनना चाहा है। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से ये ईमेल हमें भेजा है महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशान, तुलसी और दिशा गोस्वामी। ग्राम कुमार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, नाजिया इब्राहिम, इन्होंने भी इसी गीत को सुनना चाहा है। तो लीजिए इन सबकी पसंद पर सुनते हैं जूली फिल्म का ये गीत।

0: दिल क्या करे जब किसी से
1: कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए सिलसिला फिल्म का गीत लता मंगेशकर और अमिताभ बच्चन की आवाज में, शब्द रचना जावेद अख्तर की, संगीत शिव हरि का। पसंद करने वाले श्रोता आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश मैंडी, सौरभ शाइना और निवान शर्मा, नगर निगम वार्ड नंबर 28 नाज मंजिल महसौल सीतामढ़ी बिहार से, अकरम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत अकरम, रूबीना, आर एस वसीम, रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा, अरहान बाबू, हमजा बाबू, मुजम्बिल बाबू, हुमेरा नाज, हुमेरा नाज, अबीहा नाज, साहिन नाज, नूरी नाज, बच्चू शेख और चीना शेख। शेख टोली समस्तीपुर से ये पत्र हमें लिखा है मोहम्मद शहनवाज परवेज, मुसरत जहां नाज। ग्राम फ्रांसी से राजकुमार डूडी, सरजीत सिंह डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, हांसी शहर से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू। ननौरा जिला महोबा से ये पत्र हमें लिखा है बलराम, श्रीमती कस्तूरी, कुमारी आराधना, सोनिका उपमा। बोड़सेरा नैला से प्रमोद कुमार साहू, बीमा, वैभवी, विनोद, विभूति, अंशु, बबली, प्रियांशु साहू। जुनवानी दुर्ग से ये पत्र हमें लिखा है सुरीत, रमेश साहू, तारा विद्या साहू, जितेंद्र किशन साहू, सुनीता, ऋषवंत साहू, हीरेन्द्र, नीलकंठ साहू, चंद्रहास, संजीव, त्रिलोक साहू, रणजीत सिंह साहू, राजा जी। ग्राम भिलौर 52 लाख जिला बेमेतेरा छत्तीसगढ़ से श्रीमती रोशनी डागेश्वरी साहू, खुलासा देवी साहू, देवव्रत राघवेंद्र राज साहू, हेमंत कुमार साहू, बेबी विधि दीपिका साहू, बेबी कविता सृष्टि साहू। सादुल शहर से ओम प्रकाश चौहान, मनु प्रकाश, शिव प्रकाश, वेद प्रकाश चौहान, ये पत्र लिखा है नरसिंहगढ़पुरवा छतरपुर से दयाशंकर कुशवाहा, भवानी देवी कुशवाहा ने, इन्होंने भी इसी गीत को सुनना चाहा है। अनारकली बाजार जगराओं से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष मल्होत्रा और बेबी गव्या, इन्होंने भी इसी गीत को सुनना चाहा है। अगला पत्र हम तक आया है, लिखने वाले श्रोता हैं लाल माता सुदामा नगर रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से, हर्षिता, रामेश्वर, कान्हा, सफलता, कपिल, मीनाक्षी, सत्यनारायण, मनोहर भाई, प्रभुलाल बागरी और इनके परिवार वाले। कुछ ईमेल भी आए हुए हैं। ये पहला ईमेल है जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पल डिकेस्ट्रो और विलिस डिकेस्ट्रो का, इन्होंने भी इसी गीत को सुनना चाहा है। रोहिदास चौक पंडरपुर सिटी से प्रशांत सिंधे, सुनीता, यशराज, ऋषि और कृष्णा गुटके, मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, इरफान, मोहम्मद इसरार, नरगिस खातून, इन्होंने ये ईमेल हमें भेजा है जिला मुरादाबाद ग्राम दूलापुर उत्तर प्रदेश से। मनाली हिमाचल से हर्ष, विनय, विनीत, रोजस भाई, चंडीगढ़ से शेफाली, सेफी, डेविस, बिमला और सतीश अनेजा, इन्होंने भी इसी गीत को सुनने के लिए हम तक मेल भेजा हुआ है। भाटीपुरा महोबा से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, इन्होंने भी इसी गीत को सुनने के लिए ईमेल हम तक भेजा है। एमएलबी रोड ग्वालियर से लिखने वाले श्रोता सुरेश खुराना, पप्पी, किरण खुराना, लव्या, आरब खुराना और एस के पप्पी। तो लीजिए इन सबकी पसंद पर सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत जो हमने लिया है सिलसिला फिल्म से।

मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो।

इसी गीत के साथ मनभावन कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए अपने मित्र कुलदीप खरे को। नमस्कार। मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। समाचार कुछ ही समय में हम दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के एक उच्च स्तरीय कार्यसत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के लिए विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हमेशा मानवता पहले के सिद्धांत पर चलता है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, मिशन लाइफ और एक पेड़ मां के नाम जैसे भारत के

0: प्रयासों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत की सोच वसुधैव कुटुम्बकम यानी विश्व एक परिवार है पर आधारित है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के समय भारत हमेशा जरूरतमंद देशों की सहायता के लिए आगे रहा है। प्रधानमंत्री ने वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए संवाद, कूटनीति तथा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के सम्मान पर जोर दिया। शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा प्रधानमंत्री मोदी का व्यस्त राजनयिक कार्यक्रम भी है। वो कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। आज रात वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भव्य रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की कल अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के साझा दृष्टिकोण ने भारत इनोवेट्स की आधारशिला रखी, जो भविष्य के लिए एक परिवर्तनकारी मंच बन गया है। श्री गोयल ने यह बात फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स के समापन समारोह में कही। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में चालू खरीफ सीजन के लिए देश भर में की गई तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कपास उत्पादन बढ़ाने, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष बल दिया। श्री चौहान ने कहा कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी की 1 जुलाई को आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर शुरुआत होगी। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के साथ हुई बैठक के दौरान ये बात कही। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के कुर्सियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि राज्य पुलिस बल में भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी, जिससे बड़ी संख्या में गोरखा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य भर्ती में कम से कम 30% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र पुलिस की कानून प्रवर्तन क्षमताओं को बढ़ाने और उभरती सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए 733 करोड़ रुपए से अधिक की आधुनिकीकरण योजना को मंजूरी दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यह परियोजना संयुक्त वित्त पोषण मॉडल के माध्यम से लागू की जाएगी। इसमें केंद्र सरकार कुल लागत का 60% और राज्य सरकार 40% वहन करेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट परीक्षा से पहले अभिभावकों और उम्मीदवारों को जालसाजों से सावधान रहने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एनटीए ने कहा कि टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जालसाज पुनर्परीक्षा का प्रश्न पत्र साझा करने का दावा करके रुपयों की मांग कर रहे हैं। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि पुनर्परीक्षा का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमरीका और ईरान के बीच समझौते पर हस्ताक्षर शुक्रवार को लुसेन शहर के पास स्थित बर्गेनस्टॉक रिजॉर्ट में किए जाएंगे। मंत्रालय ने कहा कि वो दोनों देशों के साथ इस संभावित समझौते पर हस्ताक्षर के संबंध में लगातार संपर्क में है, जिसकी घोषणा अमरीकी और ईरानी अधिकारियों ने सप्ताहांत में की थी। मौसम विभाग ने कल पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। Prime Minister Narendra Modi today addressed the outreach session on forging new partnerships and rebuilding international solidarity at the G7 summit in Avignon, France. Ministry of External Affairs informed that during the session, the Prime Minister underscored the importance of trust in building international partnerships, especially in an increasingly interconnected world. During the meeting, the Prime Minister also highlighted that India has always followed a humanity-first approach. He said, "This is reflected